नमस्कार, सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्लंग केंद्र है। आज दिन शनिवार, सक्षम्बत 1948, भाद्रपद महीने की 14वीं तिथि, अंग्रेजी सन 2026, सितंबर महीने की 5 तारीख है। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम प्रारंभ कर रहे हैं आज की पहली सभा।

0: हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आपको सुनवाए जा रहे हैं हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली

0: बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफ्तन केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

6:10 पर सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 का समय रहेगा महिलाओं से संबंधित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सवेरे 7 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 7:05 पर आज का दिन। 7:30 पर होगा एक विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर, प्रस्तुत करेंगे जुदित रांगचल।

सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात रिले के जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम, 8:23 पर सुनेंगे पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

8:40 पर कार्यक्रम सुरों की रंगोली, सवेरे 9 बजे पुआरांचलिक बटोरे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

रोजाना की तरह 9:15 से आरंभ करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम खेलमा कार्यक्रम। आप सुनेंगे 9:15 पर लोकगीत पेश करेंगे धोनचाई लाल खेलमा और उनके साथ ही 9:25 पर होगा रांगखोल कार्यक्रम। लोकगीत पेश करेंगे सोनी पुल रांगखोल और उनके साथ ही 9:35 का समय रहेगा जयंतिया कार्यक्रम का। भक्ति गीत लेकर आएंगे मिलम वालंग प्रांगी और उनके साथ ही 9:45 पर आप सुनेंगे व्यति कार्यक्रम। भक्ति गीत पेश करेंगे रेमचार मोहितार ने और उनके साथ ही

सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इसी बीच आप सुनेंगे 12 बजे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, 1 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे तथा 4 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोस्तों ये थी जानकारी आज के पहली सभा के मुख्य कार्यक्रमों की।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है भक्ति गीतों के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कुछ सनी देव के चुनिंदा भजन।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं पर संबंधित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आइए सुनते हैं कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लोर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज का दिन।

0: आज का दिन शुरुआत करते हैं पोएम ऑफ द डे के साथ।
1: माय नेम इज अल्फास नंपुई। आई रीड इन क्लास 2। आई स्टडी इन डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल। द स्विम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विम, अप इन द एयर सो ब्लू? ओ आई डू थिंक इट द प्लेनेटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड, rivers and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. Robert Louis Stevenson।

दोस्तों, आज 5 सितंबर है। जैसे हर दिन का अपना एक महत्व होता है, वैसे ही आज का दिन भी कई कारणों की वजह से याद किया जाता है। चलिए जानते हैं आज के दिन की विशेषताओं के बारे में और बताएंगे आज के दिन जन्म में और आज के दिन दुनिया को छोड़ अलविदा हुए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में।

आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं में है फ्रांस में सन 1798 को अनिवार्य सैन्य सेवा कानून प्रभाव में आया था। सैम ह्यूस्टन टेक्सास गणराज्य के राष्ट्रपति सन 1836 में निर्वाचित हुए थे। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और रूस के बीच सन 1914 में लंदन समझौता हुआ था। हाईजैक विमान में मुसाफिरों को बचाने की खातिर सन 1986 में अपनी जान गंवाने वाली नीरजा भनोट की कराची में मौत हो गई थी। नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1991 में चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सन 2004 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में सन 1997 को कराने का निश्चय किया था। वाई नदी समझौते को सन 1999 में कार्यान्वित करने तथा रुकी हुई पश्चिमी एशिया शांति वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु इजराइल के प्रधानमंत्री यहूद बराक तथा यासिर अराफात के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में शांति समझौते पर हस्ताक्षर। निलजिमा लंबा रूस में सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय महिला संगठन के अध्यक्ष नियुक्त वे इस पद को सुशोभित करने वाली पहली एशियाई महिला है। फिजी में सन 2001 को महेंद्र चौधरी, जॉर्ज स्पेट और लाइसेनिया करासे संसद हेतु चुने गए थे। रतन टाटा के नेतृत्व में सन 2008 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सीएम के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेंट की। भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार एटीएम के जरिए चेक निगम क्लियर करने की तकनीकी प्रणाली

आज के दिन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्म हुए। चलिए जानते हैं उनके विषय में। तमिल भाषा के विद्वान और प्रख्यात समाज सुधारक चिदंबरम पिल्ले का जन्म सन 1872 को आज के दिन हुआ था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 को आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का जन्म सन 1905 को आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर फिरोज पलिया का जन्म 5 सितंबर सन 1910 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय लक्ष्मी नारायण रामदास का जन्म सन 1933 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का जन्म सन 1986 को आज के दिन हुआ था।

दोस्तों आइए जानते हैं आज के दिन हुए कुछ विशेष व्यक्तियों के निधन के विषय में। अशोक चक्र विजेता विमान परिचारिका निर्जा भनोट का निधन सन 1986 को आज के दिन हुआ था। भारत के जाने माने शिक्षाविद और हिंदी साहित्यकार अंबिका प्रसाद दिव्य का निधन सन 1986 को हुआ था। भारतीय व्यंग्य रचनाकार शरद जोशी का निधन सन 1991 को आज के दिन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सलील चौधरी का निधन सन 1995 को आज के दिन हुआ था। विश्व प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा का निधन 5 सितंबर सन 1997 को आज के दिन हुआ था।

दोस्तों, आज है शिक्षक दिवस। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिवस का इतिहास। शिक्षक दिवस भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राधाकृष्णन का जन्म इसी दिन सन 1988 में हुआ था। शिक्षक दिवस का इतिहास। सन 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तो उनके छात्र 5 सितंबर को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति मांगने के लिए उनके पास पहुंचे, जिस पर उन्होंने छात्रों से समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को बताने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने

एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए। शिक्षक दिवस का महत्व कुछ इस प्रकार है। 5 सितंबर को स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्र अपने प्रिय शिक्षकों के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। इस दिन कई स्कूलों में छात्र खुद शिक्षक बनते हैं, साथ ही वे उन गुरुओं को भी याद करते हैं जो स्कूल छोड़ चुके होते हैं। स्कूली छात्रों के लिए उत्सव का दिन होता है ये शिक्षक दिवस। स्कूली छात्रों के लिए ये दिन उत्सव का दिन होता है। इस दिन बच्चे चॉकलेट और मिठाइयाँ व अन्य तरह की ग्रीटिंग्स टीचर्स को देते हैं। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसी तरह पूरे देश और देश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस मनाई जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज का दिन। इसी क्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं कुछ सुमधुर गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आज का दिन, साथ ही सुनवाए जा रहे थे कुछ सुमधुर गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अपलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिक्षक दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम,

0: आते हैं। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद है हमारे जाने माने शिक्षक सर दिनेश तिवारी जी, जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज के। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका हम हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाते क्यों है?
1: देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी है, और 5 सितंबर जो कि उनका जन्मदिन है, उसको हम टीचर्स डे के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक महान फिलोसोफर, बुद्धिजीवी, एक बहुत ही एनलाइटेंड स्कॉलर, स्टेट्समैन और हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज रह चुके हैं। तो उनके जो एडमायरर्स जो थे, उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनका जन्मदिन बहुत ही प्यार से मनाते थे। तो उनको विचार आया कि क्यों नहीं उनका जन्मदिन, क्योंकि वो टीचिंग कम्युनिटी को इतना प्यार करते थे, एंड ही आल्सो बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, तो वो अपना जन्मदिन ही डेडिकेट कर दिए टीचर्स के नाम पे कि आज से 5 सितंबर अब से ये टीचर्स डे के नाम से मनाया जाएगा। कारण यही है, उनका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचिंग कम्युनिटी, यूं कहा जाए तो।
0: जी जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन को।
1: एग्जैक्टली।
0: तो क्या डॉक्टर राधा कृष्णन का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का क्या क्या है?
1: डॉक्टर राधा कृष्णन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही, अगर मैं उसको समरी भी करने जाएं, कम से कम 2 दिन लग जाएगा। उनके जो फिलोसफीज, उनके जो कंसेप्ट, उनके जो सोच, उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिर्फ इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए न रहे, बल्कि एक आदमी का कैरेक्टर, एक मॉरल दायित्व, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये सब जो है कॉम्बाइंड होके टूवर्ड्स एक नेशन बिल्डिंग काम होना चाहिए।
0: जी।
1: ये है उनका सबसे बड़ा योगदान, दैट एजुकेशन शुड बी टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग।
0: जो आप हम अभी फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो आजकल के जो टीचर्स हैं, डॉक्टर जो राधा कृष्णन जी है, उसका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है, हम क्या सीख सकते हैं इससे, हमें क्या सीख, अच्छी सीख मिलेगी?
1: देखिए, शिक्षक यही सीख सकते हैं कि शिक्षा केवल एक कुछ तथ्यों को लेके या कुछ इंफॉर्मेशन को लेके सिर्फ उसको मेमोराइजिंग तक ही न रहे, बल्कि अपने अंदर अच्छा कैरेक्टर, एक वैल्यू बेस्ड, एक रीजनिंग, क्रिएटिविटी, और हर आदमी के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सीख सकते हैं उनके जो भी सोच है, जो भी उनके जो फिलॉसफी है।
0: जैसे कि आपने बोला, ये सब पढ़ाई तक सीमित नहीं,
1: नहीं पढ़ाई तक बिल्कुल सीमित नहीं है।
0: जी जी, तो क्लासरूम्स के बियॉन्ड टीचर्स को सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाए?
1: देखिए, अगर हम टीचर हैं या कोई भी, जो आज दिमा आसाओ में इतने सारे प्रोफेसर हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, क्लासरूम तक सीमित टीचिंग तो कभी भी रहना नहीं चाहिए। ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये एक टीचिंग बियॉन्ड द क्लासरूम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य में एक टीचर कहा जाता है कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हमारे विद्यार्थी आउटसाइड द कैंपस भी रहते हैं, अगर उनसे हमारा टच रहता है, या लाइक हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो टीचर का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए कि देखिए, अभी मैं कभी कभी ऐसे ऑटो से भी चले जाते हैं इधर उधर, तो पूछते हैं वो ऑटो वालों कि भाई तुम क्या कहाँ तक पढ़े हो? तो सर हम हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। तो कितना परसेंटेज आया था? तो सर 50 जैसा आया था, लेकिन कुछ कारण बस हम कंप्लीट नहीं कर। तुरंत हमारे अंदर एक टीचर वाला वो भावना आ जाता है कि अरे हमारे कॉलेज में तो 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं डिस्टेंस एजुकेशन, क्यों नहीं वहां तुम अपने आप को एनरोल करते हो? वहां पे एज इज नॉट अ बैरियर, और सपोर्ट सिस्टम है लर्निंग का, हम खुद कोऑर्डिनेटर हैं के हैंडी, यू नो, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का, कभी मन करे तो आना तुम और अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करना। तो कहने का मतलब ये होता है एक टीचर का दायित्व, लाइक ऑलवेज ही शुड बी और ही should be in an encouraging mode, और प्रोत्साहित करना चाहिए, कहीं भी कुछ गलत देखे तो उसको फिर बताना चाहिए। So this is what a teacher should be.
0: आजकल AI का जमाना है, तो टीचर्स को रिमूव कर सकता है?
1: नहीं, टीचर्स को तो देखिए, एआई कभी भी रिमूव नहीं कर पाए।

0: एआई देखिए सक्षम है डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन
1: जी,
0: जो चाहिए वो दे देगा आपको,
1: है ना,
0: इंफॉर्मेशन बोलिए, बढ़िया से बढ़िया लिटरेरी नॉलेज दे देगा वो, लेकिन शिक्षा का स्थान एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, तो जो शिक्षक आज से 20 साल 30 साल पहले जो रोल प्ले करता था, सर्टेनली आज वो रोल एक इवॉल्विंग नेचर में होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से एक टीचर कभी भी परे नहीं रह सकता, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, तो उनका रोल भी इवॉल्विंग रूप में ही होगा। क्योंकि एक टीचर जो है, एक लड़का के अंदर आत्मविश्वास, एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, ये एआई कभी दे नहीं पाएगा।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही।
0: टीचर का जो रोल है वो एआई तो अभी जस्ट शुरुआत में है, वो और भी मैनिफोल्ड अगर एआई का आ जाए, टीचर टीचर ही रहेगा, लेकिन हाँ उसके रोल्स इवॉल्विंग नेचर में रहेगा। ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम अगेन।
1: जी हाँ, तो हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स लोग जो है एआई पर पूरा ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है?
0: देखिए यहाँ पे उनको गाइडेंस चाहिए। जैसे कि आज मेरा एक डिग्री डीएससी कोर का, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, अब तो बीए नहीं कहा जाता
1: जी,
0: है, तो इसका मेरा आज मैं फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास था, तो हम कहे कि देखो तुमको क्या लगता है, बीइंग अ टीचर हम क्या एआई यूज नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब है कि कल को अगर मुझे एक पोल्ट्री फार्म खोलना है और हम एआई को बोलते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, हिल्स एरिया में रहते हैं, हाँ हमारा इतना का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्लाइमेट ऐसे ऐसे है, उसके प्रॉम्प्ट्स अच्छे होने चाहिए, हम ये फार्मिंग खोलना चाहते हैं, तो इसको कैसे करें, इसमें मेरा लागत कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एआई जो है बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सुंदर से दे देगा। अब वो इन्फॉर्मेशन हम लेने के लिए मैं कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं जा रहा हूँ, यहाँ मुझे एकदम सुंदर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको लगने से हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हुआ है, तो मैं फूक फूक के चलूंगा। तो यहाँ देखिए एआई इतना मेरा उससे फायदा हो रहा है, लेकिन हम कुछ भी पढ़ के नहीं आ रहे हैं, और क्लास में किसी तरह हमने मोबाइल चुरा के लेके गए एग्जाम हॉल में, और जो जो क्वेश्चन है उसको हमने उसमें स्कैन कर दिए, डाल दिए, और उसका आंसर आ गया, मैं आंसर भी लिख दिया वहां से देख देख के, क्योंकि शायद इन्विजिलेटर देख नहीं रहा है, चाहे काफी शातिर है कॉपी करने में, तो उसको मार्क्स भी शायद जो खूब पढ़ता है बच्चा 40 के जगह उसको मिलना चाहिए था एक्चुअली 25, और एक अच्छे स्टूडेंट को 40 मिल रहा है, उसको शायद 55 मिल गया, वो तो खुश। लेकिन ये ऐसे बच्चे हम देखे हैं जब इंटरव्यू पैनल में आते हैं, हमने क्या देखा है, डिग्री तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन कुछ भी पूछो तो सुंदर से वो डेप्थ में बता नहीं पाता है, सुपरफिशियल नॉलेज लेके जब आओगे आज ना कल कहीं तो वो फंसोगे। एक स्ट्रांग बिल्डिंग आप बनाओगे ऊपर से, लेकिन फाउंडेशन खूब कमजोर बनाओगे और उस पर तीन तल्ला बनाओगे, वो एक दिन तो टूटेगा ही। तो एआई आपको शुरुआत में जो बच्चा उसको यूज करना चाहता है वो भरपूर यूज करेगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रियल डेप्थ और रियल नॉलेज तो उसका नहीं आएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि फुल्ली डिपेंडेंट ना हो, पहले पढ़ें किताबें को, नॉलेज को डीपली ग्रहण करें, और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सर्च इंजिन है जो उससे और भी ज्यादा कुछ बताएगा और उसमें ऐड करेंगे, तो यस व्हाई नॉट, आप तब इस्तेमाल कीजिए उसका। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एनकरेज करते हैं एआई को यूज करने के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो ब्लाइंड बोल रहे हैं कि इसी पे टोटली डिपेंडेंट हो जाओ। इट शुड बी यूज्ड एज अ टूल,
1: टूल्स।
0: हाँ, टूल।
1: और आपको क्या लगता है कि आजकल के जो टीचर्स हैं सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस करते हैं?
0: आज के जो टीचर्स जो हैं, मैंने क्या देखा है, उस दिन तो मैंने एमएलए से भी बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी तो हमारे कॉलेज में जो एचएस क्लासेस हैं बहुत जल्दी वो डिलिंक होगा, और उसका एक कारण है कि क्लासेस इतने बड़े बड़े हैं कि सबको अटेंशन देना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप ही सोचिए, हायर सेकेंडरी में जो मैं क्लास लेता हूँ 135 बच्चे हैं, मेरा तो थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी अच्छा है तो somehow I reach the last bench, लेकिन जिनका उस लेवल का नहीं है वो तो कुछ ही बच्चे वो करेंगे। और मान लीजिए किसी का वॉइस क्लैरिटी भी अगर लाउड है, लेकिन अटेंशन तो सबको दे नहीं पाएगा, बात ये आता है। जब आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो एक बच्चा जो है अपने को

0: आउट ऑफ फोकस
1: जी
0: समझता है।
1: हाँ
0: अब स्कूल में देखिए, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ के सो कॉल्ड, वहां पे आप देखिए 40 बच्चे हैं एक क्लास
1: हाँ
0: में,
1: हाँ हाँ
0: 60 बच्चे हैं मैक्सिमम,
1: जी
0: जब उससे ज्यादा होता है तो सेक्शंस हो जाते हैं।
1: हाँ
0: तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। लेकिन हमारे कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो तो प्रोफेसर्स हैं, डिग्री तक उनको ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब हायर सेकेंडरी पहले से है और उसके लिए पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं था। तो सिर्फ कॉलेज की ही बात नहीं बोल रहे हैं, किसी किसी स्कूल लेवल पे भी जब बहुत बड़ा क्लासरूम
1: जी
0: होता है
1: जी
0: ना
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँ
0: कंट्रोल करना मुश्किल
1: मुश्किल हो
0: होता है। तो
1: जाता है
0: दिस इज वन चैलेंज। दूसरा है कि डाइवर्स मेंटेलिटी के साथ
1: जी
0: स्टूडेंट्स हैं,
1: हाँ
0: वो समझना है मुझे एज अ टीचर। और आज एक टीचर सिर्फ टीचिंग ही नहीं करता है, बहुत सारा कॉरपोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दिया जाता है, वो भी उसको निभाना है, लिमिटेड टाइम मिलता है
1: जी
0: ना। देखिए आजकल आप खुद देखिएगा इधर उधर, टीचिंग जो है ना अब पहले जैसा नहीं रहा। सब लोग बोलते हैं कॉलेज का तो है ही है, इवन जो स्कूल्स के जो टीचर हैं दे हैव बिकम वेरी बिजी। अब उनको लिमिटेड टाइम में ना सिलेबस
1: खत्म करना है
0: खत्म करना है। तो जैसे आपके अंदर एक हड़बड़ी आएगा कि मैं
1: जी
0: सिलेबस खत्म करना है, तो टीचिंग का स्तर गिर जाएगा। सिलेबस इतना ज्यादा है और उसको हमको सिर्फ 4 या 5 क्लासेस में खत्म करना है।
1: हाँ
0: अब मान लीजिए कि शेक्सपियर का अगर मुझे एक ड्रामा पढ़ाना है, हमको सिर्फ 2 लेक्चर में या मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस में
1: खत्म करना है
0: वो
1: इसको
0: खत्म करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर अगर है तो उसके अंदर एक मन में आएगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस। वो एक थोड़ा सा अंदर में वो लाइक फुर्ती नहीं, वो एंजॉय नहीं करेगा।
1: जी
0: हाँ, ही इज टीचिंग फॉर द सेक ऑफ टीचिंग। ये
1: हाँ
0: है
1: तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं
0: चेंज। तो ये है कि हम लिमिटेड करिकुलम बनाएं और उतना ही डिजाइन करें जितना कि जरूरी है ना। मुझे 10 पोएम पढ़ाने के बजाय मैं 2 पोएम पढ़ाऊं, 3 ड्रामा के बजाय मैं 1 ड्रामा पढ़ाऊं। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे ओपनली कि हम कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं बोल सकते हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, उनसे मेरा कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो वो सब दिमाग में रखते हुए भी आई थिंक सिलेबी को हम डिजाइन कर सकते हैं।
1: जी स्टूडेंट्स को हम कैसे एनकरेज करेंगे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली या फिर क्रिएटिविटी अपने आप में कैसे लाए
0: देखिए मेंटरिंग बहुत जरूरी है।
1: जी
0: अभी मैं रिसेंटली कॉलेज में एसोसिएशन फॉर्म हुआ, स्टूडेंट्स एसोसिएशन, तो बीइंग द कन्वेनर वो सब कुछ हमसे पूछ रहे हैं। और हमने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो कल तक ऐसे चुपचाप बैठते थे, आज अचानक मेरे जैसे टीचर के साथ उनका थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ गया, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए आ रहे हैं मेरे पास, मेरे घर पे भी आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि उनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आज तक हमने नहीं देखे, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि मैं बिजी हूं, वो बहुत मतलब ज्यादा संख्या में हैं, नाम तक पता नहीं होता है।
1: जी
0: ऑनर्स, तुम लोग के समय ऑनर्स था, अब तो ऑनर्स खत्म हो गया।
1: हाँ
0: तो ऑनर्स जब होता था तो हम लोग को एक चांस मिलता था, प्लेटफॉर्म मिलता था एक स्टूडेंट का नाम उम
1: हाँ
0: थोड़ा सा
1: हाँ
0: जानने के लिए। अब डीएससी क्लासेस जो है एक तरह का देखा जाए तो पास क्लासेस है पहले वाला जमाने
1: हाँ
0: का।
1: हाँ
0: अब पास क्लासेस में सबको नाम वाइज या सबको कुछ पर्सनली जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एसोसिएशन के मेंबर्स बिकॉज वो 26-27 लोग हैं, अब वो लोग मिल रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। तो हम देखें कि कुछ कुछ के अंदर ऐसा क्वालिटीज हैं। और हमने उनको बोला भी कि मुझे कभी भी पता नहीं था कि तुम लोग इतना स्मार्ट हो, तुम लोग इतने हार्ड वर्किंग हो। तो वो लोग लिखे कि सर आज तक ऐसे बात हमको कोई टीचर नहीं बोला है, और सर आज से हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए जो भी होगा हम लोग करेंगे सर एज एन एसोसिएशन। देखिए उनका मनोबल बढ़ गया।
1: हाँ
0: टीचर का जो फोकस है ना वो मेंटरिंग पे होना चाहिए, वन टू वन,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: देखना है कि वो किस किस लायक है। जैसे
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: मुझे मौका मिला कि अरे ये तो ये कर सकता है, उसका
1: हाँ हाँ
0: हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, तो
1: जी
0: क्यों नहीं भाई तुम इनविटेशन पे तुम ही नाम लिखो। हाँ, और उसको हमने थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया, अरे योर हैंडराइटिंग इज वेरी गुड, वो
1: जी
0: उसका वो बढ़ गया।
1: हाँ
0: अब
1: हाँ
0: कल को वो शायद हु नोज, हम अगर थोड़ा सा डीपली डिग करेंगे तो पता चलेगा शायद पेंटर भी हो,
1: जी
0: आर्टिस्ट भी हो। तो वी हैव टू लुक इनटू पर्सनली वो एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, एंड दैट विल कम विद मेंटरिंग, टेकिंग केयर, है ना। ये चीज है, उनको कंपेयर नहीं करना है दूसरों से।

0: या अगर वो दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को हीन महसूस करते
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: तो वो भी स्टॉप करना है, दे शुड
1: जी
0: नॉट कंपेयर.
1: हाँ हाँ
0: एवरी चाइल्ड हैज सम क्वालिटी विच द अदर चाइल्ड मे
1: हाँ
0: नॉट
1: अपने
0: बी
1: आप में
0: हैविंग.
1: पोटेंशियल है उन
0: हाँ
1: लोगों
0: हाँ
1: का।
0: तो
1: हाँ
0: डिफ्रेंशिएट नहीं करना
1: जी
0: है, सो
1: बिल्कुल।
0: दैट वे दैट कैन रियली बूस्ट.
1: और एक एज अ टीचर आप तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, तो आप बच्चों से सीखते हैं।
0: सीखते हैं,
1: हाँ
0: यस वो सीखते हैं. देखिए देखिए, सपोज आई एम 55 ईयर्स, तो हम जिसको पढ़ाते हैं अभी, जैसे अगर हाई सेकेंडरी को लें तो दे आर 16 ईयर्स, डिग्री फर्स्ट ईयर में आए तो दे आर 19 और 20 ईयर्स, जो फिफ्थ सेमेस्टर है वो 21 ईयर्स है ना. ये पूरा फ्रेश माइंड है. हम जब यूथ यूथ यूथ जनरेशन बोलते हैं ना, दे आर द यूथ, लेकिन हम तो अब यूथ नहीं रहे. तो उनका जो ये जो यूथ का जो उनका जो सोच है, उनका जो अपना क्रिएटिविटी है, उनका जो मैनरिज्म्स है, बिहेवियर है, ये मुझे समझने का मौका मिलता है,
1: जी
0: जानने का भी मौका मिलता है. जब भी कोई मौका मिलता हूँ मैं बैठता हूँ और कुछ उनके बारे में पूछता हूँ कि तो इसमें इसके बारे में तुम्हारा क्या सोच है, तो हम देखे कि अरे उसका सोच तो थोड़ा मुझसे अलग है, और वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो ऐसा ही एनवायरनमेंट में है. अभी देखिए, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खोलेंगी कुछ भी नहीं मिलेगा, मुश्किल से एक दो चैट, वो भी शायद एक साल पुराना. इनका खोलेंगी तो आप देखेंगे डाइवर्स नेचर के लिंक्स उसमें आ रहे हैं, उसको ये पढ़ रहे हैं, उससे इनकी आइडियाज को शेप हो रहा है. तो ये सब अगर मैं उनसे रूबरू हूं, बात करूं, तो जानने का मौका मिलता है. सो अ टीचर लर्न्स द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट प्रोसेस, जो कि मेरा शायद वो 40 ईयर्स पुराना बैकडेटेड हो गया हो, प्लस उनका पेशेंस, उनका क्रिएटिविटी, किस डायरेक्शन में उनका वो सोच है ना. टीचर तो यस, मैं तो सीखता हूँ,
1: ये तो
0: यस
1: बहुत अच्छी बात है कि
0: हाँ
1: हम स्टूडेंट से भी सीख सकते
0: यस, इट्स अ
1: हैं।
0: टू वे ट्रैफिक. टीचर और स्टूडेंट का जो लर्निंग प्रोसेस है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक. हाँ
1: ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोग स्टूडेंट से भी सीखते हैं।
0: यस
1: और जो स्टूडेंट्स हैं,
0: हाँ
1: आजकल आपने बोला था कि सिलेबस के बारे में
0: यस
1: एकेडमिक प्रेशर्स बहुत है उन लोगों का
0: यस
1: आजकल के ज़माने में, तो एकेडमिक प्रेशर्स और कंपटीशंस को लेके हम टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते।
0: देखिए, पीयर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है कि हम तो देख रहे हैं कि भाई एक यंग, एक बडिंग यूथ जिसको बोल सकते हैं, एक देश का भविष्य, हम तो टूटते हुए देखे हैं प्रेशर के वजह से. आपने भी देखा हो, ऐसा ऐसा कंपटीशन हुआ, उसका डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिला, तो ही और शी कमिट सुसाइड, है ना, या वो कमजोर पड़ जाता है,
1: जी
0: जाए तो किसके पास जाए, अकेले रह जाता है, उसके फ्रेंड्स सही नॉलेज दे नहीं पाते हैं. तो जब ये कमजोर अवस्था होता है, उसी समय पता चलता है कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है उसके अंदर, या उसका जान पहचान हो जाता है और वो चला जाता है ड्रग्स की दुनिया में, एडिक्शन की दुनिया में. ये कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है.
1: जी
0: मतलब है कि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, एक प्रॉपर काउंसलिंग बहुत जरूरी है,
1: हाँ
0: और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं, मैं सोचता हूं कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी बुला के एक साथ अगर नहीं तो कम से कम उनका अलग काउंसलिंग करें. क्योंकि हमने देखे हैं सबसे ज्यादा प्रेशर, अगर माँ बाप अगर रियली इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, वो चाहते हैं कि मेरा मेरा बच्चा जो है इसमें अव्वल नंबर आना चाहिए, इसमें उसको इतना रैंक में आना चाहिए. वो बोलता है कि माँ हम थोड़ा सा खेलने जा रहे हैं, नहीं खेलना है, आओ इधर, ये होमवर्क देखो करना है, ये मिस ये दी है, ये ट्यूशन मास्टर ये दिया है, इसको जल्दी करो, ये नहीं करोगे तो कल तुम्हारा यूनिट टेस्ट है. अब ये अक्सर ये सब बातें हर
1: जी
0: घर में ये कॉमन है. पहले हम लोग का जब स्टूडेंट था तो हम लोग बोलते थे माँ हम लोग मार्बल खेलने जाएंगे, जाओ. उनको तो रिलीफ मिलता था कि इसी बहाने ये घर में जो हुड़दंग मच रहा है, जो चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है भाई बहन के, कम से कम ये भाई निकल जाएगा मार्बल खेलने या क्रिकेट खेलने, तो घर शांति रहेगा. आज ये पूरा ये उल्टा हो गया
1: उल्टा।
0: है कि तुमको जाना ही नहीं है, तुमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, बस शांति से इस टेबल पे बैठो, जो जो मिस बोली है, जो जो ट्यूशन टीचर बोला है इसको जल्दी करो क्योंकि कल ट्यूशन। जैसे वो यूनिट टेस्ट खत्म होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली खत्म होता है फाइनल ईयर, पूरा साल हर 15 दिन के बाद सिर्फ एग्जाम एग्जाम एग्जाम एग्जाम। ये बताइए बच्चा उबेगा नहीं तो क्या उबेगा। तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, थोड़ा इस पे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं यू नो थोड़ा इस पे गौर करना पड़ेगा। देयर शुड बी अ मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन, जैसे जापान का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ? बच्चा को जब टिफिन के बाद उनको कहा जाता है कि अब तुम लोग रेस्ट करो, एक पावर नैप उनको प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि देखिए मेंटली जब आप स्ट्रांग रहेंगे ना तो एवरीथिंग इज स्ट्रांग। हाँ ये बहुत जरूरी है, मेडिटेशन योगा, हाँ? अपने सोच को नियंत्रण में करना, हाँ? आपका कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ डिस्टर्ब कर रहा है तो कोई होना चाहिए जो वो जाए वहां तक बच्चा और काउंसलिंग करे। सो दिस इज अ चैलेंज और इसको अगर हम एड्रेस करेंगे तो यस व्हाई नॉट, बहुत अच्छा हम कम्युनिटी बना पाएंगे स्टूडेंट्स का। हाँ
1: अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है अगर आज जिंदा होते तो जैसे कि हमने बात किया, आपको क्या लगता है कि वो खुश होंगे इस मॉडर्न एजुकेशन से?
0: देखिए उनका जो एजुकेशन का जो विचारधारा है उस समय का, उसको आप पढ़ेंगी और जब सुनेंगी वो कहीं से भी बैकडेटेड नहीं है। और उनके जैसे पर्सनालिटी आज अगर जिंदा रहता वो जरूर कहते कि यस मूव ऑन विद द न्यू टेक्नोलॉजी विद द न्यू सिस्टम, लेकिन नॉट टू कॉम्प्रोमाइज आपका जो एथिक्स, आपका जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका जो दायित्व है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, जिसपे वो बहुत जोर देते थे। उनका यही मूल है कि एजुकेशन सिर्फ इंटेलेक्ट को न बढ़ाए बल्कि इंसान का करेक्टर, इंसान का एथिक्स, इंसान का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो दायित्व है टुवर्ड्स नेशन ये बिल्ड हो, तब वो कंप्लीट एजुकेशन है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज जीवित रहते तो डेफिनेटली ये एजुकेशन सिस्टम को वो सपोर्ट करते, बट इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ ऑल दिस, डिफरेंसेस न करें, एम्पैथी डेवलप करें, सबको रिस्पेक्ट करें, है ना, ये सब उनके विचारधारा है जो आज हम लोग सीखते हैं और हम लोग को थ्रू गवर्नमेंट भी ये चीज आता है, ये दिवस मनाओ वो दिवस मनाओ।
1: और आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कि या फिर आप बोलना चाहेंगे, अब यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है, आप टीचिंग्स कैरियर को लेके अब यू नो सो मेनी ऑफ देम आर कमिंग अप, तो उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: या मैसेज है डिग्री का जो हम लोग आर्ट्स में जो पढ़ाते हैं, देखिए सब तो ACS नहीं बन पाएंगे, सब UPSC क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो हम जब पूछते हैं तो ज्यादातर देखते हैं बोलते हैं कि यस सर आई वांट टू बी अ प्रोफेसर, आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहूंगा। कितना तो ये भी कहता है कि सर हम हाई स्कूल के टीचर बनेंगे, हम LP स्कूल के टीचर बनेंगे। तो मुझे थोड़ा सा तजुब भी लगता है, क्यों हाई स्कूल टीचर, जब ड्रीम ही देखना है तो प्रोफेसर बनो। तो सर हमको बच्चों से मिलना, उनके साथ रहना, उनको पढ़ाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यस ऐसे जो भाव रखते हैं हम टीचर बनेंगे फ्यूचर में, या जो ऑलरेडी अभी जूनियर टीचर्स हैं जो सो कॉल्ड, उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है, टीच विद पैशन
1: बहुत जरूरी है।
0: एवरी डे जब एक टीचर क्लासरूम में जाए तो उसको ये फीलिंग होना चाहिए कि ये मेरा फर्स्ट डे है, और उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये पोएम तो मैं लास्ट 5 ईयर से यही पढ़ा रहा हूँ तो आज मैं कुछ भी घिसा पीटा एक लेक्चर दे दूंगा, मेरा जॉब तो खत्म। लेकिन जो लेक्चर सुनता है उसके लिए तो ये फर्स्ट डे है। तो एक टीचर जब क्लासरूम में जाएगा तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही और शी शुड गो विथ फुल पैशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन, ही शुड एंजॉय। दूसरा, एक टीचर बहुत अच्छा, उसके क्लास का मार्क्स आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया, उसका सक्सेस इस पे न नापे वो। अच्छा मार्क्स आना और बहुत अच्छा रिजल्ट होना ये एक पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ये स्टीरियोटाइप हो जाएगा। जैसे कि अभी हमारे जितने ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और जितने कोचिंग क्लासेस हैं सब इसी पे तो बेस है, भाई तुम्हारे कोचिंग क्लास से क्या है। तो सर मेरा तो देखिए IIT में 50 गए हैं और ये नीट में हमारे जो है 50 बच्चे बच्चे थे वहाँ से मेरा 20 क्वालिफाई किए हैं। अरे तो बहुत बढ़िया कोचिंग है, बहुत बढ़िया टीचर्स हैं। नहीं, ये हम एक रोबो को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको टीचर जो है जब क्लासरूम में जाएगा तो दिस शुड नॉट बी द पैटर्न। हमको वी हैव टू एनकरेज द यंगर जनरेशन, है ना, फिर हमको उनको एक प्रोत्साहन ये करना चाहिए कि टीचिंग कभी भी खत्म नहीं होता है, ये ऑन गोइंग लर्निंग प्रोसेस है। आज भी मैं ना सिंपल से सिंपल पोएम जो हम लास्ट 20 ईयर से भी अगर पढ़ा रहे हैं ना, मैं उसको पढ़ के जाता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसका एक पर्टिकुलर वर्ड आज मैं कोई कंटेम्पररी एग्जांपल के साथ रिलेट कर पाऊंगा। तो जब मैं उस पोएम को पढ़ के सुबह, और जब हम उसको एनालाइज करते हैं कि आज मैं क्लास में

0: कैसे पढ़ाएंगे, तो देखते हैं कि अरे इस वर्ड के साथ तो मेरा ये एग्जाम्पल बहुत सुंदर बैठ रहा है, तो आई गो टू द क्लास विद दिस प्रिपरेशन. तो उनको क्या है, पुराना भले वो टॉपिक है लेकिन उनके एग्जाम्पल्स कॉन्टेम्पररी होते हैं, तो दे रिलेट. तो ये एक चीज होता है. सो लर्निंग प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट और फॉर द टीचर, ये कंटिन्यूअस एक नदी के जैसे वो होना चाहिए. देयर शुड बी नो फुल स्टॉप. जिस दिन आप फुल स्टॉप लगा दिए तो आप एक आपका टीचिंग प्रोफेशन जो है ना वो ब्लैंड हो जाएगा, ड्रैब हो जाएगा. उसमें आपका रुचि चला जाएगा और जब रुचि चला जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा. तो हम क्लासरूम में जाए और मेरा जो चेहरा है, मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ड्रूपी टाइप का हो, उसमें कोई उमंग ना हो, हमारा उसमें खड़ा होने का जो स्टाइल है, हमारा जो बोलने का जो डिलीवरी जो है, हमारा चेयर में बैठ के जो अटेंडेंस लेने का जो स्टाइल है, वो कहीं से भी अगर लेथार्जिक है तो स्टूडेंट्स या तो उसको रिजेक्ट करेगा और नहीं तो स्टूडेंट्स उसी को डुप्लीकेट करेगा. तो क्यों ना हम हमारा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म है वो डुप्लीकेट करें, है ना. मेरे अंदर जो डिमेरिट है वो कभी भी डुप्लीकेट ना करें. तो ये चीज होना चाहिए, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. और सबसे बड़ा चीज है कि आप भी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो एक स्टूडेंट और अब अभी टीचर मान लीजिए आप बनने जा रही हैं, जब एज ए स्टूडेंट आप देखती थी किसी टीचर को, अरे ये कैसा टीचर है, इसका तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है. तो अगर हम टीचर हैं तो देखना है कि मुझे वो चीज नहीं रहना है. आई शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, है ना. या अगर हम टीचर हैं और स्टूडेंट को वो देखता है तो बोलते अरे ये तो ये स्टूडेंट तो ऐसा है, ये मुझे पसंद नहीं है, तो वो चीज फिर नहीं रहना चाहिए. तो अल्टीमेटली क्या है कि हर स्टूडेंट को मालूम है कि ये गुड टीचर है, इसको ऐसा है, तो वही चीज डुप्लीकेट करना है जब वो टीचर बने, कि उसको कोई स्टूडेंट ना बोले अरे ये मिस कैसा है, ये टीचर कैसा है. तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. तो दिस इज द मैसेज.
1: आपके साथ बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम चाहते तो है कि आपके साथ बातें करते ही रहे, लेकिन वक्त की भी तो पाबंदी है. तो श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम को यहीं पर समेटना पड़ेगा. तो मिलते हैं अगले कड़ी में. नमस्कार.
0: धन्यवाद.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टीचर्स प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षक दिवस पर तैयार किया गया ये विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुत कर रही थी जुडित रंगचल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अपलंग केंद्र है।

0: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1।
2: हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है समाचार प्रभात, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू, और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
8: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
9: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था, इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
8: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
3: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
10: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्सपर्ट @AIR News Hindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
11: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
12: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में

0: धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का एक बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यूएस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर एनएचएआई ने कार्यक्रमों की एसओपी में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी। जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अपना केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। आइए, आपको सुनवाए जा रहे हैं कुछ चुनिंदा देशभक्ति गाने।

0: दोस्तों, अभी आप सुनेंगे पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।
1: बुलेटिन रेड बाय मिरांडा ब्ला। द हेडलाइंस: त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा मीट्स यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन न्यू दिल्ली। नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो कॉल्स फॉर यूनिटी अमंग नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स। ट्रेन सर्विसेज टू एंड फ्रॉम सायरंग रेल स्टेशन आइजोल डिसरप्टेड ड्यू टू

0: श्रोता सुन रहे थे पूर्वोत्तर समाचार, लिखे गए थे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरों की रंगोली। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

Then let's go.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो के गाए कुछ चुनिंदा फिल्मी गाने। कार्यक्रम था सुरों की रंगोली। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पलंग केंद्र है। अब आपको सुनवाए जा रहे हैं पूर्वोत्तर समाचार आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे पुआरांचलिक बातोरी, रिले किए गए थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्लंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम के अंतर्गत खेलमा लोकगीत। आनंद लेते हैं दोंजोईलाल खेलमा और साथियों की आवाज़ों में लोकगीतों का।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

दोस्तों खेल मा कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे लोकगीत दोंजोईलाल खेलमा और उनके साथियों की आवाज़ों में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। प्रस्तुत है रांगखोल कार्यक्रम। रांगखोल लोकगीतों के साथ आ रहे हैं सुन नहीं बुल रांगखोल और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे सोने बुल रांगखोल और उनके साथियों की आवाज़ों में रांगखोल लोकगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अपलं केंद्र है। अब प्रस्तुत है जयंतिया कार्यक्रम, भक्ति गीत लेकर आ रहे हैं मिलम वालंग प्रांगे और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे मेलम वालंग प्रांगे और उनके साथियों की आवाज़ों में जयंतिया भक्ति गीत। इसी के साथ ही जयंतिया कार्यक्रम यही समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से सुन रहे हैं। अब स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश में आइए सुनते हैं व्यते कार्यक्रम। व्यते भक्ति गीत पेश कर रही हैं रामचार मोई दारने और उनके साथ ही।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे व्याति कार्यक्रम के अंतर्गत भक्ति गीत रेमचार मोई तरनई और उनके साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही समाप्त होता है स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं, आपको सुनवाए जा रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आप सुनते रहें विविध भारती के कार्यक्रम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे साहित्य जगत में रश्मि रविजा के नाम से प्रसिद्ध लेखिका रश्मि वर्मा की कहानी आखिर कब तक।
2: स्नेहा घर में सबसे छोटी थी, तितली की तरह सबके आसपास मंडराती रहती, चिड़िया की तरह फुदक कर कभी घर के अंदर आती तो कभी बाहर। घर वालों की ही नहीं, पड़ोसियों की भी बड़ी प्यारी थी। उसके कॉलेज से घर आते ही शर्मा चाची अक्सर कभी गरम हलवे कभी गरम पोहे की प्लेट भेज देती। जब स्नेहा पूछती, आपको कैसे पता चल जाता है मैं घर आ गई? अरे तेरे पंचम सुर के आलाप से पता चल जाता है। जितनी देर घर में तू होती है तेरे गाने की मीठी आवाज आती रहती है। कहीं मेढक भी ना आ जाए कि कहीं मेरी मेढकी कहाँ गा रही है। ये उससे 2 साल बड़े भाई की आवाज थी। भैया कहकर स्नेहा झपटी तो भैया के हाथों में उसकी चोटी आ गई। बोल और झपटेगी कटखनी बिल्ली कहीं की? वह उसकी चोटी थोड़ी और खींचता और वो चिल्ला पड़ती, माँ। माँ की आवाज सुनते ही भैया चोटी छोड़ किताब में आंखें गड़ा लेता। शर्मा चाची के बच्चे बड़े थे और नौकरी पर दूसरे शहर चले गए थे। उन्हें उन सब की ये शरारत बड़ी भली लगती। माँ दोनों को डांटती तो शर्मा चाची उन्हें समझाती, जाने दो शिवानी की माँ, रौनक बनी रहती है। एक दिन मेरे जैसे तरसोगी कि लड़ने को ही सही, बच्चे पास तो होते। स्नेहा भैया को जीप चढ़ाकर भाग जाती तो भैया फिर से किताबें फेंक उसके पीछे भागता। माँ सर पर हाथ रख लेती, ओह कोई किसी से कम नहीं। भैया हमेशा चिढ़ाता खिजाता रहता, पर स्नेहा को कॉलेज के लिए देर होती तो बाइक से झट कॉलेज छोड़ाता। रात में उसके साथ बैठकर उसे मैथ समझाता। अगर भैया की पेन उसके हाथों गुम हो गई तो पापा जी से शिकायत कर देता। पापा की यूं तो वो सबसे लाडली थी, पर न्याय करने के लिए पापा उसे झूठ मूठ का भी डांट देते तो भैया को ही बुरा लग जाता। फिर उसके लिए चॉकलेट जरूर लेकर आता।

दीदी तो जैसे उसकी फ्रेंड फिलोसफर गाइड ही थी। बचपन से ही स्नेहा की किताबों पर कवर लगा देना, उसकी किताबों की रैक ठीक कर देना, अपने दुपट्टे से उसकी गुड़िया की सुंदर साड़ी बना देना, होमवर्क में मदद करना, उसकी शैतानियों को हमेशा छुपाना। दीदी ये सारा कुछ उसके लिए करती। सहेली से लड़ाई हो जाए तो आंसू भी दीदी ही पोंछती। बुआ जब भी यहाँ आती माँ को समझाती, सुनीता इसे भी कुछ रसोई का काम सिखाओ, कल को पराए घर जाएगी, क्या कहेंगे सब कि घर वाले ने कुछ सिखाया ही नहीं है, खानदान का नाम कटवा देगी लड़की। माँ बुआ की बात रखने को उसे किचन में भेज देती और दीदी को आवाज लगाते, शिवानी आज सारा काम गुड़िया से ही करवाना। उसका अच्छा भला नाम था स्नेहा, पर सब गुड़िया ही कहते। जब दोस्त उसे चढ़ाते तो उसे बहुत गुस्सा आता, पर घर वालों को कौन समझाए, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को भी कोई गुड़िया बुलाता है। वो किचन में जाती तो जरूर, पर दरवाजे की ओट में नॉवेल पढ़ती रहती और दीदी भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती, बल्कि माँ की आहट सुनते ही उसे आगाह कर देती और स्नेहा झूठ मूठ बर्तन उठाने रखने लगती। माँ को कुछ दाल में काला नजर आता, वो स्नेहा को अविश्वास से देखती तो स्नेहा पलट कर पूछती, क्या हुआ, तुमने कहा ना किचन में काम करने को, तो कर रही हूँ, कल मैथ्स का क्लास टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है, पर जाने दो, कम नंबर आए तो क्या, किचन का काम सीखना ज्यादा जरूरी है ना, आखिर खानदान की नाक का सवाल है। माँ कहती, अच्छा बाबा जा, बहुत काम कर लिया, जा तू पढ़, शिवानी तू भी जा, अब किचन मैं देखती हूँ। स्नेहा चुपके से नॉवेल उठा दीदी की तरफ एक मुस्कुराहट फेंक भाग जाती। दीदी की शादी हो गई तो जैसे स्नेहा पर प्यार न्योछावर करने वाले एक और जन की बढ़ोतरी हो गई। जीजा जी की कोई छोटी बहन नहीं थी, वे अपनी छोटी बहन का सारा शौक उसके जरिए ही पूरी करते। अब कॉलेज में सहेलियां उसका नया बैग, नई सैंडल, नई ड्रेस सब हैरानी से देखती और वो इतरा कर कहती, मेरे जीजा जी लाए हैं बम्बई से।

नेहा अभी एमए के फाइनल ईयर ही में थी कि बुआ एक रिश्ता ले आई। बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का अफसर है, ज्यादा मांग नहीं उनकी, बस देखे भाले घर की लड़की चाहते हैं। मुझसे बरसों का परिचय है। मैंने गुड़िया की बात चलाई तो झट मान गए। पिताजी को लगता था अभी बहुत छोटी है, भैया उसे और आगे पढ़ने देने, किसी नौकरी के बाद ही शादी के पक्ष में था। पर बुआ पिताजी से बड़ी थी, माँ की तरह उन्हें पाला था, पिताजी की एक न चली उनके सामने। दीदी की तो शादी होते ही मानो उसके लिए यह घर पराया हो गया। यहाँ के मामलों में वह मुंह नहीं खोलती। नेहा ने जब थोड़ा डरते हुए दीदी को फोन किया, दीदी वहां सबसे बड़ी हो जाऊंगी मैं, कैसे संभालूंगी सब? संभालना क्या है, कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं वे सब। अच्छा साथ रहेगा, खुश रहेगी तू। यहाँ पर मुंबई में देख, तेरे जीजाजी ऑफिस चले जाते हैं तो सारा दिन मैं अकेले पड़ी रहती हूँ, खाना तक खाने का मन नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली में समय अच्छा कट जाता है। फिर दीदी अपने ही अकेलेपन का रोना रोने लगती। दीदी के समझाने पर उसके मन का डर भी जाता रहा। कहीं ये भी लग रहा था, क्या रौब होगा, बड़ी भाभी बनेगी वह, यहाँ तो सबसे छोटा समझ सब बस लाड़ प्यार ही लुटाते हैं, कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पर ससुराल वालों की गंभीरता का अंदाजा उसे एंगेजमेंट से ही होने लगा। पास में बैठे अजनबी ने जैसे बस एक उचटती सी नजर डाली उस पर, वरना कई कजिन्स को देख चुकी थी, लड़के जैसे बात करने के बहाने ही ढूंढते रहते। शादी की रस्मों में भी होने वाले पति को गंभीर मुखमुद्रा में ही देखा, सहेलियों को ज्यादा मजाक करने की हिम्मत भी नहीं हुई।

माँ ने समझाया था, ससुराल में जल्दी से उठकर सबके लिए चाय बना देना, यहाँ की तरह 8 बजे तक मत सोती रहना। स्नेहा को भी दिखाना था, वह अपने घर की छोटी लाडली है तो क्या, जिम्मेवारियां संभालना उसे खूब आता है। सुबह ही उठ नहा धो किचन में पहुंच गई, चाय बनाकर ट्रे लेकर निकल ही रही थी कि सासू माँ ने टोक दिया, बहू पल्ला रखो सर पर। अब थोड़ी देर वो इसी में उलझी रही, माथे पर पल्लू रख जैसे ही ट्रे थामे पल्लू गिर जाए, फिर से पल्लू संभाले। सासू माँ गौर से यह सब देखती रही पर कहा नहीं कि रहने दो। आखिरकार उसने पल्लू ठुड्डी से दबाया और किसी तरह आगे बढ़ी तो लगे कि साड़ी अभी पाँव में उलझ जाएगी और वो गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैनेज किया, ससुर जी के सामने ट्रे रखी, सोचा ससुर जी खुश हो जाएंगे और 2 घड़ी पास बिठा बातें करेंगे। पर उन्होंने अखबार उठाकर एक बार देखा और फिर अखबार में नजरें गड़ा ली। जब स्नेहा ने बड़ी नम्रता से पूछा, चीनी कितनी चम्मच, सपाट स्वर में उत्तर मिला, 1 चम्मच। स्नेहा निराश सी बाहर चली आई, फिर भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी। खाने के समय पास खड़ी रहती, पूछती रहती, और सब्जी दूं, रायता दूं, कोई ना कोई बात शुरू कर देती। आज गर्मी बहुत है, आपको ऑफिस से आते वक्त ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिला? एक दिन ससुर जी ने रूखे स्वर में कह दिया, कुछ चाहिए तो कह दूंगा। स्नेहा का मन बुझ गया, शायद ससुर जी को अपने रूटीन में बदलाव पसंद न था। वे घर में किसी से भी बहुत कम बातें किया करते थे। ससुर जी की आदत उनके बड़े बेटे को भी थी, घर में सिर्फ खाने कपड़े से ही मतलब था। दोनों बाप बेटे टीवी पर समाचार देखते और जैसे ही सासू जी के सीरियल देखने का वक्त होता, दोनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। वह असमंजस में पड़ जाती, पति के साथ कमरे में बैठे या सासू माँ के साथ सीरियल देखे। पति तो अपने लैपटॉप पर दफ्तर का कोई काम लिए बैठे होते। वह कमरे, ड्राइंग रूम और किचन का चक्कर लगाती रहती है।

शादी से पहले इतनी खुश थी स्नेहा। हम उम्र देवर और ननद हैं, उसने सोचा था बढ़िया वक्त कटेगा। ननद की कोई बहन नहीं, वो सारा प्यार उड़ेल देगी। पर ननद कॉलेज से सीधी अपने कमरे में जाती और मोबाइल से चिपक जाती। एक आध बार स्नेहा ने कमरे में जाकर बात करने की कोशिश भी की तो ननद ने बड़े अनमने भाव से उत्तर दिया, और वो पलटकर दरवाजे तक भी नहीं पहुंची थी कि ननद पीठ फेरे किसी को फोन पर कह रही थी, अरे भाभी थी कॉलेज से आओ नहीं कि बहाने से आ जाती हैं कमरे में, इत्मीनान से फोन पर बात भी ना कर सको। स्नेहा ने ननद से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश छोड़ ही दी। उसे लगा था देवर हमेशा भाभियों के प्यारे होते हैं। एक दिन देवर अपने दोस्त के साथ सिनेमा देखने गए थे। सास और पति के मना करने के बावजूद वो उसका इंतजार करती रही, ड्राइंग रूम में चैनल बदल कर समय काटती रही। देवर ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में देख एक मिनट के लिए हेडफोन निकाला और पूछा, अरे भाभी नींद नहीं आ रही आपको, या भैया से लड़ाई हो गई है? हाँ। और फिर कान में हेडफोन लगाए गाने पर झूमते सर हिलाता अपने कमरे में चला गया। स्नेहा ने ही कमरे के दरवाजे पर जाकर पूछा, खाना गर्म करती हूँ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ओह क्या भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन है, मुझे खाना होगा तो माइक्रोवेव में गर्म कर लूंगा, वैसे अक्सर मैं खाना खाकर ही आता हूँ। गुड नाइट भाभी एंड थैंक्स फॉर आस्किंग, कहकर वापस हेडफोन लगा झूमना शुरू कर दिया। इस घर का रंग ढंग ही निराला था। सब एक छत के नीचे रहते थे पर सबकी दुनिया अलग थी। स्नेहा सबकी दुनिया में कदम रखने की कोशिश करती पर दरवाजा बंद पाती, और फिर बंद दरवाजे से टकरा बार बार उसका मन लहूलुहान हो जाता। स्नेहा के पति को घूमने फिरने का कोई शौक नहीं था, उनका देखा जाना अपना शहर था, उन्हें कहीं भी जाने का कोई उत्साह नहीं रहता। शुरू शुरू में स्नेहा ही जिद कर बाहर जाने पर मजबूर करती। पति बड़े बेमन से गंभीर चेहरा बनाए साथ हो लेते, पर हर जगह कोई ना कोई परिचित मिल जाता और फिर तो पति की मुखमुद्रा बिल्कुल बदल जाती। इतने गर्मजोशी से मिलते और बातों का वो सिलसिला शुरू होता कि स्नेहा की उपस्थिति ही भूल जाते। वो उपेक्षित सा महसूस करती, स्नेहा को गुस्सा भी आता, इन सब से कैसे इतना घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, उससे बातें करते जुबान पर ताले पड़ जाते हैं। धीरे धीरे बाहर घूमने जाने का उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया।

बस एक सहारा दीदी और सहेलियों के फोन का रहता। फोन पर बात करते वो अपने आसपास का पूरा परिवेश भूल जाती। लगता वही कॉलेज का लॉन है या फिर घर की छत। ऐसे ही एक रविवार की सुबह देर तक बातें की थी दीदी से। दीदी ने उन्हें मुंबई बुलाया था और पतिदेव ने भी हामी भर दी थी। स्नेहा का मन इतना खुश-खुश था कि बाथरूम में देर तक गुनगुनाते हुए नहाती रही। बाहर निकली तब भी गीले बालों को झटकते गाना जारी रहा। कुछ देर बाद जब लंबे बाल पीछे की तरफ फेंक सामने देखा तो पाया दरवाजे पर खड़े पति उसे गौर से देख रहे थे। एक सल्लज मुस्कान फैल गई उसके चेहरे पर। ये ध्यान भी आया यहाँ आकर तो वह गाना ही भूल गई है। पति ने पहली बार उसका गाना सुना है। शायद अभी आकर बाहों में भर लेंगे और कहेंगे कितनी मीठी आवाज है तुम्हारी, हरदम क्यों नहीं गाती। इंतजार में जैसे उसकी सांसें भी रुक गई थी पर कोई आहट नहीं हुई। नजरें उठाकर देखा तो पति अखबार उठा कुर्सी की तरफ जा रहे थे। उसे अपनी तरफ देखता पाकर बोले, इतनी जोर से गा रही हो, बगल के कमरे में ही माँ पापा हैं, कुछ तो सोचा करो। और अखबार फैला लिया सामने। स्नेहा का मन हुआ वो भी पैर पटकती हुई बाहर चली जाए, पर फिर सोचा आज इतवार है और दिन बस शुरू ही हुआ है, सारा दिन अबोला रह जाएगा। किसी तरह आंसू जज्ब करते हुए स्वर को सामान्य बनाते हुए पूछा, दीदी ने बुलाया है, आपने भी हाँ कहा है, कब चलेंगे मुंबई? छुट्टी कहाँ है, इतना काम है दफ्तर में, कैसे जा सकता हूँ? अब वो हाँ तो कहना ही पड़ता है ना, बाद में कोई बहाना बना देंगे। और ये कहते हुए अखबार में डूब गए। स्नेहा जैसे आसमान से गिरी। कितनी खुश थी वह,

उसने तय कर लिया, अगर घर वालों की अपनी दुनिया है तो वो भी अपनी अलग दुनिया बसा लेगी और खुश रहेगी उसमें, और खाली वक्त में अखबारों के कॉलम देखने लगी, या तो नौकरी करेगी या फिर कोई बढ़िया सा कोर्स। अभी यह तलाश जारी ही थी कि उसे माँ बनने की खुशखबरी मिली। लगा अब घर का माहौल बदल जाएगा। नन्हे बेटे की किलकारी ने घर में रौनक तो ला दी, पर स्नेहा की दिनचर्या में ज्यादा बदलाव नहीं आया, बल्कि नई जिम्मेवारियां और शुमार हो गईं। बेटे को तो सब खूब खिलाते, सारा दिन घर का कोई न कोई सदस्य बेटे को गोद में उठाए फिरता, पर काम सारा स्नेहा के जिम्मे था। स्नेहा जरा इसके कपड़े बदल दो, दूध का टाइम हो गया है, दूध पिला दो, लगता है नींद आ रही है, सुला दो। वो नींद में ही उसके पास आता। कभी कभी स्नेहा को लगने लगता कहीं बड़ा होकर ये ना सोचे माँ सिर्फ काम के लिए ही होती है और बाकी सब लोग साथ खेलने को। मितभाषी पति भी बेटे के साथ खूब खेलते। एक दिन प्रैम खरीद कर ले आए, वो बहुत खुश हुई। अब प्रैम में बेटे को लेटा दोनों पति पत्नी पार्क में उसे घुमाने के लिए ले जाया करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही पति ने ऑफिस से आते ही जल्दी से कपड़े बदले और बोले, इसे तैयार कर दो, जरा मैं घुमा कर ले आता हूँ। वो मन महसूस कर रह गई, हाँ उसे तो किचन देखना।

हो कैसे जा सकती। जब देवर की भी शादी तय हो गई तो सबसे ज्यादा खुशी स्नेहा को ही। अब उसे एक सहेली मिल जाएगी, वो भी तो दूसरे घर से आएगी, यहाँ के तौर तरीके से अनभिज्ञ। तय कर लिया स्नेहा ने, उसे वो कभी अकेलापन नहीं महसूस होने देगी। पर स्नेहा ने पाया, देवरानी ने तो इस घर में घुलने मिलने की कोई कोशिश ही नहीं की। पहले दिन ही इतनी देर तक सोती रही कि सासू जी को उसे जगाने के लिए ननद को भेजना पड़ा। और जब देवरानी से नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कह दिया, अभी तो तैयार होने में बहुत समय लगेगा, दोनों जन का नाश्ता कमरे में ही भिजवा दी जाए। ननद पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों नाश्ता भिजवाने की तो सोचना भी मत। सासू जी ने असहाय हो स्नेहा की तरफ देखा तो वो भागकर कामवाली को बुला लाई। शुक्र है स्नेहा ने उसे अतिरिक्त पैसे का वायदा कर दिन भर के लिए रोक लिया था, वरना स्नेहा को ही देवर देवरानी की सेवा में हाजिर होना पड़ता। देवरानी ने बाद में भी कभी जल्दी उठने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्नेहा से ही कहती, आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हैं, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। क्या बताएं स्नेहा, मायके में वो भी तो देर तक सोया करती थी। देवर के ऑफिस जाने के बाद ही देवरानी नहा धोकर बाहर आती, सासू माँ को कुछ टोकने का मौका ही नहीं मिलता, और तब तक किचन का सारा काम सिमट गया होता। थोड़ी देर इधर उधर घूम फिर वो अपने कमरे में चली जाती, अपने कपड़े जेवर चूड़ियाँ संभालती रहती, कमरे को सजाती रहती। सास नंदे भी तारीफ करती, कितने सुंदर ढंग से सजाकर अपना कमरा रखती है। स्नेहा इशारा समझ जाती पर कह नहीं पाती, मैं तो सारा घर ही संभालती रहती हूँ, अपने कमरे की बारी ही नहीं आती। देवरानी दिन में सो जाती और सोकर उठते ही तैयार होना शुरू कर देती। देवर ऑफिस से आ बमुश्किल चाय पीते और पत्नी श्री को लेकर घूमने निकल जाते। सास भी स्नेह से निहारते हुए कहती, एकदम राम सीता सी जोड़ी है, दोनों के ही एक से शौक, नीले घूमने फिरने का शौकीन, बहू भी वैसे ही मिली है। निशान तो अपने भोले राम है, उसे कभी भी घूमने फिरने का शौक नहीं रहा। उनके लाड़ले के कोई शौक ना होने की वजह से स्नेहा कितनी घुटती रही इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

देवरानी किसी दिन घूमने नहीं जाती और किचन में आ कभी सब्जी बना देती तो पूरे घर में शोर हो जाता। खाने के टेबल पर सासू जी इंगित करती, आज तो सब्जी छोटी बहू ने बनाई है। और हमेशा मौन रहकर खाना खाने वाले ससुर जी भी बोल पड़ते, अच्छा थोड़ी और तो बहुत बढ़िया बनी है। पतिदेव को लगता उन्हें भी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। वे भी स्वाद लेते हुए बोलते, सचमुच बहुत बढ़िया बनी है। देवर इस प्रशंसा पर ऐसे फूलते जैसे उनकी ही तारीफ हो रही हो। आज सेहा बेटे को थपकते थपकते खुद भी लेट गई थी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान थी शायद। वह अपने दिन याद कर रही थी जब नई नई इस घर में आई थी, सबके आसपास मंडराती रहती पर कोई नोटिस भी नहीं लेता, बल्कि अक्सर उपेक्षा ही झेलनी पड़ती। और आज यही देवरानी अपने कमरे में ही बनी रहती है तो पति ससुर सब पूछ लेते हैं, अंकिता नहीं दिख रही, उसकी तबीयत तो ठीक है? स्नेहा से तो किसी ने नहीं पूछा कभी, पर उसने कभी पूछने का मौका भी तो नहीं दिया। बुखार में भी गोलियां लेकर काम में लगी रहती, क्या ये ठीक किया उसने? मायके में किसी ने उसे कभी सामने बिठाकर नहीं समझाया, पर उम्र की सीढ़ियां पार करते हुए कहानियों में, धर्म ग्रंथों में पढ़कर, फिल्मों में देखकर, अपनी दादी नानी बुआ मौसी माँ को देखकर यह एहसास अपने आप मन में घर करता गया कि लड़की को त्याग करना चाहिए, अपनी इच्छा के ऊपर दूसरों की इच्छा सर्वोपरि रखनी चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए, सारा दुख हंसते हंसते सह जाना चाहिए, ससुराल के नियम कायदे बिना ना नुकुर के अपना लेने चाहिए। और स्नेहा ने इन सब में कुछ ज्यादा ही बहादुरी दिखाई, खुद आगे बढ़कर सारे काम अपने ऊपर ले लिए। और अब 2 साल में तो ससुर जी की दवाई, सासू जी की धूप अगरबत्ती, देवर की जीन्स, पति की तो कोई भी चीज अगर ना मिले तो सब एक ही पुकार लगाते, और वो भी दौड़ दौड़ कर सबकी जरूरतें पूरी करती रहती। पर इन सब में इसकी स्थिति इस अदृश्य हवा की तरह हो गई जिसके बिना कोई जी नहीं सकता। सबको उसकी जरूरत है पर हवा दिखाई नहीं देती, हवा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी अहमियत समझ में आती है, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आसपास बनी हुई है। खुद को मिटाकर वह उस घर में इस तरह घुल मिल गई है कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। आज जब अंकिता अलग थलग बनी हुई है तो सब उसका अस्तित्व महसूस तो कर रहे हैं, क्या जग की यही रीत है? सामने झुके लोगों की ही उपेक्षा की जाती है, और अगर कोई आपकी ही उपेक्षा करने लगे तब जाकर उसका अस्तित्व महसूस होता है।

अचानक घड़ी पर जो नजर गई तो देखा 5 बज गए हैं। एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तो पानी आने वाला होगा, सब जगह उसे पानी स्टोर करना है। घर में आते ही उसने ये काम सासू जी से अपने हाथों में ले लिया था। दौड़ दौड़ कर किचन, बाथरूम सब जगह पानी भरती, और ये जिम्मेवारी पूरी तरह उसी पर आ पड़ी। ननद और सासू दोनों अपने अपने कमरे में आराम करती रहती और पानी आने के समय का ख्याल स्नेहा को ही रखना पड़ता। स्नेहा सोचती, चलो सासू जी ने तो इतने वर्षों तक ये सब किया है, ननद तो छोटी है, कॉलेज से थकी हुई आई है, ये सारे काम स्नेहा को ही करने चाहिए। पर अब तो घर में देवरानी भी है, वो भी कर सकती है। और स्नेहा दोबारा लेट गई। जाने दो, आज देखती है पानी भरने कोई और उठता है या नहीं। अगर कोई पानी नहीं भरता तो होने दो थोड़ी मुश्किल, कह देगी उसकी आंख लग गई, आखिर वो भी इंसान ही है, कोई मशीन नहीं। स्नेहा ने तय कर लिया, आहान को तैयार कर पति के आने से पहले ही पार्क में ले जाएगी, कह देगी रो रहा था, बहलाने को ले गई। जब पति को नहीं महसूस होता कि ऑफिस से आकर कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, तो वो ही क्यों पानी का ग्लास और चाय का कप पकड़ाने का इंतजार करती रहे। खुद से लेकर पानी पी सकते हैं, बहन, माँ, अंकिता कोई भी चाय बनाकर दे सकती है, चाहे तो बाद में पार्क में आ सकते हैं, और ना तो ना सही। अब स्नेहा को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना ही होगा, वरना उसका वजूद ही मिटता जा रहा है, वो सिर्फ किसी की बेटी, बहू, माँ बनकर ही रह जाएगी। आखिर कब तक वह दूसरों की चाकरी करती रहेगी। उसे अपने लिए जीना भी सीखना होगा। जब किसी को उसकी परवाह नहीं तो उसे ही स्वयं के लिए सोचना होगा। वो यूं अपना वजूद नहीं मिटने दे सकती। आहान थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो किसी स्कूल में टीचर बन जाएगी। यह फैसला करते ही उसका मन एकदम हल्का हो आया और सालों बाद भूला हुआ सा पसंदीदा गीत होठों पर आ गया, गुनगुना उठी।

आखिर कब तक, रश्मि वर्मा उर्फ रश्मि रविजा की लिखी कहानी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गो।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र

0: सलामे इश्क ये गीत अभी आपने सुना मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। आवाजें थीं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, अनजान के बोल, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अभी तो जीले इस फिल्म से। इंदिवर के बोल हैं, सपन जगमोहन का संगीत।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म अर्थ से। कैफी आजमी का लिखा गीत था, कुलदीप सिंह का संगीत।
1: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
2: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
1: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
2: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राजेश रोशन का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
6: नसीब इंसान का।
5: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आशा से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी ने इस गीत के बोल लिखे हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों के सुरों में आशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। चित्रपट संगीत का ये सफ़र आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारा अगला कार्यक्रम मैटिनी शो।

0: आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की बातचीत।
1: विविध भारती के स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं शूटिंग कोच नेहा चौहान। नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: थैंक यू सो मच।
1: मुझे ये बताइए कि एक रेडियो स्टेशन में आके जो पहली फीलिंग है वो क्या थी आपको?
2: आई गेस रेडियो स्टेशन के अंदर मुझे ऐसे लगा कि म्यूजिक मेन, सो जो हम म्यूजिक के जो अलग अलग पुराने जो डिस्क आपने हमें दिखाए, तो उसकी जो खुशबू थी, जो एक ओल्ड खुशबू थी, दैट वाज ब्यूटीफुल। आई थिंक वो खुशबू और इतनी शांति जो है, ये बहुत ही, आई थिंक आई वाज सो हैप्पी टू बी हियर।
1: अच्छा, ये बताइए कि शूटिंग से नाता किस तरह से जुड़ा था आपका, और क्या आपने शूटिंग से ही शुरू किया था या किसी और खेल से शुरू किया था?
2: सो बचपन से हमने स्पोर्ट्स बहुत प्रायोरिटाइज किया था, मेरे पेरेंट्स ने, माय फादर, तो मेरे भाई और मैं हमेशा स्पोर्ट्स में थे।
1: लेकिन क्या माता पिता के साथ भी स्पोर्ट्स की परंपरा थी?
2: ऐसे तो नहीं थी, लेकिन मेरे फादर खेलते थे, उनके कॉलेज में बॉक्सिंग करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो मेरे जो चाचा है वो क्रिकेट खेलते थे, तो आई गेस हमारी फैमिली में स्पोर्ट्स, हम खाते पीते बस स्पोर्ट्स के बारे में ही बात करते रहे। तो आई गेस दैट इज हाउ हम इंट्रोड्यूस हुए स्पोर्ट्स से। तो कोई भी चीज बिना स्पोर्ट्स की हमारे यहाँ पे शुरुआत ही नहीं होती थी और एंड भी नहीं होता था। तो वैसे ही शूटिंग का जो इंट्रोडक्शन जो हुआ है, वो मैं 8th क्लास में थी और हमारे यहाँ पे हमारी स्कूल जो शैलेंद्र एजुकेशन सोसाइटी स्कूल है, तो वहाँ पे एक शूटिंग रेंज, एक मेक टू शिफ्ट शूटिंग रेंज का इंट्रोडक्शन किया गया था थ्रू NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के। तो वो एक स्कूल लेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स था जो हम 8th और 9th क्लास में करते थे, तो वैसे हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा था।
1: तो सबसे पहले गन तब हाथ मिली थी?
2: तब गन हाथ मिली थी, यस।
1: वो कैसी फीलिंग थी?
2: इट वाज गुड। गन्स किसको पसंद नहीं आती है, मतलब कुछ अलग फीलिंग होती है आपको। जैसे हम जो मेले में हम शूट करते हैं, गुब्बारे जो शूट करते हैं, तो आई गेस वहां से तो स्टार्ट होता ही है सबका, लेकिन वो स्कूल में वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली बार चलाए थे तो एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा था, तो आई गेस यस बट वो काफी एक अच्छा, कुछ डिफरेंट करने का जो एक है वो, क्योंकि हमेशा बंदूक हम देखते हैं कि यू नो आर्मी मिलिट्री एंड मूवीज में देखते थे,
1: बिल्कुल,
2: बट खुद हमें करने मिलता है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट फीलिंग।
1: और किस

0: काफ़ी जानने को मिलता है. तो आई थिंक वहाँ से जो स्टार्ट हुआ, फिर रुइया कॉलेज में हमारी एक शूटिंग रेंज बन गई थी, तो वहाँ पे फिर मैं रुइया कॉलेज में शूटिंग करती थी. तो वैसे ही ये जर्नी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा खेल खेल के नेशनल में मैं सिलेक्ट हुई थी
1: जी.
0: और वैसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी.
1: ये जो कॉलेज के जमाने से शूटिंग करना और उसके बाद नेशनल तक चले जाना, ये सफर कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि स्कूल और कॉलेज अलग दुनिया होती है, और नेशनल तक चले जाना, उसके बीच का सफर जो है उसमें काफी जद्दोजहद रही होगी.
0: सो मुंबई में रेंजेस इतने नहीं थे जो शूटिंग रेंजेस है. एक जो रेंज है जो महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन है, हाँ. जो वर्ली में है, तो वो एक रेंज है जहाँ पे शूटिंग की जाती थी. और एक चेतना कॉलेज करके है बांद्रा में, वहाँ पे एक ये था. तो दो तीन जगह जहाँ पे थी वहीं पे ये स्पोर्ट खेला जाता था, और हमारे स्कूल में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया था. क्योंकि जो चेतना कॉलेज में जो कोचिंग कर रहे थे वो यहाँ पे भी आए थे इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्कूल में देखने के लिए कि यहाँ पे शूटिंग करा जा सकता है क्या. तो आई गेस वो जर्नी जो थी, स्कूल तो हमारा घर से 5 मिनट ही था, तो वहाँ पे तो आसान था. लेकिन स्कूल से हम जब कहीं और दादर में जब रुइया कॉलेज जाना पड़ा, तो वो टाइम पे स्कूल कॉलेज मैनेज करना वो, और फिर भी अपना स्पोर्ट खेलना. आई गेस मुंबई में अगर आप दहीसर में रह रहे हो और आपको दादर जाना है, तो तब 1 आवर का जो ट्रैवल था ट्रेन में. सो मॉर्निंग हम 6 o'clock को निकलते थे, 7 o'clock के लेक्चर्स अटेंड करके, फिर दोपहर में शूटिंग का ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज वगैरह पूरा करके, हम 9:30 को मैं घर आती थी
1: रात को.
0: यस, रात को.
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत 15-16 घंटे का.
0: यस यस. तो वो तो जर्नी वैसी ही ट्रैवल और जो भी ट्रेनिंग, और तो एक प्रकार का, और वो एनर्जी अलग थी, डिसिप्लिन ही अलग था, क्योंकि सब आपके साथ, बहुत सारे आपके साथ आपके कलीग्स जो थे वो भी करते थे. तो वो फन था शूटिंग, तब स्पोर्ट ये फन था. और वैसे ही शुरुआत हुई कॉलेज के, और उसी में फिर नेशनल के लिए हम क्वालिफाई कर दिए.
1: जी, मेडल्स मिलने की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
0: मेडल्स मुझे यूनिवर्सिटी से शुरुआत हुई थी, यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप से स्टार्ट हुए थे, जहाँ पे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने 400 में से 397 शूट किया था. आई थिंक दैट वाज अ रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड. तो वो तब किसी ने शूट नहीं किया था. एंड उसी के साथ स्टेट मेडल्स एंड फिर नेशनल्स में, फिर मैं नेशनल्स में मेडल्स मिलना शुरू हो गया था. तो वैसे ही थोड़े थोड़े जोड़ जोड़ के स्टेट, नेशनल्स, यूनिवर्सिटी, ऐसी शुरुआत हो गई थी.
1: क्या बात है. अच्छा, एक अच्छे कोच की क्या भूमिका होती है, और आपकी जिंदगी में वो कोच कौन और कब आए?
0: कोच की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड वो मुझे कोच बनने के बाद ज्यादा रियलाइज हुआ
1: बिल्कुल
0: कि कितना इम्पैक्ट एक कोच का होता है. मेरे लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे कोच ने, मिस्टर संजय चक्रवर्ती, जो अंजलि भागवत, गगन नारंग और सुमा शिरूर, दीपाली देशपांडे, उनके कोच रह चुके थे. सो आई थिंक उन्होंने बहुत ही एक परसिस्टेंस जो होता है, डिसिप्लिन, तो आई गेस हर एक स्पोर्ट की जरूरत है, हर एक लाइफ की जरूरत है. तो आई गेस वो तो उन्होंने सिखाया, लेकिन कंपटीशन को किस तरह आपको देखना है, एंड सिंस हमारा स्पोर्ट एक मेंटल स्पोर्ट है
1: बिल्कुल,
0: तो उसकी जो तैयारी करनी है वो उन्होंने, उनका इम्पैक्ट मुझ पे बहुत रहा है.
1: शूटिंग जो है वो, जैसे कि आपने कहा, एक मेंटल गेम है, तो धीरज, फोकस, ये सब कैसे मेंटेन किया जाता है, उसका रूटीन क्या होता है? जब आप खुद शूट करती थी तो अपने आप को किस तरह प्रिपेयर करती थी?
0: सो जब मैं शूट कर रही थी, इतना एक्सपोजर नहीं था इन बहुत सारी चीज़ों का. तो हमारे लिए तो कोच ने कहा इतना आपको करना है, ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है, या ये ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करनी है, या फिजिकल ट्रेनिंग करनी है. सो दैट वॉज, एंड यही आपका काम है, उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं बाहर जाना नहीं है, कहीं पार्टी पे नहीं जाना है, कोई बर्थडे पे नहीं जाना है. आई गेस वो बहुत पहले मैं स्कूल और कॉलेज से ही मुझे वो समझ में आ गया था कि आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ये हमारे कोच ने हमें बहुत पहले बता दिया था. एंड मुझे लग रहा है वही कंसंट्रेशन बना और वही चीज रिपीट कि दिन में इतने बजे उठना है, ये आपका रूटीन है, ये करना है, कॉलेज के लेक्चर

0: अटेंड करने हैं, फिर आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, फिर आपको 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, फिर वही चीज़ आपको रूटीन में अगले दिन वही करना है. सो आई गेस वो चीज़ हमें वो बताई गई थी हमारे कोच ने और वही हम करते गए.
1: बिल्कुल
0: बट आज अगर आप मुझे पूछते हैं कि फोकस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है या कंसंट्रेशन, तो हमारे यहाँ अभी काफ़ी स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत इंक्लूजन हुआ है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है, जो आपको बताते हैं कि स्पोर्ट को कैसे हैंडल करना है,
1: मेंटल तैयारी क्या है।
0: मेंटल तैयारी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या खाना है ताकि आपका फोकस अच्छा रहे, जल्दी सोना है. हम तो पहले मतलब हम थक जाते थे और सो जाते थे, तो इतना एक्सपोजर नहीं था मोबाइल फोन का, तो वो कंसंट्रेशन अपने आप वो 3 घंटे में अपने आप हम फोकस हो जाते थे.
1: बिल्कुल। अच्छा, बतौर शूटर जो आपका करियर था वो किस तरह चला और वो कौन से हालात थे जिन्होंने आपको कोच बना दिया?
0: सो आई गेस एज अ शूटर तो सबसे पहला तो हमने जो स्टार्ट किया है वो एक स्पोर्ट के तौर पे, एक यू नो फिजिकल स्पोर्ट है, तो आपको आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रखना है, तो वो ही एक गोल था. उसके बाद जब 2-4 साल के बाद जब मेडल्स मिलने लगे, देन आप थोड़े से ड्रीम करने लगते हैं कि ओके अभी इसके बाद क्या है, तो आप आपके आजू बाजू में जो इंस्पिरेशन है आप देखते हैं. तो आई गेस वो देख के तो सबसे पहला मेन कि ओलंपिक्स में जाना है या इंटरनेशनल में जाना है, तो वो गोल कॉलेज के टाइम हमने काफ़ी वो सोचने लगे थे हम उस बारे में. एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि शूटर के बाद मैंने कभी एज अ शूटर सोचा था कि मैं कोच बनूंगी. आइडियली मैंने रुइया कॉलेज से मतलब इकोनॉमिक ऑनर्स किया था एंड देन
1: जी,
0: फिर मैंने एमबीए किया था.
1: एमबीए करने की क्या वजह
0: यस
1: थी?
0: नहीं, एक साइड में बैकअप प्लान, बिकॉज स्पोर्ट के साथ एक
1: एजुकेशन चलते
0: एजुकेशन
1: रहना चाहिए।
0: बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एजुकेशन ने. मुझे ऐसे लगता है कि उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए स्पोर्ट को आपको बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि वो एक बैलेंस देता है आपको. तो मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं स्पोर्ट करूंगी ही करूंगी, लेकिन मैं एजुकेशन को बैलेंस रखूंगी. तो आई गेस जब 2013 के अराउंड काफ़ी मैंने आई थिंक 12-15 साल शूटिंग करने के बाद आई वॉज नॉट सो हैप्पी विद द वे शूटिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि शूटिंग जो स्पोर्ट है हमारा वो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, तो आपको मतलब आप 50-60 तक आप शूटिंग कर सकते हैं, तो उसका सिंस एज लिमिट नहीं है, तो आप उसको छोड़ने का मौका आता नहीं है आप में, क्योंकि फिजिकल स्पोर्ट में तो आप इंजर्ड होते हैं
1: यस,
0: या यू नो
1: एक
0: कोई
1: लिमिट आती है।
0: लिमिट आती है, तो शूटिंग स्पोर्ट में वो लिमिट नहीं है. तो जब 2013 में मैंने सोचा कि नहीं अभी ये बैकअप तो है हमारे पास, तो लेट्स आप शूटिंग की जगह थोड़ा सा कॉरपोरेट में देखते हैं कि क्या है. तो मैंने 5 to 6 months में एक एचआर के ऑर्गेनाइजेशन में थी मैं, बट मैं बिल्कुल खुश नहीं थी वहाँ पे, बिकॉज इतनी पूरी जिंदगी आपकी स्पोर्ट में गई, आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर करियर और लाइफ के जब स्पोर्ट में जाते हैं तो आप बहुत लॉस्ट फील करते हैं अचानक एक ऑफिस में कंस्ट्रेंट होके. फिर 2014 में एक जो गन फॉर ग्लोरी शूटिंग एकेडमी है, गगन नारंग स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन, जो गगन नारंग जी है जो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, तो उन्होंने एकेडमी कुछ 15 साल पहले ओपन की थी अराउंड 2011-12 में, और हमने गुजरात में ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम शुरू करना था. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पहुंचा, क्योंकि हम लोग सब साथ में शूटिंग करते थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कोच हो तो आप बताइए. तो मैंने फिर बोला कि ठीक है मैं देख के बताती हूँ कि कोई कोच होगा जो वहाँ पे इंटरेस्ट रखेगा जाने के लिए. तो ऐसा तो कुछ नहीं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने घर पे बात किया, मतलब कि क्या मैं जा सकती हूँ क्या गुजरात और एक्सप्लोर कर सकती हूँ ये क्या है. तो जॉब अच्छी थी मेरी, आई वॉज डूइंग गुड. घर वालों ने मुझे कहा, मेरे फादर ने कहा मुझे कि देखो तुमने इतने साल तुम्हारा पैशन खुद एक्सपीरियंस किया है, तुमको जाना है, तुम देखो जाके. तो ऐसे ही अहमदाबाद में एक स्कूल संस्कार धाम है, वहाँ पे हमारा ये टैलेंट एंड प्रोग्राम था गन फॉर ग्लोरी का, तो हम वहाँ पे गए वो स्कूल में, तो वो वहाँ के गुजरात के गांव-गांव से बच्चे आए थे, काफी 12-13 साल के, तो वैसे वो एक प्रोग्राम एक था गवर्नमेंट का, तो वो प्रोग्राम हम एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ से हम टैलेंट लेके हम ट्रेन करने, तो मुझे कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोच बनूंगी कभी. तो वैसे कोचिंग का जर्नी मेरा शुरू हुआ.
1: गजब. और आज ये स्थिति है कि बहुत स्टार खिलाड़ी जो हैं वो आपकी निगरानी में तैयारी कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के बारे में बताएं जिन्होंने बहुत नाम कमाया और इस वक्त आपके साथ सीख रहे हैं.
0: सो गुजरात से जो खिलाड़ी हमारी बनी थी वो है इलेवन इलवालरिवन, जो एक अर्जुन अवार्डी है, 2 बार ओलंपिक खेल चुके हैं.
1: वो गुजरात में ही मिली आपको?
0: यस, जो प्रोग्राम हम रन कर रहे थे तो वो वहां पे उस प्रोग्राम के अंडर आए थे.
1: किसी गांव से आई थी?
0: नहीं, वो शी वॉज फ्रॉम सिटी, वो गुजरात से ही थे. तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स थे, उनको वो जोड़ के हम वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे, तो वो टैलेंट सर्च से वो आए थे, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई. एंड आज भी हम साथ में हैं, शी इज एन अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड नंबर 1. सो आई गेस वहां से उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी जर्नी की भी. और अभी जो धनुष श्रीकांत है, जो 2 बार डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, सो आई गेस वो 2 एथलीट्स ऐसे थे जहां से उनकी मतलब शुरुआत हुई थी. धनुष है तेलंगाना से, हैदराबाद से है. तो बट कि सारे हमारे गन फॉर ग्लोरी एकेडमी का हिस्सा है, आज भी है. और बहुत सारे ऐसे एथलीट्स है, उमा महेश करके है, रमिता जिंडाल जो हरियाणा से है, जो पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में शी वॉज इन टॉप 8, तो वो भी हमारे साथ है, हमारी एथलीट है. तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स के साथ काम करने का मौका मिला.
1: ये जो आपके प्रिय 2 टॉप एथलीट है, इनको आप कितने साल से सिखा रही है?
0: इलावेनिल को मैं सिखा रही हूँ पास्ट मोर देन 12 इयर्स से, और धनुष को भी 10 साल से वो मेरे साथ में है
1: जी.
0: और काफी दूसरे एथलीट्स भी जो है वो भी आज 8-8, 10-10 साल से साथ में है.
1: तो आपका ही जो तकरीबन 1 डेकेड से ज्यादा का कोचिंग का ये सफर है, जाहिर है पहले तो कोई ट्रेनिंग नहीं थी कोचिंग करने की, कोच बनने की, ये सेल्फ लर्न मामला रहा है सारा, आपने खुद को ऑर्गेनिकली डेवलप किया बतौर एक कोच?
0: सो स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बहुत लोगों के गाइडेंस मिले, जैसे गगन नारंग जी जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी कोचेस को देखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में देखा हुआ था. मैं खुद मैंने काफ़ी कोचेस के साथ मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, तो बहुत लोगों के स्टाइल्स हमें पता थे. तो वैसे वो जर्नी गाइडेंस के थ्रू स्टार्ट हुई. लेकिन बहुत बड़ा मौका मुझे 2017 में हमारा जो सबसे बड़ा चेंज आया कोचिंग का, क्योंकि इतना कोचेस को सिखाने का इंडिया में आई थिंक बहुत सारे कम कोर्सेस थे, बट कोचिंग कैसे करते हैं वो कोर्सेस नहीं थे. तो 2017 में हमारी एकेडमी ने एक प्रोजेक्ट लीप करके एक प्रोग्राम था, और उसके साथ ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके जो है उन्होंने कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम शुरू किया था. तो उस कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम के अंडर शूटिंग और बैडमिंटन थे, और कोचिंग कैसे करते हैं, आपको कोचिंग एथलीट को कैसे करनी है, वो कोर्सेस शुरू हो गए थे. वो उस पर्टिकुलर जो कोचेस एक्सेलेंस प्रोग्राम का मेरे पे बहुत बहुत मुझ पर इम्पैक्ट रहा है, और उसमें लाइफ लेसन्स कोच ने कैसे एथलीट को बनाना है, वहां से शुरुआत हुई.
1: अच्छा, जिस जमाने में आप खेलती थी तब टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं था, आज हर खेल में टेक्नोलॉजी का दखल बहुत बढ़ गया है, तो कितना हेल्प करती है आज टेक्नोलॉजी बतौर कोच आप जब सिखाती हैं शूटर्स को?
0: सो टेक्नोलॉजी हमारे इसमें टेक्निक, ये किसी भी एथलीट को, टॉप एथलीट शायद बिकॉज वो बाहर खेलने जाते थे तो वो एक दूसरे को देख के बाहर के कंट्रीज में देख के सीख लेते थे, तो वही टेक्निक्स जो आती थी वो इंडिया में वो लेके आते थे और हम पे हम शेयर, नॉलेज शेयरिंग जो बोलते हैं वो शेयर किया जाता था. तो टेक्नोलॉजी एज सच तो कुछ भी नहीं था. अभी जो फास्ट फॉरवर्ड, आप 10-15 साल फास्ट फॉरवर्ड मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी इक्विपमेंट ओरिएंटेड हमारा गेम हो चुका है. सो काफ़ी एप्लीकेशंस और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें आई हुई है, टूल्स आए हुए हैं जो आपको मॉनिटर कर सकते हैं, आपका स्पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं.
1: अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत पूरी दुनिया में शूटिंग के मामले में कहाँ पड़ता है और क्या भविष्य है हमारा?
0: भारत तो आई थिंक आप अगर देखोगे तो शूटिंग के जो ओलंपिक मेडल्स है वो बहुत ही ज़्यादा है. आज हम 2004 से देख रहे हैं तो ओलंपिक मेडल्स में हमने बहुत ही
1: लगातार
0: मेडल्स है. कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में, हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमने बहुत ही प्रोग्रेस किया हुआ है. तो आई गेस शूटिंग इज़ नंबर वन स्पोर्ट राइट नाउ इन इंडिया और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि जो एथलीट्स बहुत जिन्होंने वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है उन्होंने अपने अपने एकेडमीज ओपन किए और उतना गाइडेंस बढ़ गया है, एक्सपोजर बढ़ गया है. सो आई गेस शूटिंग इज वन ऑफ द नंबर वन स्पोर्ट इन इंडिया.
1: आपके स्कूल में एक छोटी सी शूटिंग रेंज शुरू होती है और आप जुड़ जाती हैं. गुजरात में एक ग्रास रूट प्रोग्राम होता है और आपको कुछ ऐसे एथलीट मिलते हैं जो आगे चल के नाम कमाते हैं. ये जो ग्रास रूट प्रोग्राम्स होते हैं कितना मायने रखते हैं और आज देश के कोने कोने में शूटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए आप लोग क्या करें?
0: सो बहुत काफ़ी स्कूल्स में ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं. एटलीस्ट मैं एक एकेडमी के पर्सपेक्टिव से बोल सकती हूँ कि काफ़ी हमारे 20 एकेडमीज़ है आज, 20 ब्रांचेस है पूरे कंट्री में जहाँ पे हमारे ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स बनते हैं. और वहाँ पे हमारी टीम जो है वो सर्च करती है, अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करती है टू सी कि शूटिंग स्पोर्ट के लिए कौन सा स्टूडेंट, एक कोई रॉ स्टूडेंट है
1: उसमें जो संभावना
0: है कि जो टैलेंटेड है. और कुछ हमने काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स फिगर आउट किए हैं जो एक शूटिंग एथलीट, मतलब जो शूटर है वो बनने के लिए चाहिए, कुछ स्किल्स है. तो वो स्किल्स हम ढूंढते हैं काफ़ी स्कूल्स में, भुवनेश्वर है, पुणे है, आज गुजरात का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जबलपुर है, चेन्नई है, ये काफ़ी सारे जगहों पे हमने ये टैलेंट सर्च किए हुए हैं. और आज बहुत जगह पे जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो एक ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम ही है जहाँ से कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं और अपना सेंटर्स में हमारे वो ट्रेनिंग करते हैं और वो एज अ एथलीट डेवलप होता है.
1: अच्छा, जब आप शूटिंग नहीं कर रही होती हैं, फुर्सत के पल होते हैं, तो वो क्या करते हुए बीतते हैं?
0: कोचिंग नहीं करती हूँ क्योंकि पूरा दिन हम कोचिंग करते हैं. जब नहीं करती हूँ तभी भी नेक्स्ट डे के बारे में सोचती हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन चलता रहता है कि ओके ये आज, ये नेक्स्ट डे ये एथलीट करना है. लेकिन मैं आई लाइक रीडिंग, रीडिंग बहुत अच्छा, मुझे ट्रैवलिंग अच्छा लगता है. तो आई गेस ये बहुत सारी 2-3 चीज़ है जो मैं कोशिश करती हूँ कि करूँ.
1: एक कोच के तौर पर ये जो उतार चढ़ाव हैं खिलाड़ियों के जीवन के, उनकी प्रोग्रेस के, कई बार नाकामी होती है, कई बार बड़ी कामयाबियां होती हैं, कई बार एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी के बीच की डिस्टेंस बहुत लंबी होती है, खुद को और खिलाड़ियों को संभालना कितना मुश्किल होता है?
0: ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एथलीट्स इतनी मेहनत करते हैं और आप सारे एथलीट्स हर बार आप मेडल नहीं जीत सकते हैं या हर बार आप वही सेम ऊंचाइयां नहीं आप देख सकते हैं. तो हमारी बहुत अच्छी टीम होती है, बहुत लोग जुड़े होते हैं एक एथलीट के. कोच तो एक बोलते हैं कैप्टन है, लेकिन वो शिप को बनाने में बहुत सारे लोगों का इम्पोर्टेंस है. तो हम ये टीम आई गेस एक अच्छा एनवायरनमेंट एथलीट को देते हैं और हम संभाल लेते हैं. मुझे ऐसे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम संभाल लेते हैं उस एथलीट को, उसकी जो जो ज़रूरत है वो टाइम पे, वो उसको देखना, उसको समझना एंड फिर उसको वो काइंड ऑफ सपोर्ट देना. अगर आप वो कर सकते हैं तो वो अब मुश्किल नहीं है इतना.
1: आपके सिखाए हुए बच्चों को अर्जुन अवार्ड मिला है, कितना गर्व होता है?
0: बहुत ही, इट्स प्राइड. रिकग्निशन इम्पॉर्टेंट है उनके काम के लिए, इन स्पोर्ट्स काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि मेडल्स तो है ही, लेकिन अवार्ड्स ये पार्ट ऑफ योर जर्नी है. एंड लेकिन एक नेशनल अवार्ड मिलना एथलीट को और वो भी सबके सामने रिकग्नाइज होना पूरे, बिकॉज आप वो मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, तो मुझे लग रहा है कि इट्स अ प्राइड.
1: अच्छा, एक और बड़ा मकाम आपकी अपनी जर्नी में आया है जब अभी अभी आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है, अभी अवार्ड मिलना बाकी है. ये खबर जब आपको मिली तो क्या फीलिंग थी, क्या कैफियत थी?
0: फीलिंग तो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि जितना काम हम करते हैं और इतने साल से जो काम किया है एंड उसका जब एक रिकग्निशन आपके एथलीट्स बनाने का आपको मिल रहा है, आई गेस एक अच्छा फीलिंग है, बहुत ही हम्बल फीलिंग है और ऑनर फील होता है कि आपको रिकग्नाइज किया गया है. सो आई गेस इट्स अ गुड फीलिंग.
1: अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत बड़ी कॉम्पिटिशन्स के अवार्ड अब और कितनी दूर हैं, आने वाले सालों में किन किन मुकाबलों में अवार्ड्स की उम्मीद है?
0: सो अभी एशियन गेम्स है, सितंबर से एशियन गेम्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो चार साल में एक बार आता है एंड इट इज़ मच लुक्ड आफ्टर, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स है और एशिया के टॉप एशिया की जो कंट्रीज है और उसके टॉप एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही प्रेस्टीजियस इवेंट है एशियन गेम्स. उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जो 2028 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स है, उसका जो कोटा इवेंट होता है वहां से शुरुआत होगी.
1: बिल्कुल.
0: सो काफी दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं.
1: बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं. और विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और अपनी पूरी जर्नी के बारे में आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन चलने से पहले अपनी पसंद का एक गाना जरूर बताइए जो हम अपने श्रोताओं को डेडिकेट करेंगे.
0: वैसे तो बहुत गाने, लेकिन एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग जो है वो है जब कोई बात बिगड़ जाए.
1: क्या बात है, जुर्म फिल्म का ये गाना सुनते हैं. आप स्टूडियो में आई, बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू.
1: शुक्रिया.

0: मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित शूटिंग कोच नेहा चौहान से यूनुस खान की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दोस्तों, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। चलिए थोड़ी देर के लिए इस मनोरंजन को विराम देते हुए सुनते हैं हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है।

0: विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया। 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया। विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरी से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने AI सक्षम SLN डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांड में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के रंगिया स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी
2: ने संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से लिखे गए थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए एक बार फिर मनोरंजन को जारी रखते हुए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। मैं पूजा नारायणिया। जागते रहो फिल्म से मुकेश की आवाज में पहला गीत सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया। आज है सलील चौधरी की पुण्यतिथि, हम उन्हें याद कर रहे हैं।

0: सच है क्या।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि। उन्हें याद करते हुए आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने उनके संगीतबद्ध किए कुछ गीत शामिल किए हैं। अगला गीत मधुमति फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज है संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि और हम उन्हें याद कर रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म आनंद से मन्नाडी की आवाज में, योगेश का लिखा गीत, धुन बनाई है सलिल चौधरी ने।

बस इतना सा ख्वाब है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और शान की आवाजों में। गोल्डी पहल और श्यामराज का लिखा गीत था और आदेश श्रीवास्तव का संगीतबद्ध किया। ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव की आज पुण्यतिथि है, हम उन्हें याद करते हुए आपको उन्हीं के संगीतबद्ध किए कुछ गीत सुनवा रहे हैं। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में उलझन फिल्म का गीत, मदन पाल ने इसे लिखा है, आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। अब आपको सुनवा रहे हैं आदि श्रीवास्तव का ही संगीतबद्ध किया गीत। निदा फाजली ने इस गीत को लिखा है, जगजीत सिंह और अलका याग्निक ने गाया है। फिल्म का नाम तरकीब।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
3: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है। वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
2: कभी चॉकलेटी हीरो कभी खूंखार विलेन तो कभी परम दिव्य साईं।
3: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत। अभिजीत और साथियों ने इसे गाया है, जावेद अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है आदि श्रीवास्तव ने।

अर्का याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले की आवाजों में ये अगला गीत आप सुनेंगे कभी खुशी कभी गम फिल्म से, समीर के बोल, आदेश श्रीवास्तव का संगीत।

कैलाश खैर, महुआ कामत और श्रद्धा पंडित की आवाजों में देव फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं निदा फाजली के बोल, आदि श्रीवास्तव की बनाई धुन।

देव फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम यादों की महफिल यहीं संपन्न होने जा रहा है। आज हमने आपको संगीतकार सलिल चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत सुनाए, साथ ही संगीतकार आदि श्रीवास्तव की पुण्यतिथि पर भी हमने उनके संगीतबद्ध गीत आज यादों की महफिल कार्यक्रम में शामिल किए थे। ये सफर आपने तय किया पूजा नारायणिया के साथ।

0: दोस्तों, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
1: Entrepreneurship now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan, and as the Honorable Rashtrapati ji in her address said that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
2: Aaj ke samaroh mein hame ek mahatvapurna sandesh milta hai. Rashtra nirman keval badi pariyojanaon se nahi hota, rashtra nirman kaksha mein hota hai. Shrotao, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का यह आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का यह विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शहसियार खान अपने साथी
3: लोगों को संतुलित आहार पोषण और
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन

0: संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में मदद कर रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए एक बार फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है और साथ ही अभिनेता और अभिनेत्री कौन है, तो पहले लेते हैं आपके कमेंट्स। आज के गीतों की लिस्ट में सारे गीत जाने पहचाने हैं और सदाबहार तो हैं ही, ऐसा हमारी एक श्रोता लिख रही हैं। गीतों का संसार बहुत बड़ा और अनोखा है। कभी कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सारा दिन हमारे साथ चलते हैं और रात को नींद की थपकियां देकर हमें सुला भी देते हैं। गीत क्या है, जब दुख हो तो हमें थाम लें और सुख में आनंद की बारिश कर दें। जीवन में बहुत सी बातें समझ के परे होती हैं, यह गीत भी ऐसे ही होते हैं। सुख दुख के साथ ही जीवन के लिए सबसे आवश्यक संजीवनी बूटी यह गीत ही तो है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी बातें आपने हमसे साझा की है। गीत संगीत ना हो जीवन में तो कैसा जीवन। एक और श्रोता हमसे कह रहे हैं कि आज की इबारत की सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें प्रेम कोई दावा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे भीतर उतरता हुआ एहसास है। यह प्रेम की उस दास्तां सी है जहां दो लोग शायद मिले कम हैं मगर एक दूसरे में ठहर बहुत गए हैं। संवादों के बीच छुपी शरारत, इंतजार और अनकही चाहत धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते का रूप लेती है जिसका कोई नाम नहीं। यहाँ सच और झूठ भी मोहब्बत के सामने अपना अर्थ खो देते हैं क्योंकि दिल जिसे सच मान ले उसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। बस यह एहसास ही बचता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कहानी बनकर नहीं एक खुशबू की तरह आते हैं, दिखाई नहीं देते मगर उनके भीतर, उनके गुजर जाने के बाद भी देर तक हमारे भीतर महकते रहते हैं। जी हाँ, एक श्रोता हमें लिख रहे हैं कि आनंद ही आनंद रहे, वो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और साथ ही हमें इस तरह से कमेंट भी कर रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने साथ ही गीत और फिल्मों के नाम भी लिख भेजे हैं जो उन्हें लगता है कि आज की इबारत के अनुसार बजने वाले हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। एक श्रोता लिखती है कि प्रेम यदि सच में प्रेम है तो वह हथेली की रेखा नहीं जिसे मुट्ठी में कैद कर लिया जाए, वह तो अनंत आकाश है जहां पक्षी को उड़ने की स्वतंत्रता भी है और लौट आने के लिए एक अपना घोंसला भी।

क्या बात है, आप सभी ने जवाब भी लिख भेजे हैं। फिल्म का नाम है आप बीती और अभिनेता और अभिनेत्री जो अभी हमने आपको गीत सुनवाया था उसमें थे हेमा मालिनी और शशि कपूर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें लिख भेजे हैं। और अब अगला गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आपको बताना है कि इस फिल्म में सखियों के साथ जो अभिनेत्री गुनगुना रही हैं वो कौन है, और साथ ही इसमें एक पक्षी भी दिखाई देता है इस गीत में, तो उसका भी नाम लिख भेजिए हमें।

0: अपने हुए पराए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में अभी हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत, और जो प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं उनके जवाब आपने लिख भेजे हैं। कुछ ही देर में हम आपके कमेंट्स लेते हैं, उससे पहले लेते हैं ये संदेश।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
6: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
6: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
6: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
8: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
7: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
8: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
7: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि धन्य हो, सब गीतों की पंक्तियां पहली लाइन में ही दी हैं और पूछती हैं कि कौन से गीत बजेंगे। चलो जो भी बजेंगे वो हम सुनेंगे, क्या बात है, जरूर सुनिए। और अच्छा ये बताइए कि जो गीत अभी हमने इन संदेशों से पहले बजाया था क्या वो आपने बूझ लिया था आसानी से। हमारे अगले श्रोता कह रहे हैं कि आज गद्यांश में इश्क मोहब्बत की खास कहानी उकेरी हुई है। इश्क कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसे सिर्फ किताबों में पढ़ा जाए, नहीं यह कोई ऐसा फलसफा है जिसे चंद जुमलों में समेटा जा सके। यह तो दो रूहों के बीच बहने वाली वह मध्यम सी नदी है जो खामोशी से बहती है लेकिन पूरे वजूद को सराबोर कर देती है। प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि जिस्म फना हो सकते हैं लेकिन दो दिलों के बीच धड़का हुआ सच्चा एहसास कायनात के जर्रे जर्रे में हमेशा के लिए अमर रहता है। न आंखों से बयां हुई न लफ्जों में समा सकी यह इश्क, यह कहानी इश्क है बस धड़कनों से गाई जा सकी। क्या बात है, क्या फरमाया है आपने। एक श्रोता कहते हैं कि सुमधुर सुरीले गीतों और श्रोताओं के दिलचस्प संदेशों से सजी विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें इबारत पढ़कर प्यार मोहब्बत की कहानी मधुर गीत गा रही है, दो दिलों के बीच की निशानी, खामोश एहसास की जुबानी, जवानी दीवानी की मस्तानी खुशबू आ रही है, इस तरह से उन्होंने कुछ गीत हमें सुझाए हैं।

एक श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज फिर इबारत में छिपे गीतों के मुखड़े और अंतरे से गीतों की गाड़ी आगे बढ़ेगी, जिसमें एक से बढ़कर एक गीतों की आमद दिखती है। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, दरिया में फेंक दू चाबी, इस तरह से उन्होंने हमें गीत भी लिख कर भेजे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भिन्न भिन्न गानों के ताने बाने में बुनी गई इश्किया इबारत दिल फेंक आशिक माशुकाओं के दिलों को छेड़ती हुई रोमानी प्रेम गाथा से सराबोर है। हुस्नो इश्क के इस टकराव में तहजीबी अदाएं हैं, छेड़खानी है, इकरार है तकरार, इनकार फिर अंत में स्वीकार भी है। मजबूर है दिलों के जज्बातों को बखूबी गीतों का संकलन कर खूबसूरत रूप से सजाया गया है। दो दिलों के दरमियां बंद हुए अल्फाजों की चाबी ढूंढने के लिए संगीतमय दरिया में डूबने के लिए हम श्रोतागण भी सफर के इंतजार में बेताब हैं। क्या बात है, आप सुनते रहिए सुरीला सफर। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि प्रेम जब शाश्वत अनुभूति के अस्तित्व को प्राप्त कर रहा होता है तो यहाँ से प्रेम कहानी स्मृति काव्य के रूप में परिणत होने लगती है और यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। जीवन समाप्त हो सकता है लेकिन इस कहानी में जो शब्द गढ़े गए हैं वो किसी सीमा के बंधन से नहीं जुड़े होते, उनका विस्तार ब्रह्मांड में तरंगित हो जाता है। उससे प्रेम की रागिनी बांसुरी से निकलने वाली मधुर तान से जुड़कर कहानी को संगीतमय बना दिया करती है। इसी तरह से हमारे कई श्रोताओं ने हमें कई सारे गीत आज यहाँ लिखकर भेजे हैं। साथ ही एक श्रोता कहते हैं कि प्रेम शायद वही है जब किसी की तलाश गलियों से निकलकर दिल की दहरी पर आ बैठे, फिर मुलाकात हो या ना हो, कहानी सच हो या आधी अधूरी, फर्क कहाँ पड़ता है। कुछ लोग मिलते नहीं, बस भीतर कहीं ठहर जाते हैं, उनकी आवाज़ खामोशी में सुनाई देती है, उनकी याद अकेलेपन में साथ चलती है। मोहब्बत का हिसाब बड़ा अजीब है, जिसे दिल में जगह दे दो उसे निकालने की कोई चाबी उम्र भर नहीं मिलती। बिल्कुल, एक बार जो दिल में बस जाए तो बस उसी का नाम हमारा दिल गुनगुनाता रहता है। इसी के साथ आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत फिल्म ससुराल से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत है। शैलेंद्र ने बोल लिखे हैं और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। आपको बताना है अभिनेत्री का नाम।

हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि अभी तक दिल ओ दिमाग तरबतर हैं आपने यादों की महफिल प्रोग्राम में सलिल चौधरी के जो गीत सुनवाए उसके खुमार में। आज की इबारत भी सुंदर गानों की तरफ इशारा कर रही है। प्रेम वो खुशबू है जो बिना चाहे भी फैल जाती है, बिना बताए सबको पता चल जाता है। किसी को दिल में बंद करके चाहे चाबी को दरिया में फेंक दो पर बंद ताला तो सबको नजर आ ही जाता है। बिना कहे कितनी कहानियां बन जाती हैं और वो अमर भी हो जाती हैं। इस गीत से पहले हमने जो गीत आपको सुनवाया था अपने हुए पराए फिल्म से, और हमने पूछा था कि इस गीत में कौन अभिनेत्री हैं जो गुनगुना रही हैं और साथ ही कौन सा पक्षी है, तो इसका जवाब आया है कि माला सिन्हा इस गीत में गुनगुना रही हैं सखियों के साथ, और साथ ही जो पक्षी है वो है मोर जो भी साथ में नाच रहा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने हमसे साझा किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल में भी कोई बसता था मगर ना खता उनसे हुई ना हमसे हुई, फिर भी यह दिल टूट गया, जिनकी वजह से हमने अपना पूरा करियर खत्म कर दिया और आज एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई गम भरा गीत हो तो सुनवा दीजिए। देखिए, गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं, कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीती का मतलब, एक्चुअली हमने जो गीत सुनवाया था फिल्म का नाम था आप बीती, तो उन्होंने इसी शब्द को उठाकर हमें बताना चाहा है कि स्वयं पर बीती हुई कुछ बातें, और ऐसा तकरीबन सबके साथ हुआ होगा, कुछ अच्छी कुछ आलतू फालतू बातें जरूर हुई होगी। इसे कह रहे हैं वो आप बीती, बिल्कुल।

साथी एक श्रोता ने हमें जवाब लिख भेजा है, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया था फिल्म ससुराल से, क्या मिल गया क्या खो गया। हमने पूछा था कि कौन अभिनेत्री है इस गीत में, तो हमारी श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ससुराल का ये गीत है और बी सरोजा देवी अभिनेत्री, साथ ही राजेंद्र कुमार अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने लिख भेजा है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। एक श्रोता लिख रहे हैं कि पुराना रेडियो खो गया है और नया फेसबुक पेज मिल गया है, क्या मिल गया और क्या खो गया, क्या बात है। और साथ ही एक श्रोता लिख रही है कि बहुत ही मस्त धुन बीच बीच में सुनवाई जा रही है, जी आप बस इस सफर का आनंद लेते जाइए। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब हमें लिख भेजे हैं हमारे प्रश्नों के। एक श्रोता ने लिखा है कि सच कह रहा हूं, मैंने तो अपनी धर्म पत्नी को दिल में उस दिन ही बंद कर दिया और चाबी दरिया में फेंक दी है, जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था और पहली मुलाकात हुई थी, मेरी अंतिम सांसों तक मेरे दिल में बंद रहेगी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बात कही है। अगर आपकी धर्मपत्नी ये बात सुन रही है तो आज उनसे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा, है ना। हमारे एक श्रोता ने ये जो धुन हमने बजाई है उसके बारे में लिखा है कि माना जनाब ने पुकारा नहीं, पेइंग गेस्ट फिल्म की ये धुन और माउथ ऑर्गन से ये सुन रहे हैं आप, और मिलन गुप्ता उन्होंने ये हमें लिखकर भेजी है इसकी डिटेल्स। और एक श्रोता कह रहे हैं कि अपने हुए पर

बिल्कुल, देश से गांव में, गांव से गली में, और गली से घर में, और घर की बात सीधे दिल में। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जरा जल्दी जल्दी मिला करो ना जी, लता दीदी के गाए सदाबहार सुरीले गीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपको देते हैं धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यह गीत काफी समय बाद सुनने को मिल रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें खुशी है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की गीतों भरी इबारत में मनमोहक गीतों की बौछारें बरसने वाली है। हम सभी श्रोता भी इन गीतों में झूमेंगे दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। क्या बात है। एक श्रोता लिख रही है कि कभी किसी को ढूंढते ढूंढते हम शहर, गांव और गलियों से गुजरते हैं और पता चलता है कि जिसे तलाश रहे थे वो तो चुपचाप हमारे दिल में आकर बस चुका है। फिर कहानी सच्ची हो या आधी अधूरी, दिल को उसका साथ मिल जाए तो हर बात खूबसूरत लगने लगती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने।

एक श्रोता ने लिखा है कि आदि श्रीवास्तव जी की पुण्यतिथि पर यादव की महफिल प्रोग्राम उन्हीं पर केंद्रित था, वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को यथायोग्य सादर सप्रेम और इस तरह का अभिनंदन वो कर रहे हैं। साथ ही वो सारे कार्यक्रमों से उन्होंने पिरोकर हमें ये संदेश लिख भेजा है, सुरीला सफर तक वो अब भी हमारे साथ बने हुए हैं विविध भारती पर। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अपने होठों की बंसी बना ले मुझे, आरजू तो हमारी भी है ये, मगर डर है कि मौसम कहीं ये बदल न जाए। जी हाँ, हमें इस डर से उभरते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना ही पड़ेगा, तभी प्रणय के पथ का सृजन होगा और भय बिनु होए न प्रीति के रीति का मिलन होगा। इस कहानी के सच को समझने के लिए ही हो रहा है जो उसे समझने और उसी में रहने के धैर्य और संयम के साथ ही साथ उपजे साहस के साथ सत्य की दिशा के पहचान की आवश्यकता है, ऐसा वो लिख रहे हैं। और साथ ही वो लिख रहे हैं कि आज अपने सुरीला सफर कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले गद्य पद्यमयी इबारत में विभिन्न फिल्मों के प्रणय पर गीतों की पंक्तियां अंतरे मुखड़े के रूप में रखी गई हैं और उनमें प्रणय के प्रमुख भाव समाये हुए हैं। परदेसी आया गांव में, गली में, घर में, हाँ घर से दिल में। जी हाँ, वे लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जिनके हृदय में कोई ऐसा परदेसी इस तरह आकर समाया हुआ है। बहुतेरे तो उस पर भी शक ही नहीं, अपितु सच में ऐसा हो सकता है, ऐसे ऊहापोह भरे माहौल में ही जीवन गुजार देते हैं और अपने हृदय में ही अवस्थित उस परदेसी से दूरी बनाए रखते हुए गाँव, गली, घर के परदेसी तलाश में ही लगे रहते हैं।

हमने आपसे पूछा था कि ये जो गीत हमने आपको सुनवाया, इस फिल्म का नाम क्या था? आप सभी के जवाब हमें मिल गए हैं, फिल्म का नाम प्रतिज्ञा। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है दूर की आवाज़। मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत है। शकील बदायूनी ने इस गीत को रचा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने। फिल्म का नाम हमने आपको बता दिया है, अभिनेता और अभिनेत्री का नाम आप हमें बताएं।

हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि आज की सुंदर सी इबारत बहुत से लोकप्रिय गानों से बनाई गई है। आईना चेहरा तो दिखाता है मगर मोहब्बत इंसान को उसकी असली कहानी दिखाती है। जब कोई दिल में उतर जाता है तब उसे भुलाने की कोई चाबी नहीं होती। कहानी चाहे खत्म हो जाए पर एहसास अपनी जगह बना रहता है। तो उन्होंने कई गीत भी हमें यहाँ पर सुझाए हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे हमारी एक श्रोता कह रहे हैं कि दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग के काम की व्यस्तता की वजह से जवाब लिखने का समय नहीं मिल पाता। हमेशा की तरह बहुत सुंदर कार्यक्रम, ऐसा वो कह रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए और साथ ही सुनते रहिए विविध भारती के सभी कार्यक्रम। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फकीरा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। लता मंगेशकर की आवाज और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत रविंद्र जैन गीतकार और संगीतकार।

हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि आज की इबारत के सभी गाने बहुत अच्छे हैं और उनका पसंद का गीत भी उन्होंने साथ में लिख भेजा है। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्लफ मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की

हमारे एक श्रोता हैं जो फिलिपिन मनीला से हमें मैसेज कर रहे हैं। जय हिंद, उन्होंने ये मैसेज किया है और वो सुरीला सफ़र सुन रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के संदेश भी हमें भेजे हैं। और एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि देश से गांव में, गांव से गली में, गली से घर में और फिर दिल में विविध भारती आ गया है। क्या बात है। लीजिए अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं और इसी गीत के साथ सुरीला सफर अब समाप्त होने की ओर है। आसपास फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। और इसी गीत के साथ दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। आप सभी के संदेशों के लिए आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे मिड डे न्यूज। तत्पश्चात 2:00

0: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students. Also calls for less screen time, more sports and outdoor activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in China Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today said that a Viksit Bharat will only be possible with quality education, addressing the National Teachers Awards Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers' Day. The president said that a society that respects teachers is a progressive society in right terms.
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो
0: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The president noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country. Highlighting the importance of knowledge as the greatest source of power, she said that education empowers individuals to think independently, make informed decisions and contribute meaningfully to the progress of the nation. The president said that dedicated teachers are the frontline nation builders.
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है
0: The president also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. 12 teachers and faculties from central higher education institutions, 5 from state universities, including 3 government and 2 private colleges, and 4 from polytechnics, including 2 government and 2 private polytechnics, have been selected for the awards. Short documentaries on each awardee depicting the exemplary work done by them were showcased at the event. President Draupadi Murmu today paid tributes to teachers across the country on the occasion of Teachers' Day. Writing an article in an English daily, President Murmu described teaching as a noble responsibility that goes beyond imparting academic knowledge and plays a pivotal role in shaping individuals and the nation. She expressed gratitude to teachers for instilling knowledge, skills, values and motivation in the lives of crores of students. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते. टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे.
0: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम. अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है. मेरे मन में एक विचार आता है या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा. खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है. और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए.
0: Mr. Modi also referred to the national education policy and stressed the importance of taking children outside the classroom and connecting them with real-world skills and forms of work. The Prime Minister further underlined that Teachers' Day is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and noted that it is also a day to pay homage to Bharat Ratna Dr. S. Radhakrishnan. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished centre of learning in commerce, economics and management. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has, over the past century, nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers, and nation builders. BJP national spokesperson Dr. Sudhanshu Trivedi has termed the removal of a woman minister in Telangana as an act of injustice. Addressing a press conference in New Delhi, Dr. Trivedi questioned the silence of Congress leaders Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge on the issue. Referring to the paper leak in Jharkhand, he alleged that it was not merely a paper leak but a paper loot. Dr. Trivedi also said that the investigation into the Jharkhand Public Service Commission examination has revealed irregularities, including the breaking open of strong rooms and tampering with question papers. This is Akashwani giving you the news.
3: News that keeps you informed. Follow us on X at AIR News Alerts and on Public at AIR News Alerts.
0: The flood situation remains critical in 14 districts of Bihar, including the state capital Patna. Several rivers are flowing above the danger mark, while low-lying areas remain inundated. The flooding has affected normal life in several areas. Relief and rescue operations are underway in the affected districts. More from our correspondent.
4: The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In its forecast, the department has said that a new highest flood level is likely to be recorded at Gandhi Ghat Gay site. As a result, pressure on the river's flow areas, particularly the Diyara regions, may increase. The department has directed the concerned districts to take all necessary precautions measures in view of the flood situation. Savita Parikh, Akashwani Samachar, Patna.
0: The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday. MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on 26th of last month. The MEA spokesperson said India will continue to provide assistance to Nepal as per the requirements of the government in that country. He said in the coming days, India is planning to send more forensic kits, Bailey bridges and other materials that are requested by the government of Nepal. Meanwhile, the death toll from the floods in Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. In Maharashtra, the Dahi Handi festival is being celebrated with great enthusiasm today. The festival is associated with Sri Krishna Janmashtami. On the occasion, young participants known as Govindas form tall human pyramids to reach and break an earthen pot filled with curd, milk or butter suspended high in the air, reenacting the childhood mischief of Lord Krishna. A report.
5: In Mumbai and some neighbouring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospital. Hospitalization, permanent total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
0: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is set to address the annual high-level session of the United Nations General Assembly on 26th of this month. He will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. The Ministry of Coal has dismissed the reports claiming that the 37,500 crore rupees scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects has received no applications, calling such reports premature and factually incorrect. On to sports. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording convincing victories over Thailand and Hong Kong in their previous two matches. The Indian team will now look to maintain its winning run and finish the group stage with a perfect record. Pakistan, meanwhile, have played just one match. They began their campaign with a win over Thailand. The team currently has 2 points in Group A and needs just one more point from its remaining two matches to qualify for the semi-finals. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wik Yong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. The Indian pair defeated Denmark's Kim Astrup and Anders Karup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in the quarter-final yesterday. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today held an inter-ministerial virtual meeting with Jal Shakti Minister C.R. Patil and other senior officials to review preparations for Swachhata Hi Seva 2026. In a social media post, Mr. Lal said that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
1: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
6: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, फिर खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते, और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
6: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
6: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
2: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
7: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
6: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
6: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
9: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट

0: बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5,000 लोग अभी भी लापता है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है यह कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक।
5: श्रोताओं, पहले आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार रिले किए गए थे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है। चलिए एक बार फिर मनोरंजन को जारी रखते हुए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आवाज़ इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, सलिल चौधरी का संगीत था। आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में योगेश के बोल, सलिल चौधरी की बनाई थी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: टेलीविजन के जाने माने नाम जिनके लिए अभिनय एक काम नहीं समर्पण है।
1: जब मैं तैयारी करना शुरू करता हूँ वहीं से मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म लेता है, वो एक एक्टर विनीत रैना है। जैसे ही वो मेकअप अपने ऊपर चढ़ाता है तो वो किरदार बन जाता है जो आज पूरा दिन उसको प्ले करना है। उसका विनीत रैना से कोई लेना देना नहीं है।
0: कभी चॉकलेटी हीरो, कभी खूंखार विलेन, तो कभी परम दिव्य साईं।
1: साईं बाबा तक पहुंचना मेरे ख्याल से किसी के बस में नहीं है।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं अपने अभिनय और जीवन की कहानी लेकर जाने माने अभिनेता विनीत रैना। जरूर सुनिए सेल्यूलॉइड के सितारे मंगलवार 8 सितंबर शाम 4 बजे और 9 सितंबर सुबह 10 बजे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छाया फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया।

0: गोरी अगोरी अगोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटखट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय

0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: हाफ टिकट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत था सलिल चौधरी का।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
4: जी।
3: तो उनको लगा कि ये

0: क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और साथियों के स्वरों में अगला गीत, शैलेंद्र के बोल, संगीतकार सलिल चौधरी, फिल्म का नाम 2 बीघा जमीन।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, लाल बत्ती फिल्म से। मन्ना डी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

बैठे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। बैठे हैं देखो यहाँ सेठ बड़े भारी, देश भगत थोड़े काले बाजारी। लेके समाज का ये डंडा बेचे झंडा।

इसमें सवार कोई प्यार का भिखारी, ख्वाबों की दुल्हन साथ बिचारी। ओ बाबू प्यार के फरियादी, कर ले शादी है आजादी।

चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। चलती है गाड़ी तू भी झूम ले ऐ दिल, आने वाली है इंसाफ की मंजिल। कहे जुगल गाओ प्यारो गम के मारो बेसा।

लाल बत्ती फिल्म का गीत मन्ना डे की आवाज में अभी आपने सुना, और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे तेलीपारा बिलासपुर से एक श्रोता हैं रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। इन्होंने हमें रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक बहुत ही सुंदर सी राखी बनाकर पत्र भेजा है। बहुत ही सुंदर पत्र है ये। इन शुभकामनाओं के साथ हमने ये पत्र यहाँ इस कार्यक्रम में आज आपको बताने के लिए शामिल कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह पत्र भेजने के लिए, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत लेते हैं। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, आरजी बर्मन का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, तूने और रंगीले कैसा जादू किया कुदरत है फिल्म का नाम। और भेजने वाले हमारे जो श्रोता हैं जिनकी ये फरमाइश है, गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और ये नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसके साथ ही जम्मन रेकवार, मूलचंद्र रेकवार, मनसुख रेकवार, लालचंद्र रेकवार और सरमन रेकवार, ग्राम गड़िम लहरा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। साथ ही हमारे इंदौर के एक श्रोता हैं सृष्टि उपाध्याय, ये गीत सुनना चाहते हैं। आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मन चाही गीत कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं आशियाना फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, साथ ही महेंद्र कपूर ने, योगेश के बोल हैं और इस गीत की फरमाइश की है राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद, अखिला प्रसाद और सुनील प्रसाद ने, साथ ही नरोत्तम गोर लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से, तिवरता छत्तीसगढ़ से अमृत लाल अग्रवाल, राजकुमारी अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रुति, विवेक और विवान अग्रवाल ने, और साथ ही एडवोकेट बारिस अली खान, मोहम्मद दानिश, शहनाज खान, समीर अहमद और सबा, ये सुनना चाहते हैं लखनऊ से ये गीत।

आशियाना फिल्म का गीत अभी आपने सुना, नीरज के बोल थे और हरी अर्जुन का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला पत्र है, किस्मत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशे सुरोशे, सुषमा निधेश परिधि और मायरा सुरोशे। साथ ही फरमाइश करता है, उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर। साथ ही रामलीला मैदान से हैं बाबा श्री शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, शिवांश, मंजू, विजय मिश्रा, गोविंदा, सोहू, अमन पीए और अभिजीत सिंह सांगा। और साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी के साथ मॉडर्न टाउन करनाल से सुधीर नूतन, माया कुमार और सुनीता शर्मा ने फरमाइश की है इस गीत की, जिसे फिल्म किस्मत से हमने लिया है। और महेंद्र कपूर की आवाज़ में नूर देवासी का लिखा गीत, ओपी नैयर का संगीत। सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अगला पत्र हम शामिल करने जा रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन का, साथ ही श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई, गीताबा, धर्मराज, करणराज सिसोदिया परिवार, और किशोर गुप्ता दस्तूर नगर छतरी तालाब रोड अमरावती से, और साथ ही रविकांत गुप्ता, श्रीमती किरण गुप्ता और आशीष साथ ही सुप्रिया ने हमें फरमाइश भेजी है मेरे जीवन साथी फिल्म के इस गीत की, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसकी फरमाइश की है हमारे श्रोता जिन्होंने भाटापाड़ा से हमें ये पत्र लिखा है, हरमिंदर चावला, सोहन जोशी, शिव कुमार शर्मा, त्रिशमन कौर चावला और गुरु फतेह सिंह, साथ ही लक्ष्मण बागवानी, श्रीमती विमला बागवानी, श्रीमती दिशा बागवानी, ये श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साथ ही मास्टर हर्ष व खुशी वाधवानी और शंकर नगर दुर्ग से मनिक सिंह बैस, कावेरी वनिता, लल्ली लेखमणि बैस और साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सचित और कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख करड़ा सिरोड रिसोर्ट से, कुमारी सानवी देशमुख और कुमार सरवद देशमुख ये गीत सुनना चाह रहे हैं संबंध फिल्म का, आशा भोसले की आवाज़ में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अब आपको सुनवाएंगे हम। पत्र लिखा है प्रकाश दादा जैन, सूरज संगीता जैन और पीआर जैन ने, साथ ही सोनाली पथिक, कृष्ण आशा नारंग और सुरेश नारंग ने, और ग्राम सालियाखेड़ी आमर मालवा आगर मालवा मध्य प्रदेश से सोनू विश्वकर्मा और मोनू विश्वकर्मा ने, मैसवाड़ी मलकापुर से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक नीना जी, स्वप्निल और अजय, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोड़कर ने ये गीत सुनना चाहते हैं, प्यार किए जा फिल्म का, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होने जा रहा है। कार्यक्रम में सहयोग चंचल वर्मा और आकांक्षा विश्वकर्मा का था। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्ला उपन्यास चोखेर बाली का रेडियो नाट्य रूपांतरण आप सुनेंगे आंख की किरकिरी। रूपांतरकार एवं निर्देशक नंदलाल शर्मा। प्रस्तुत है आंख की किरकिरी इस नाटक का पहला भाग।
1: मैं हूं महेंद्र, बचपन से ही उच्चांकित रहा हूं। मैं अपनी इच्छा पर दूसरे का अंकुश सहन नहीं कर सकता। घर में मैं हूं, मेरी मां राजलक्ष्मी है और काकी अन्नपूर्णा। इसके अलावा मेरा बचपन का परम मित्र बिहारी है।
2: हाँ, मैं महेंद्र का परम मित्र हूं। वैसे मेरा कोई नहीं है, महेंद्र की मां को ही अपनी मां समझता हूं और अन्नपूर्णा काकी को काकी। काकी साक्षात देवी है, मैं उनकी भक्ति करता हूं। शादी के लिए काकी की भांजी आशा को मैं देखने गया। लड़की सुंदर और सुशील थी। लड़की देखने महेंद्र भी मेरे साथ गया था। बात पक्की हो गई, लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए
3: कि हमारी शादी महेंद्र के साथ हो गई। वैसे हमारे पति की शादी हमारी सास की सहेली की लड़की विनोदनी से होने वाली थी,
4: लेकिन मेरा ऐसा भाग्य कहाँ था। शादी से ही 4 दिन पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बिहारी से शादी की बात चली, लेकिन और फिर मजबूरी में मेरी शादी एक रोगी व्यक्ति से हो गई। और कुछ दिनों बाद वो चल बसी। एक बार महेंद्र की माँ अपनी मायके आई, वहीं उन्हें मैं मिल गई। उनके साथ बिहारी भी था। जब कलकत्ता लौटने लगी तो मुझे भी अपने घर ले आई। घर का सारा काम मैं स्वयं करने लगी तो महेंद्र की पत्नी आशा अपने आप को मेरे सामने छोटा समझने लगी, मुझसे दूर दूर रहने लगी। लेकिन थोड़े ही समय में हम सहेलियां बन गई। अब आशा, महेंद्र और मेरी सभा रोज ही जमने लगी। लेकिन घर के कामकाज में मैंने किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आने दी। रसोई पानी, कामकाज, माँ की सेवा सब करने के बाद ही मैं आमोद प्रमोद में सम्मिलित होती थी। मुझे इतना काम करते देख महेंद्र कहता,
1: दास दासियों से काम न लेकर तुम उन्हें मिट्टी कर दोगे।
4: अरे काम न करके स्वयं मिट्टी होने से तो अच्छा ही है। जाओ, तुम कॉलेज जाओ।
1: लेकिन आज इस मौसम में?
4: नहीं नहीं, ये नहीं होगा। गाड़ी तैयार है, कॉलेज जाना ही पड़ेगा।
1: सच विनोद, तुमने आकर इस घर की काया ही पलट कर दी। घर का नक्शा ही बदल गया। कपड़े यथा स्थान पर तैयार, हर जगह तुम्हारी सेवा का अनुभव करता हूँ। आशा को तो किसी काम का शऊर ही नहीं।
4: अरे हाँ, बिहारी बाबू बहुत दिनों से नहीं आए।
1: हाँ, मैं तो भूल ही गया था। बिहारी ने मुझे लिखकर सूचित किया था कि रविवार को माँ के हाथ का भोजन करेगा, लेकिन मैंने उत्तर लिख दिया कि रविवार को मुझे विशेष कार्य से बाहर जाना है।
4: तुमने ऐसा क्यों लिखा?
1: अरे उसके आने पर अपना रविवार मिट्टी हो जाता।
5: अरे महेंदा, शंभू से मालूम हुआ कि तुम बाहर नहीं गए, घर में ही हो।
1: हाँ, वो तबीयत ठीक नहीं, इसलिए बाहर नहीं जा सका। वो सर में बहुत दर्द है। बैठो बिहारी।

0: ठीक हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया के सिर में जोर अधिक है।
1: मुझे क्या आवश्यकता है, मित्र ही मित्र की चिकित्सा करें।
0: ठीक है, मित्र की चिकित्सा मित्र ही करेगा। मैं ही सरदर्द लाया हूं, मैं ही इसे साथ ले जाऊंगा। औषधि द्वारा बीमारी दूर करने की अपेक्षा बीमारी होने ना देना ही अच्छा है। अच्छा मैं चलता हूं। अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मुझे इनमें शामिल होना ही पड़ेगा। कई दिनों से पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण मैं इधर नहीं आ सका। मुझे क्या मालूम था कि इस बीच मामला यहां तक बढ़ गया है। नहीं नहीं, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा, अब इनसे दूर रहने से काम नहीं चलेगा।
1: मालूम होता है बिहारी बाबू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं महेंद्र के सर पर बाम लगा रही थी, बिहारी बाबू की आंखों में मैंने देखा कि वे मानो ये अभिनय देखकर मुस्कुरा रही थी। मालूम होता है इस आदमी को धोखा देना कोई सरल काम नहीं। कुछ भी उसकी दृष्टि से छिपा नहीं रह सकता। ओह, मैं यहां क्यों आई?
0: विनोद भाभी, इस लड़के को इसकी माँ ने मिट्टी किया, अब स्त्री कर रही है। तुम वैसा ना करके एक नया रास्ता दिखाओ।
2: अर्थात
0: मेरे जैसे आदमी को जिसे कोई कभी पूछता नहीं,
2: उससे मिट्टी करो। हम मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी सरल नहीं है बिहारी, सिर्फ दरख्वास्त देने से ही काम नहीं हो जाता।
1: मिट्टी होने की क्षमता भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू।
0: वो तो अपना गुण न होने पर भी दूसरे का हाथ लगने से आ जाती है।
1: बहन किरकिरी, भाई अपने इस तेवर का भार अब तुम ही ले लो। बहन, तुम्हारा ये भिक्षुक तेवर मेरी आड़ में तुम्ही से मान की भिक्षा मांगने आया है। अरे कुछ दे दे,
3: हम जाते हैं।
0: वाह भाई वाह, मेरी बारी में बातें दूसरों पर टाल दी जाती हैं, किंतु महेंद्रा के साथ नकद कारोबार होता है।
2: बिहारी, ये तू क्या पक रहा है?
0: ठीक है, मैं चलता हूं।
1: अरे रे रे रे, आप निराश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं अभी किरकिरी को भेज देती हूं।
0: महेंद्रा, तुम अपना सर्वनाश करना चाहते हो तो करो, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर पूर्ण विश्वास रखती है उसका सर्वनाश ना करो। अब भी कहता हूं उसका सर्वनाश ना करना।
2: पहेली मत पूछाओ बिहारी, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो।
0: साफ ही कहूंगा। महेंद्रा, विनोद ने तुम्हें जान पूछ कर अधर्म की ओर ले जा रही है और तुम ना समझकर कुमार की ओर बढ़े जा रहे हो।
2: बिल्कुल झूठ। यदि तुम किसी भद्र महिला को ऐसी संदेह भरी दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही ठीक नहीं।
0: ठीक है, मैं जाता हूं।

0: बेटी तू अपना भी ख्याल रखा कर। अरे जब से मैं बीमार हुई हूँ तू हर समय मेरी ही सेवा में लगी रहती है।
1: अरे क्या हुआ माँ, मुझे तुम्हारी सेवा करने में कितना आनंद मिलता है।
0: अरे वही तो तुझ में विशेषता है जी, जब भी तुझ पर कोई काम आ पड़ता है तो तू उस काम को करने में इतनी तल्लीन हो जाती है कि किसी और ध्यान नहीं देती। काश तुम मेरी बहू होती।
1: माँ आप ज्यादा न भूलें, आराम करें।
2: चुन्नी मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि मेरे नहाने से पहले मेरे कपड़े तैयार कर दिया करो, पर एक दिन भी तुमने ऐसा नहीं किया। इससे कितना समय बर्बाद होता है।
3: पर हमने तो नौकर से कह दिया था।
2: नौकर से कह दिया था, अपने हाथ से नहीं कर सकती थी। तुमसे तो किसी काम की आशा करना ही व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं समझती कैसे क्या करना चाहिए। कमरे की हालत देखी है, हर चीज बेतरतीब है।
3: तुम हमें दासी की तरह रखो, दंड दो पर अपने चरणों की सेवा के योग्य बना लो।
2: चुन्नी

0: मुझसे अपराध हुआ है, मुझे मुझे क्षमा कर दो।
1: नहीं, ऐसा न कहो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, सब दोष हमारा है।
0: चुन्नी, मेरी हृदय मणि चुन्नी, मैं हृदय में सबसे ऊपर तुम्हें रखूंगा। अरे हाँ, कॉलेज में कल से हमारी नाइट ड्यूटी पड़ रही है, इसलिए वहां मैस में रहना पड़ेगा।
1: सुनो, हमारी एक प्रार्थना है।
0: कहो।
1: तुम हमें रोज एक चिट्ठी भेजा करोगे?
0: और तुम भी?
1: चलो हटो, हमें क्या लिखना आता है।

माँ को प्रणाम करके मुझसे बगैर मिले ही चले गए। मैस में जाकर रहेंगे, दिखाना चाहते हैं कि मेरी परवाह नहीं करती। महेंद्र, आशा के प्रति तुम्हारा प्रेम मेरे प्रणय वंचित चित्त को हमेशा ही मता करता है। मुझ जैसी स्त्री रत्न की उपेक्षा करके तुमने आशा जैसी क्षीण बुद्धिहीन बालिका का वरण किया। महेंद्र, तुमने मेरे अंतर में एक आग सुलगा दी है। मैं तुम्हें दंड दूं या हृदय समर्पण कर दूं? ये आग हिंसा की है क्या प्रेम की? पर चाहे जिस कारण भी हो, चलने के लिए क्या चलाने के लिए मुझे मुझे महेंद्र की जरूरत है। हाँ, मुझे उनकी जरूरत है, मुझे उनकी जरूरत है। वो जाएंगे कहाँ जाएंगे वो? उन्हें लौटना ही होगा। वो मेरे हैं।

0: उन्हें गए कितने दिन हो गए, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई। क्या क्या अभी भी वो हमसे गुस्सा है? उन्हें क्या मालूम हम अपनी हर शाम उनकी चीजों को स्पर्श करके काटा करते हैं। हमने तो उनसे प्रार्थना भी की थी कि हर रोज हमें चिट्ठी भेजा करना।
1: क्यों यहाँ चुपचाप अकेले में क्या उनकी याद से बातें हो रही हैं?
0: बहन देखो ना, हमसे कहकर गए थे कि हमें रोज चिट्ठी लिखा करेंगे, पर उनकी कोई चिट्ठी नहीं आई। हमें डर लगता है कहीं वो हमसे गुस्सा।
1: अरे रे, रोते नहीं, हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो आशा ने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी।
0: हमें लिखना नहीं आता बहन। हाँ, हमारी तरफ से तुम चिट्ठी लिख दो ना।
1: अरे इसमें सोचना क्या है, जो दिल में आए वो लिख दो।
0: अब हम चलते हैं।
1: ये क्या बिहारी बाबू, क्या आप बीमार हैं?
2: नहीं तो।
1: तू दोनों आंखें सुर्ख क्यों हैं?
2: अरे हाँ विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया है?
1: कॉलेज में विशेष काम है ऐसा कह के गए हैं।
2: विनोद भाभी, तुम आशा की देखभाल करना। आशा इतनी सरला है कि किसी को चोट पहुंचाना नहीं जानती, यहां तक कि आघात से अपनी रक्षा करना भी नहीं जानती।
1: आप निश्चिंत रहें बिहारी बाबू, मेरी आंख की किरकिरी के लिए चिंता करके अपने आप को अधिक कष्ट न दें।
2: अच्छा मैं चलता हूं।
1: आशा के लिए बिहारी बाबू का हृदय कितना व्यथित है। महेंद्र ने आशा से विवाह किया, उस आशा से जिसके साथ बिहारी की बात पक्की हुई थी। वो ही बिहारी बाबू आशा की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि विनोदिनी हमेशा आशा के आंसू पूछने के लिए तैयार रहे। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसीलिए जन्म लिया है कि मैं आशा के रास्ते के कांटे चुनूं, आशा के सुख में जरा भी कमी ना आने दूं। लेकिन नहीं, मैं एक बार इस महेंद्र को, इस बिहारी को धूल में गिराना चाहती हूं। या तो आशा ही रहेगी या विनोदिनी।
3: इतने दिनों के बाद आशा की चिट्ठी आई है। आशा, मेरी आशा, जरा पढ़ूं तो आशा ने क्या लिखा है।
0: प्रियतम, जिसे भूलने के लिए चले गए हो,
1: इस पत्र में उसकी याद क्यों दिलाऊं? तुम्हारी अवहेलना, उपेक्षा जो कांटे की तरह मेरी पसलियों में समा गई है, वो दिन रात सब कामकाज सब चिंताओं के बीच मुझे बेथती रहती है। नाथ, हाँ नाथ, तुमने जो मुझसे प्रेम किया वो क्या मेरा ही अपराध है? मैंने क्या स्वप्न में भी ऐसे सौभाग्य की आशा की थी? न जाने क्या देखकर तुमने मुझे इतना आदर दिया। लेकिन एक बात समझ न सकी कि घर में रहते हुए भी क्या तुम मुझे फेंक नहीं सकते थे? मेरे लिए भी क्या तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत थी? मैं क्या तुम्हें इस तरह पकड़े हुए हूं? मेरे लिए क्या कहीं जाने का रास्ता नहीं रह गया था? मैंने तो कई बार काम जाना चाहा, लेकिन मुझे रोक लिया गया, वरना मैं तो बहकर आई हूं, बहकर चली जाती।
3: ये चिट्ठी, समझा, आशा की आड़ लेकर विनोदनी ने चिट्ठी भेजी है। विनोदनी समझती है कि मैं उसे भूलने के लिए घर छोड़कर आया हूं। उसकी इस स्पर्धा को झूठ सिद्ध करने के लिए मुझे तुरंत ही घर लौटना चाहिए, और अब से मैं विनोदनी से दूर ही रहूंगा। यहां लौटने से पहले मैंने सोचा था कि मैं विनोदनी से दूर रहूंगा, लेकिन लेकिन यह स्वाभाविक स्थिति नहीं। सहज भाव से बातचीत करके इसे खत्म कर देना चाहिए।
1: बिहारी बाबू, न जाने महेंद्र बाबू को क्या हो गया है, मुझे अपनी किरकिरी के लिए बड़ी चिंता हो रही है। मैं तो सदा यहां रहूंगी नहीं, पर मेरे चले जाने के बाद तुम उसका ध्यान रखना, वो दुखी ना होने पाए।
2: भाभी, तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं। तुम इस सरला बालिका की सुख दुख में रक्षा करने का भार अपने ऊपर ले लो।
1: लाला जी, मैं सदा यहां कैसे रहूंगी, लोग क्या कहेंगे?
2: लोग जो कहें कहने दो, तुम देवी हो। संसार के निष्ठुर आघात से बालिका की रक्षा करना तुम्हारे ही योग्य काम है। भाभी, पहले मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था, मैंने भी संकीर्ण हृदय सामान्य लोगों की तरह तुम्हारे बारे में नीच धारणा बना ली थी कि तुम आशा के सुख से ईर्ष्या करती हो, किंतु बाद में तुम्हारे हृदय का परिचय मिला और तुम पर श्रद्धा हो गई। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: सुनो, तुम तो काशी जाकर अपनी काकी से मिला और उनका हमारे लिए दिया उपहार सिंदूर की डिब्बी भी ले आए। सुनो, हमें भी एक बार मौसी की चरण धूली लेने जाने दो ना।
3: चुन्नी, तुम्हें तुम्हारी पुण्यवती मौसी का आशीर्वाद है, वे तुम्हारे ही मंगल के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चली गई, तुम्हारा कभी कोई अकल्याण नहीं हो सकता।
0: मौसी, तुम्हारा आशीर्वाद सदा मेरे स्वामी के साथ रहे। सुनो, क्या तुम मेरी एक प्रार्थना पूरी करोगे? मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उनसे मिलने जाने दो, वो मेरी ताई जी है ना, वो, हाँ, वो मेरी ताई जी है ना, वो काशी जाने वाली है, उन्हीं के साथ मुझे भेज दो।
3: मैं अभी माँ से कहता हूँ। माँ, माँ!
4: क्या है बेटे?
3: माँ, बहू काशी जाना चाहती है, मुझे कॉलेज में काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। उसकी ताई जा रही है, उसी के साथ चली जाएगी।
4: हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, वो लोग बड़े आदमी ठहरे, उनके साथ जाने से हमारा गौरव बढ़ेगा ना।
2: महिंदा, महिंदा, तुम साथ क्यों नहीं चले जाते?
3: मैं नहीं जा सकूंगा।
2: तो फिर साथ विनोद भाभी चली जाए तो कैसा रहेगा?
3: बिहारी, अपने मन की बात साफ साफ कहो, छल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर अंदर ही अंदर संदेह करते हो कि मैं विनोदनी से प्यार करता हूं। प्रेम मैं नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारे सामने कहता हूं कि तुम आशा से प्रेम करते।
2: महेंद्र, ईश्वर तुम्हें क्षमा करे। महेंद्र, मैं जा रहा हूं।
1: लाला जी, लाला जी, किरकिरी के साथ मैं भी काशी जाऊंगी।
2: ना ना भाभी, ये ना होगा, मैं यहां का कोई नहीं हूं, मैं किसी बात में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता, इससे भला नहीं होगा। तुम देवी हो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, मैं चलती हूं।
1: लाला जी, मैं देवी नहीं हूं, मैं देवी नहीं हूं, तुम्हारे जाने से किसी का भला नहीं होगा, पीछे मुझे दोष मत देना।
5: समझ में नहीं आता, ऐसे स्पष्ट आरोप का भी प्रतिवाद बिहारी ने क्यों नहीं किया, पर अच्छा ही हुआ, इससे अब वो आशा से दूर चला गया। वो कई दिनों से यहां आए नहीं थे। महेंद्र ने जब कहा कि तुम आशा से प्रेम करते हो, तब उस समय बिहारी का चेहरा कैसा रक्तहीन हो गया था। मैंने बिहारी को एक पत्र लिखा, लाला जी, उस दिन तुम्हारा शुष्क मुख देखने के बाद मैं निरंतर प्राण मन से कामना कर रही हूं कि तुम स्वस्थ हो जाओ, जैसे थे वैसे ही। वो सहज हंसी, वो उदारवाणी फिर कब सुनूंगी? एक पंक्ति लिखकर मुझे जता देना तुम कैसे हो, तुम्हारी विनोद भाभी।
3: विनोद की चिट्ठी लेकर दरबान बिहारी के यहां गया तो मालूम हुआ कि बिहारी रात की गाड़ी से पश्चिम की ओर चला गया है। जब दरबान चिट्ठी लेकर वापस लौट रहा था तो उसे मैं मिल गया। मैंने वो चिट्ठी उसे ले ली और पढ़ने लगा। समझ में नहीं आता कि विनोद के मन की गति किस ओर है। तो क्या मैं विनोद से प्रेम नहीं करता कहकर मैंने जो उसका तिरस्कार किया है उसी के कारण अभिमानवश मेरी आशा छोड़ दूसरी ओर जा रही है। वो मेरे अधिकार से अलग चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे उसे अपनी ओर खींचना ही होगा। हाँ, उसे अपनी ओर खींचना होगा। मुझे उसे अपनी ओर खींचना होगा।
6: व्यर्थ खड़ी हो, भेंट नहीं होगी। लो, तुम्हारी चिट्ठी लौट आई है, मैं जा रहा हूं।
5: लेकिन चिट्ठी खुली हुई क्यों है? मैं पूछती हूँ, चिट्ठी खुली हुई क्यों है? समझी, बिहारी ने चिट्ठी खोली और पढ़कर वापस कर दी। बगैर एक पंक्ति लिखे मेरी चिट्ठी वापस कर दी। मैं अपने चारों ओर आग लगाकर सब भस्म कर दूंगी। मुझे सुपना मिला तो ना सही, लेकिन जिन्होंने मुझे कृतार्थता से भ्रष्ट किया है और समस्त संभावित संपदा से वंचित कर दिया, उन्हें परास्त कर धूल में मिला देने से ही मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा।

0: बेटी, देख रही हूँ कि महेंद्र आजकल बड़ा विक्षिप्त सा रहता है। शायद बहू के चले जाने के कारण उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझसे तो सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाया नहीं जाता। तू ही महेंद्र की देखभाल किया कर बेटी।
1: जरूरत क्या है माँ?
0: अच्छा, तब मुझसे ही जो कुछ हो सकेगा करूंगी। चलो जरा देखो तो उसे।
1: नहीं नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। जो तुम्हारी आज्ञा होगी करूंगी। कई दिन से तुम्हारे खाने पीने के समय हाजिर नहीं रह सकी, कोई गलती हो तो क्षमा करना।
2: कभी कभी ऐसी गलती का होना अच्छा है, क्योंकि बाद में ब्याज सहित वसूल किया जा सकता है।
1: महाजन बताएंगे कि ब्याज कितना हुआ।
2: खाने पीने के बाद हाजिरी को बात करके भी कुछ निकलेगा ही।
1: तुम्हारा हिसाब कितना कठोर है, जो एक बार तुम्हारे हाथ में पड़ गया उसका फिर उद्धार नहीं।
2: हिसाब जो है, पर अदायगी में क्या मिल पाएगा?
1: अदायगी लायक यहाँ है ही क्या, तब भी तो बंदी कर रखा है।
2: किरकिरी, क्या ये तुम्हारे लिए जेल खाना है?
1: कौन जाने, बाद में तुमसे कौन जीत सकता है। अच्छा जाती हूँ, काम बहुत है।
2: अच्छा, बंधन स्वीकार किया है तो जाती कहाँ हो?
1: जी, छोड़ो, जिसे भागने का कोई रास्ता नहीं उसे बांधने की चेष्टा क्यों।
3: अरे आशा, तू बेटी, महेंद्र तो मुझसे मिलकर गया ही था, फिर कुछ समय बाद तुम मेरे पास काशी चली आई। बेटी, कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? सच बता, सच बता, महेंद्र अच्छी तरह तो है ना?
4: नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक है।
3: हे भगवान, भगवान सदा तुम्हें सुखी रखे। अरे हाँ, बिहारी का क्या हाल है बेटी? वो क्या ब्याह करेगा ही नहीं? उसकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: उनकी बात मुझसे न पूछो।
3: अरे बता तू, क्या बात है?
4: वो मैं न बता सकूंगी।
3: बेटी बेटी सुन तो, सुन तो चुन्नी। हे भगवान, सोने जैसा लड़का, प्यारी में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया जो चुन्नी आज उसका नाम सुनकर उठ गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, इलाहाबाद से कुंजी की सास आने वाली थी, शायद वो ही आ गई। चुन्नी।
5: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
8: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
7: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
9: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
7: भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें स्ट्रांग रूम तोड़ना और प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ शामिल है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की टीमों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेनवी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। चलिए अंत में एक बार फिर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
10: हमने देख ली थी आंख से, हमने महसूस कर लिया था यहाँ जी के ये जीवन तो हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पापा बोले कि नहीं, हम लोग तो अब तो भेजना ही पड़ेगा इसके। मुंबई बहुत महंगा शहर है, ये तो मेरे माँ बाप को अंदाजा लग गया था। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी जमा पूंजी थी थोड़ी सी, उसको तोड़ा। दो महीने बाद मेरे साथ मेरे पापा मम्मी मुंबई आए। मेरे लिए एक जगह देखी गई जहाँ पे हम रह सके, क्योंकि तब क्या होता है, तब शोज होने शुरू हो जाते हैं, आप ट्रैवल करने लगते हैं. तो पटना से बहुत फ्लाइट्स नहीं होती थी तब, तब बहुत कम फ्लाइट्स होती थी. तो मुंबई रहना ज़रूरी था क्योंकि हर दसवें दिन या एक हफ्ते में एक बार आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं शो करने जा रहे हैं.
11: बिल्कुल बिल्कुल.
10: पर हम लोग इतने भोले थे कि हमें ये नहीं पता था कि ये जो शोज होते हैं इसके पैसे कमाते हैं हम लोग. ये नहीं जानते थे हम. बेचारे पापा मेरे अपना जमा पूंजी तोड़ के और उसमें से हमको लेके मुंबई पहुंचे. एक छोटी सी जगह ढूंढी, रखा वहां पे, और अकेले रह नहीं सकते थे, बहुत छोटी बच्ची थी वो, 18 साल की दीपाली. तो उसको एक पीजी में रखा गया जहाँ पे दो और लड़कियां कमरा शेयर करती थी. बैंड्रा में एक पीजी में रहना शुरू किया. और एक दिन अचानक ऑफिस से फोन आया कि आप, और शोज होने लगे मुंबई में, शोज होने लगे. और एक दिन अचानक से ऑफिस से फोन आया कि आप आइए और अपना चेक लेके जाइए. तो हमें पता नहीं था चेक क्या, चेक तो गए तो पता चला जितने भी हमने स्टेज शोज किए थे अब तक उसके पैसे मिलते हैं.
11: और वो अच्छी रकम थी.
10: और वो बहुत अच्छी रकम थी.
11: आंखें एकदम,
10: खेल तो वहां से पलट गया सर.
11: हाँ.
10: ये रकम तो हम कैसे समझाएं कि
11: बिल्कुल
10: ये क्या हो गया था. कुछ समय के लिए जब जब पहली बार चेक मिला और हम बाहर ऑफिस के बाहर निकल के पापा को जब चेक बताए जो अमाउंट था उस पे जो अमाउंट लिखा था वो हम पढ़े भी नहीं क्योंकि हमको लगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है. हमने कुछ हजारों में अमाउंट बताया पर वो कुछ लाखों में था. ये स्थिति थी. जीवन वहां से पलट गया मेरा. दैट फर्स्ट चेक गेव मी द कॉन्फिडेंस कि अब हमको मेरे माँ बाप के ऊपर जो प्रेशर है हमको बहुत हर, हमको लगता है कि बेटियों को ऐसे ऐसे यू नो पाला जाता है कि समाज कर देता है, माँ बाप नहीं
11: थोड़े में खुश रहना,
10: वो संतोषी पैदा ही संतोषी होती है, पैदा होंगी और नहीं तो समाज बना देगा कि भाई तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुमको पढ़ने भेज रहे हैं. इतने में ही खुश है बेटी. हाँ ये बात तो सही है, पापा पढ़ने तो भेज रहे हैं. तो मेरे अंदर एक बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे पापा को इतना, मेरे पापा मेहनत करते हैं हम और हमको, मेरे पर सारा खर्चा कर देंगे, दीदी को भी पढ़ाना है तो कैसे होगा. लेकिन वो चेक वो जीवन में एक दूसरी दीपाली को लेकर आया बाहर.
11: और उसके बाद वो एक अलग उड़ान शुरू हुई,
10: एक अलग उड़ान शुरू हो गई.
11: लगातार शोज हो रहे थे और हर शोज में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था,
10: बढ़ रहा था. और इंडियन आइडल ने तब तक अप्रोच कर दिया कि आप इसे होस्ट करिए.
11: हाँ हाँ.
10: तो जो पिछले साल जो लड़की कानपुर के एक लाइन में खड़ी थी जिस शो में एक हिस्सा बनने के लिए, इस साल वो लड़की उस शो को होस्ट करने जा रही थी.
11: बिल्कुल.
10: तो अब वो लड़की वो थी ही नहीं जो दीपाली पैदा हुई थी पटना में.
11: हाँ.
10: वहां से खेल बदलने लगा, कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा.
11: बिल्कुल. यहाँ कामयाबी भी आ रही थी, काम भी आ रहा था और जिंदगी बहुत कुछ सिखा रही थी.
10: करेक्ट.
11: परिस्थितियों के मुताबिक बदलना, अपने आप को संभालना. यहाँ मैं आगे की बातचीत करने से पहले एक गाने का जिक्र करना चाहता हूँ. गंगा मैया तो है पीरी चढ़े हुए को गाना जो आप गाती हैं बहुत सारा. पहले वो गाना सुनते हैं उसके बाद आगे की यात्रा की बात करते हैं.
10: बिल्कुल. हाँ.

0: क्या बात है, ये गाना तो जैसे हमारी संस्कृति का
1: हिस्सा
0: बन चुका है, हमारे मानस का हिस्सा बन चुका है। मुझे याद है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो ये कहा जाता था कि पहले बनारस जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, गंगा मैया देखो, फिर गांव वापस आओ।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये एक पूरा एक दौर था जब इस फिल्म को लेके दीवानगी थी। ये गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना हमने सुना गंगा मैया तो है पीले चढ़ेबो, और बिहारी लड़की यहाँ आते आते अभिनय के मैदान में भी उतरने वाली थी, ये कैसे हुआ है?
1: ये गजेंद्र सिंह जो हैं, हाँ, जो सारेगामा
0: जो उसके प्रोड्यूसर थे,
1: डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उनका अचानक एक दिन फोन आया। उस समय भोजपुरी का एक नया चैनल लॉन्च हुआ था और उन लोगों को नए शोज बनाने थे और
0: बड़े धूमधाम धड़ाम तरीके से शुरू हुआ।
1: बहुत धड़ाम, मतलब बंबई में बहुत बड़ा ऑफिस था भोजपुरी चैनल होने के बाद भी, जितना बड़ा उनका ऑफिस था हिंदी वाले भी दंग रहते थे कि ये क्या चल रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उस वक्त का जो दौर था,
0: सीरियल बनने लगे, रियलिटी शो बनने लगे, जाने क्या क्या हो रहा था।
1: तो ये उन्होंने गजेंद्र सिंह ने ही एक दिन फोन किया, और ये वो गजेंद्र सिंह है जो दीपाली के दिमाग में सारे गामा के डायरेक्टर है, जो जिनको सोनू निगम एक जमाने में होस्ट करते थे और हम बचपन में देखा करते थे। तो फोन आया कि गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था, अच्छी बात है, ओके बाय, क्योंकि हमको विश्वास नहीं हुआ कि खुद गजेंद्र सिंह ने फोन किया। फिर दोबारा कॉल आया, दीपाली मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, साईं बाबा प्रोडक्शन, सारे गामा। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तब हमको समझ आया कि अरे ये तो असली वाले गजेंद्र सिंह है। तो हम बोले हाँ जी सर बोलिए। तो हम एक शो बना रहे हैं भोजपुरी में है, तो हम चाहते हैं कि तुम उसमें एक्टिंग करो। बोले सर हमको एक्टिंग नहीं आती है। तो बोले वो तुम्हारा काम नहीं है डिसाइड करना, तुम्हारा काम है हाँ बोलना, तुमको आती है कि नहीं आती है ये तो डायरेक्टर बताएगा, हम बताएंगे, तुमसे कराएंगे, हम करा लेंगे, हमको पता है। एंड दैट्स हाउ दिस बड़की मलकाई नाम था इस सीरियल का, ये शुरू हुआ मेरे जीवन में। और एक्टिंग का हमको सच में, मतलब ठीक है कि मूड इंडिगो में हम लोगों को फर्स्ट प्राइज मिल गया था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेंगे। बट क्योंकि उस जमाने में बहुत अच्छे पैसे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि पर डे बेसिस पे सीरियल में पेमेंट होते हैं, सो आई थॉट कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया। और हुआ क्या कि इंडियन आइडल में मेरे ना वोकल कॉर्ड्स फट गए चिल्लाने की वजह से। तो एक बहुत बड़े डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि अब तुम जीवन भर कभी गा नहीं सको, तो तुम गाना तो भूल ही जाओ, ये तुम्हारा करियर यहाँ पे गाने का खत्म होता है। और मेरे वोकल कॉर्ड्स का जो उस समय जो एक वो लैरिंजोग्राफी या कुछ कहते हैं उसको, उसके पिक्चर्स देखे उन्होंने, तो पिक्चर्स में वोकल कॉर्ड्स लिटरली फट चुके थे और खून बह चुका था, पूरा रेड, सोर रेड था मेरा वोकल कॉर्ड। तो हम भी डर गए, हमको लगा कि, तो वो ही उन्होंने बोला कि कुछ दिन तक तो तुमको बिल्कुल साइलेंस पे रहना होगा, क्योंकि उसको रेस्ट देना जरूरी है। और फिर उन्होंने बोला कि सिंगिंग एज अ करियर भूल जाओ, क्योंकि अब तुम अपने वोकल कॉर्ड्स को फाड़ चुकी हो चिल्ला चिल्ला के वो रियलिटी शो होस्ट करने के चक्कर में, तो गाना तो तुम गा नहीं सकती हो, और अगर बहुत बोलोगी तो जो बोलने वाली आवाज़ है वो भी चली जाएगी। तो हो सकता है वो उनका डराने का तरीका हो एक छोटे बच्चे को, इस बहाने शायद ठीक हो जाए, बट आई टुक इट वेरी सीरियसली। तो जब ये एक्टिंग का ऑफर आया तो हमको लगा ठीक है, करियर सिंगिंग में तो है नहीं जीवन अब मेरा, मेरा तो गला चला गया है गाने के हिसाब से, तो एक्टिंग कर लेते हैं। तो एकदम शिद्दत से हम उसमें घुस गए एक्टिंग करने में, और फिर मतलब फिर बाकी जगह से भी ऑफर्स आने लगे और हम करने लगे, रियाज और गाना तो कहीं चला गया जीवन से।
0: और ये जो गले की समस्या थी, इसके बारे में पहले पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि वोकल कॉर्ड्स पर इफेक्ट पड़ता
1: नहीं,
0: है?
1: नहीं पता था, अगर पता होता तो शायद। पर अभी हम सोचते हैं कि अगर कोई बोले कि इतना बड़ा रियलिटी शो होस्ट करना है आपको, लेकिन आपके गले पे असर पड़ेगा, तो भी हम ना नहीं बोलते,
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: बोल पाते,
0: कैसे संभाला फिर अपना गला उन दिनों में, जबकि ये कहा गया कि पूरी तरह से साइलेंस रहना है वगैरह वगैरह।
1: वो कुछ दिन तो हम बहुत परेशान रहे, क्योंकि बहुत दर्द होता था गले में, तो हम बहुत रोते भी थे, माँ थी मेरे पास यहीं पर अंदर ही अंदर अब समझ आ गया था कि मेरा करियर तो है ही नहीं म्यूजिक में, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा दिमाग, क्योंकि हम आई वॉज अ डूअर होता है ना, कुछ लोग करने वाले होते हैं, तो हमको करना था कुछ। अब हम आ चुके थे मुंबई और शोज जो थे वो पैसा दे रहे थे, हमको नहीं पता था कि शोज से पैसे आएंगे, पर अब तो आ चुके थे, चस्का तो वहां से भी लग चुका था, और यहाँ पे म्यूजिक करियर जाता रहा। तो ऐसे में एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ, तो हमको लगा ठीक है, मतलब तो कुछ कला से रिलेटेड करने में है ना, तो ये भी तो यू नो
0: एक रूप है,
1: का आर्ट का ही एक रूप है ना एक्टिंग, और अच्छा है, डिसेंट है। भोजपुरी का जो उस समय इमेज था, मतलब वल्गर गानों का, ये शो उस इमेज को भी तोड़ रहा था, एक अच्छा डिसेंट पारिवारिक एंटरटेनिंग शो, तो हमको लगा सही है। तो पहले कुछ दिन कुछ ही हमको लगता है कुछ ही महीने का डिप्रेशन रहा होगा और उसके बाद फिर चीजें पलटने लगी. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट.
0: और उसके बाद फिर वो जो एक्टिंग का सिलसिला चल पड़ा.
1: Correct.
0: उसमें कौन कौन से सीरियल्स आए वो भी हमारे सुनने वालों को बताइए.
1: सबसे पहले तो बड़की मलकायन था. फिर उसके कुछ दिन बाद दूरदर्शन नेशनल पर अनुदामिनी करके एक शो आया, वो बहुत हिट हुआ. उसमें मेरा वैम्प का रोल था.
0: ये अलग चैलेंज हो गया.
1: सो मेरे लिए, बट ये चैलेंजेस बहुत काम कर रहे थे क्योंकि वो चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपको वो करनी पड़े तो आप अपने आप को फिर और बेहतर पहचानते हैं कि अच्छा ये भी सक्षमता है, ये भी करने में सक्षम होंगे हम, ये भी, ये सारी चीजें आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी है. जब आपने अपने ऊपर कोई कैप नहीं लगाया है कि हम यही करेंगे, तो फिर आप एक जर्नी पर निकल पड़ते हैं इंसानी तौर पे. तो वो मेरा शुरू हो गया था अनजाने में.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी अपनी तरह से
1: आई वॉज अलाउइंग कि जीवन को जैसे बहना है बहू. क्योंकि अब तो हम जो सोच के आए थे कि हम बहुत जल्द, मेरे पापा बोले थे कि अब ये मुंबई जाएगी और हिंदी फिल्मों में गाने का कोशिश करेगी, वो तो मेरा चूर हो गया 2 ही महीने में जब डॉक्टर ने बोला नहीं पॉसिबल है. तो फिर हमने एक्टिंग को एक्सेप्ट किया और भारत की शान, दूरदर्शन पे ही एक रियलिटी शो होता था भारत की शान, उसको भी होस्ट किया. जय हनुमान एक सीरियल आता था सोनी एंटरटेनमेंट पे, उसमें एक्टिंग की, उसमें भी वैम्प का रोल था, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, महाराणा प्रताप, बस थोड़े से अनजाने, नीम नीम शहद शहद, बींद बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा, इस तरह के छोटे छोटे शोज में अच्छे इम्पोर्टेंट रोल्स कर करके आई थिंक मेरे कुछ 6 साल निकले.
0: और ये जो गायकी वाला मामला था
1: वो तो बस महीने में जैसे 20 दिन की शूटिंग और 10 दिन जो बचा है उसमें कभी कोई शो मिला तो कर लिया.
0: और गला तब तक
1: संभल गया था, पर रियाजी गला नहीं था वो. वो तो उसके अंदर का चोट हील हो गया था. वो मेरे दिमाग का फितूर था कि वो चोट हील नहीं होगा, अब कभी कुछ नहीं होगा. बट एट द सेम टाइम शोज जो उस समय होते थे, उस समय शोज में प्रायोरिटी ये नहीं होता था कि सुरीला गाओ, ऑडियंस नाचनी चाहिए. तो गाने के ऊपर उतना प्रेशर है नहीं. कोई भी गाना चला दो ऑडियंस नाच रही है. तो शोज अच्छे कट, अच्छी मतलब मेरी अच्छी कट रही थी कि शोज भी चल रहे थे और एक्टिंग भी चल रहा था. और अब करियर तो है नहीं म्यूजिक में, सिंगिंग में, तो रियाज तो करने की जरूरत है नहीं. ऐसा जीवन चल रहा था मेरा.
0: और मम्मी पापा तब तक पटना में ही थे?
1: वो लोग पटना में ही थ्रू आउट रहे, मतलब पूरे टाइम वो लोग पटना. पापा क्योंकि सरकारी नौकर थे तो वो शहर तो नहीं छोड़ सकते थे. माँ आना जाना करती थी ऑफकोर्स, वो बेचारी बट गई थी अपने पति और अपने बच्चे के बीच. क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो बैंगलोर में LLB कर रही थी.
0: Okay.
1: और वो प्रॉपर लाइफ जी रही थी जो एक उस उम्र का बच्चा जीता है, हॉस्टल लाइफ, यू नो, क्लास जा रहे आ रहे. पर उनकी ये बेटी जो थी वो एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई थी. मतलब एक बंदा है उस रियलिटी शो के बाद, उसने बोला चलो बेटा मैं तुमको मोंटी शर्मा से मिलवाता हूँ. हम लोग पहुंच गए यशराज के स्टूडियोज में, मोंटी शर्मा उनके सामने बैठ के, सांवरिया फिल्म आई थी तब, आने वाली थी या आ गई थी, और उन्होंने गाना भी सुना. और हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो रणबीर कपूर से भी मुलाकात हो गई. तो ऐसा लगा कि वाह अब तो बस प्लेबैक मिल ही जाएगा. और वो ही टाइम था जब जो रियलिटी शो उसको होस्ट करने के ठीक पहले का टाइम, जब मेरा गला बिल्कुल रेडी था, जब माँ बाप को लगा था कि ये प्लेबैक में कुछ करेगी. और हमने मुलाकात की, हम जब घर वापस आए तो उस बंदे ने जिसने हमें मिलवाया बिना मांगे, उसने हमारी जो मीटिंग करा दी उसके एवज में उसने बोला कि उसकी कोई विदेशी मित्र मेरे पास रहेगी 3 महीने के लिए. तो मेरी माँ को ये बात खटक गई. क्योंकि ये बात उसने तब नहीं बोला जब वो हमें मिलवाने ले जा रहा था,
0: ये बाद में बोला गया
1: जब उसने हमें मिलवा दिया. और जब मेरी माँ ने मना कर दिया कि नहीं अनजान कोई लड़की नहीं रहेगी तुम्हारे साथ, तो उसने बोला पर मैंने तो तुम्हें मोंटी शर्मा से मिलवा दिया या था, तब भी तुम मना कर रही हो मुझे. तो हमें ये गेम समझ आया कि यहाँ पे ऐसे ही होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले फेवर्स, कोई फ्री में
0: करण बनते हैं.
1: हाँ, यहाँ कोई आपके लिए फ्री में नहीं कुछ करेगा, वो आपको लेके. और वो बहुत क्लियरली उसने बोला कि बट हम तो अभी तुमको मोंटी शर्मा से मिलवा के ला रहे हैं भाई,
0: तो ये तो मानना ही पड़ेगा।
1: तो ये तो तुम कैसे मना कर रही हो, मतलब तुम ये मना कर रही हो तो मतलब हम तुमको अब जीवन में कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। तो अब हम लोग पटना से उठ के आए हुए, हमारा तो हमारी तो दुनिया हिल गई। और मेरे पिताजी वैसे भी बहुत पुलिस वाले हैं, वो दुनिया के एक उस आयाम को देखते होंगे जो हम नहीं देखे हैं, तो उनको डर भी बहुत लगता है अपनी बेटियों के लिए, हर बाप को लगता है। पर पुलिस वाले थोड़ा ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो थोड़े ज्यादा गंदगी देखते हैं, जो गंदा साइड है, जो कठिन साइड है जीवन का, वो ज्यादा देखते हैं। तो मेरे पापा हमको उस दिन एक बात समझाए कि बेटा किसी भी काम को करने के लिए अगर झुकना पड़े तो मत जाना, अपनी इज्जत अपनी डिग्निटी को सबसे ऊपर रखना, और अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि उस जगह पे तुमको डर लग रहा है तो वहां से हट जाना, निकल जाना, काम नहीं मिले मत करना, पर कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। क्योंकि उनको ये डर था कि अगर ये छोटी बच्ची है ये काम मांगेगी तो एवज में उससे क्या मांग ले, ये पता नहीं जज कर पाए कि नहीं कर पाए। और क्योंकि दीपाली एक किताबी बच्ची थी,
0: अक्षरशः मान लिया उसने,
1: शब्दशः उस बात को हमने कर लिया फॉलो। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद वोकल कॉर्ड्स फट गए, ये सब कुछ यू नो, ये अपने आप ये चीजें होती चली गई कि सिंगिंग से मेरा नाता रिश्ता टूट गया पूरी तरह से 2012 तक।
0: और ये सारा समय आपको जो है ये ले जा रहा था एक्टिंग की दुनिया में,
1: एक्टिंग की दुनिया में। एक्टिंग करते करते ऐसा लगने लगा कि ये एक्टर जो है उसको तो सारा काम वही करना होता है जो डायरेक्टर बोलता है। तो बनना तो हमको डायरेक्टर है, आई एम अ लीडर।
0: ये यानी मंजिल जो है वो हर एक पड़ाव पर नई नजर आती रही।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ से FTI दिखने लगा।
1: बिल्कुल।
0: मतलब ये बहुत बड़ा टर्न नहीं था कि सिंगिंग से एक्टिंग और एक्टिंग से डायरेक्शन?
1: हाँ टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था। लेकिन हम बोले ना कि ये मेरा सौभाग्य है कि कभी कोई मेरे माँ बाप मेरी बहन कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि तुम क्या कर रही हो, तुम करना चाहती क्या हो। कभी कोई नहीं हमको ये सवाल पूछता।
0: तो आपने एक दिन ये तय कर लिया कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट में जाकर डिप्लोमा लेना है।
1: हाँ, और इसके लिए एक्टिंग छोड़ के बाकायदा, और तब तक इधर पैरेलली मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ मुंबई में।
0: हाँ, अरे वो तो एडमिशन ले लिया यहाँ कॉलेज में, ये तो मैं भूल गया बात करना।
1: यहाँ हमने एडमिशन ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हुआ मास मीडिया में।
0: तो ये क्लासेस
1: जो थे, ये प्रिंसिपल काफी दयावान थी, वो रियलिटी शो देखती थी और शी वॉज अ फैन, शी वॉज अ सपोर्टर, तो उन्होंने इतनी छूट दे दी तुम
0: रेगुलर क्लासेस नहीं आओगी तो
1: नहीं आओगी तो चलेगा। तो वो वहाँ पे आई थिंक मेरा लक फेवर्ड मी एंड ग्रेजुएशन, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया। क्योंकि माँ बाप का ये भी था कि बेटा डिग्री तो चाहिए, बिना डिग्री के बिहारी जीवित नहीं रह सकता है।
0: लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत जरूरी बात है, और उसमें आपने इस पर फोकस किया ये भी उतनी ही बड़ी बात है कि एक तरफ जब एक्टिंग का मामला चल रहा है, प्रोफेशन सेट है, उसके बाद
1: प्रोफेशन सेट है, पैसे सेट है, मतलब एक 18-20 साल की लड़की के लिए जितने पैसे हम कमा रहे थे, अभी भी सोच के हमको ऐसा लगता है कि मतलब हम गलत रास्ते कैसे नहीं गए, ये कौन सी कृपा थी मेरे ऊपर।
0: ये सारे संस्कारों का खेल,
1: ये सारे संस्कारों का खेल है, ये मेरे माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे। और 6 साल बाद जब हम सोचे कि हमको और पढ़ना है, FTII जाना है, तो वो मेरे पिताजी बोले बेटा तुम घर आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी कोई कमाई नहीं, कोई काम नहीं, तुम घर आओ, मेरे पिताजी मेरे साथ बैठ के FTII की तैयारी शुरू कर।
0: एक गजब। तो आपने तब एक्टिंग भी छोड़ दी?
1: छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मुंबई से वापस घर पटना।
0: ये तो बहुत बड़ा टर्न था।
1: हाँ, ये काफी बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा टर्न था।
0: FTII की तैयारी किस तरह की?
1: एक तो पता नहीं था कि फिल्म देखा कैसे जाता है। फिल्म देखना हमें मसाला फिल्में देखने आती थी, मनमोहन देसाई जी की जो ग्रैंड सक्सेस फिल्म जो बिहार में चलती थी। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब एंटरटेनमेंट, बट FTII वाज अ सीरियस बिजनेस। और वहाँ पे जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो मेरे अंदर ये था कि डायरेक्टर जो बोल रहा है वही करना पड़ता है, तो भैया जो लीडर है हमको वही बनना है। जिस भी प्रोफेशन में हम काम करें, जो लीडर है हमको तो वही बनना है। ये छोटा जो क्या बोलते हैं, बाल मन जिसको कहते हैं, वो अपना ही कुछ इन्फ्लुएंस निकालता रहता है। तो जैसे एज अ कैरेक्टर हमको ऐसा लगता था कि मेरे कैरेक्टर को ये लोग रुलाते बहुत है, इतना नहीं रो सकती है कोई, वो पलट के क्यों नहीं बोल रही है जब उसके साथ इतनी ज्यादती हो रही है? तो ये जो कहानी लिख रहा है ना, हमको वहां बैठना है सो दैट आई कैन टेल माय ओन स्टोरी, मे बी यू नो ये मेरे दिमाग में, ये
0: टू कंट्रोल द थिंग्स करेक्ट एंड टेल योर स्टोरी
1: करेक्ट, टू टेल माय स्टोरी इन माय वेज, क्योंकि आप जो दिखाते चले जा रहे हैं ये सच नहीं है। इतनी प्रताड़ना कोई इंसान जीवित तो नहीं सह सकता है, वो कभी तो रिटेलिएट करेगा। तो वो रिटेलिएशन भी वो उस कैरेक्टर का बहुत सीमित दिखाते थे कि वो बस उसने एक बार ऐसे देख लिया चौंक के, बट मेरे नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठ रहा था। तो हमको लगा ये कर कौन रहा है, ये खेल क्यों हो रहा है। और मेरी डायरेक्टर से बहस भी होती थी कि सर कभी तो आप पलट के मुझे जवाब देने दो इनको। तो डायरेक्टर ने बताया कि भैया जो राइटर लिखेगा और जो डायरेक्टर बोलेगा यही होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा तो हम अपनी कहानी बनाएंगे, तो हम जाएंगे डायरेक्टर बनने। तब पता भी नहीं था कि FTII नाम का कुछ एग्जिस्ट करता है। इंटरनेट पे दुनिया खोल के पढ़ के पता चला हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें तैयारी लगेगी, रिटन होगा, अगर वो क्वालिफाई हुआ तो इंटरव्यू होगा, ये मतलब एक छोटा UPSC का छोटा सा फॉर्मेट।
0: तो उसकी तैयारी के लिए दीपाली यहाँ से एक्टिंग वेक्टिंग सिंगिंग विंगिंग सब छोड़ के चली गई पटना और तैयारी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल,
0: ये कहानी बहुत गजब की है भाई। इतने टर्न एंड ट्विस्ट हैं। पिताजी तैयारी करवा रहे हैं, फिल्में देखी जा रही हैं।
1: हाँ फिल्में देखी नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता था कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जाने के लिए फिल्में देखी जाती हैं। आप सोचिए हमको बहुत आश्चर्य होता है कि कितने कमाल के हैं ये लोग जिनके बीच हम पैदा हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता है,
0: नहीं ये एक
1: लेकिन ये लगे हुए हैं।
0: हाँ
1: लगे हुए हैं। हमको भी नहीं पता है कि FTII में घुसने के लिए फिल्में देखनी पड़ेंगी। हमको ये पता है क्रिएटिव होना जरूरी है, एंड आई एम क्रिएटिव। तो जब मेरा रिटर्न हुआ तो उसमें जो जनरल नॉलेज मेरा अच्छा था, जनरल अवेयरनेस अच्छा था, तो वो चीज़ें तो सॉर्टेड थी। क्रिएटिव राइटिंग करना था जो डायरेक्शन के कोर्स के लिए था, वो सॉर्टेड थी। किसी एक फिल्म की समीक्षा अगर आ जाए, किसी स्पेसिफिक फिल्म का एक सीन डिस्क्रिप्शन आ जाए या एडिट पे बात आ जाए, वहाँ हम थोड़े अटकते, बट आई वॉज रेडी कि उसमें भी हम कुछ बात बना के लिख सकते हैं, इतने भी बेवकूफ नहीं है। वर्ल्ड सिनेमा तो पता भी नहीं था, सिनेमा देखना भी नहीं आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा उसको एज अ एक्टिंग शूटिंग वही दिमाग में रहा। इसलिए शायद हम थोड़े डेड इमोशन थे, मतलब मेरे अंदर जो जज्बात थे ना वो काफी डेड थे। तो तैयारी शुरू की हमने वर्ल्ड सिनेमा के बारे में सिर्फ पढ़ के, क्योंकि फिल्में नहीं थी मेरे पास देखने को, मेरे लैपटॉप में वो CD प्लेयर नहीं था। मेरे पास वो कंप्यूटर नहीं था जिसमें हम CD लगा के वर्ल्ड सिनेमा की बात देख
0: सके, या किसी अलग अलग जरिए से सिनेमा को डाउनलोड कर लें और जमा कर लें और
1: वो
0: शान
1: सब
0: बगा लें।
1: कुछ भी नहीं आता था। मेरे हाथ में बस इतना ही था कि वो रिटर्न क्लियर करना है जैसे भी, क्योंकि हमको पता था कि अगर हम इंटरव्यू तक पहुंच गए हमको उसमें से नहीं छांट सकता है। तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी। एक्चुअली मेरा विश्वास था कि हम कभी रिजेक्ट नहीं होंगे। वो रियलिटी शो हारने की वजह थी क्योंकि हम मन से हारे हुए थे। एक लड़की नहीं जीत सकती थी इसलिए वो लड़की नहीं जीती। एक लड़की सोच रही थी वो FTII में निकाल लेगी इसलिए उसने निकाल लिया। यही है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, ये सत्य है।
0: यहाँ एक गाना सुनते हैं क्योंकि बहुत देर से हम बात कर रहे हैं। तो अब दीपाली कौन सा गाना सुनाएगी?
1: अब दीपाली के जीवन में जो मोड़ आया है वो है छोटे

0: इजाजत तक का सफर तय कर लिया। यहाँ से दीपाली चली आती है पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, सिलेक्शन हो जाता है।
1: करेक्ट।
0: इंटरव्यू सब तोड़
1: सब सब सब सब
0: है ना,
1: सब सब।
0: तो मतलब दीपाली,
1: जो लिस्ट निकलता है वो लिस्ट में सबसे नीचे का नाम है, क्योंकि वो रैंकिंग के बेस
0: सबसे नीचे का नाम है।
1: 12 सीट होते हैं, जिनमें से 6 जनरल कैटेगरी और 6 रिजर्व्ड कैटेगरी। तो वो जो 6 सीट है उनमें सबसे नीचे मेरा नाम है, मतलब हमने जस्ट क्वालिफाई कर लिया,
0: बच गए।
1: हाँ।
0: और कौन कौन लोग हैं हमारे साथ वहाँ पर
1: अलग अलग? अच्छा, ये एक अच्छी बात थी कि 12 स्टूडेंट्स में से हर स्टूडेंट अलग स्टेट का था।
0: बिल्कुल।
1: ये आई थिंक ये कॉन्शियस प्रोसेस है उनका सिलेक्शन का। क्योंकि मेरे बैच में केरलाइट भी था, कर्नाटका भी था, हम बिहारी, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो अब क्या होता है, आप अपने प्रांत में, अपने स्टेट में, अपने ही तरह के लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। शायद इसलिए FTII जैसा इंस्टीट्यूट बनता है, बहुत बहुत सोच विचार के। अभी इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं तो हमको FTII के मेरे दिन याद आ रहे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, भी ऐसे ही स्टूडियोज है। बिल्कुल। यही है ही वो।
0: बिल्कुल।
1: वो प्रभात खबर स्टूडियो हुआ करता था, प्रभात स्टूडियोज शांताराम जी का। तो अभी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस ऑफिस की तरह ही, हमारे ऐसे ही स्टूडियोज होते थे, हमारे ऐसे ही क्लासेस होते थे। तो बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के थे, सारे ग्रेजुएट्स थे। तो आप एक उम्र, अब आप एक जीवन का एक नजरिया, एक एक्सपीरियंस, एक एहसास, आपका दिल टूट चुका है, अब तक आपको प्यार हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप जीवन में फिनेंशियल स्ट्रगल समझ चुके हैं, आपने वो सारी चीजें, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट हैं तो आपने एक उम्र तो जी ली है, एक हिस्सा एक्सपीरियंस कर लिया है। और उसके बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही है, और सिर्फ सिनेमा, सिर्फ टेक्निकल बातें नहीं हो रही है। ये देख के समझ आ रहा है कि जो मेरे अंदर जो एहसास चल रहा है, इटली में बैठा 100 साल पुराना डायरेक्टर भी उसी एहसास को दिखाने में कामयाब हो रहा है।
0: बिल्कुल।
1: ये समझ आया, सिनेमा इज केपेबल, व्हाट इज सिनेमा केपेबल ऑफ। ये FTII ने समझाया कि इंसान जीना कैसे है, पर्सपेक्टिव क्या होता है।
0: देयर इज नो बाउंड्री इन ह्यूमन इमोशंस।
1: देयर इज नो बाउंड्री। और आप अपने जीवन का कैमरा कहाँ रख रहे हैं और अपने जीवन को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं।
0: बहुत सही।
1: नॉट जस्ट लिटरली, फिजिकली आप कैमरा कहाँ रख के एक सीन लगाते हैं, उसके पीछे के जो कारण होते हैं ये तो हम सोचते ही नहीं है कि क्यों इस वक्त हम इस लड़ाई को छत से देखा जा रहा है। इस लड़ाई को डायरेक्टर ने नीचे से क्यों नहीं दिखाया। ये चीजें, ये जो पर्सपेक्टिव है, जो फिजिकली और नॉन फिजिकली, मेंटली ऑल्सो, हमको समझ आया कि अच्छा नजरिया होता क्या है एक्चुअली। ये FTII ने सिखाया हमको।
0: और यहाँ वर्ल्ड सिनेमा जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में था, कुछ भी देख सकते थे, डिस्कस कर सकते थे।
1: बिल्कुल। हमारे जो फैकल्टी थी, जो विजिटिंग फैकल्टीज थे, जो टीचर्स थे, वो बड़े समझदार लोग थे, बहुत सहनशील समझदार लोग थे। क्योंकि ये सारे जो बच्चे आए थे ये सब अपने अपने घरों से लड़कर आए थे। मतलब कोई इंजीनियर है, इंजीनियरिंग के बाद पहुंच रहा है, किसी ने, जो ये वो बच्चे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और वो वेट कर रहे थे उस दिन का जब वो अपने माँ बाप को बोलेंगे अब तो मेरा चलेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जब उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमा लिए हैं कहीं से कैसे। तो ये एक ऐसा बाउंड्री था, जो फिजिकल बाउंड्री था FTII का, जिसके अंदर सिर्फ आजाद पंछी थे।
0: और ये सारे सिनेमा के जुनूनी लोग,
1: ये
0: थे।
1: सब सिनेमा लवर्स। और इनकी बातें, इनके डिस्कशंस, इनके एक्सपीरियंसेस, इनका जीवन को महसूस करने का तरीका ही अलग था। ये देखते ही कुछ और थे, जो हम लोगों को नॉर्मल दिखता था ये उल्टा देखते थे उन चीजों को। और ऐसे लोगों के साथ मेरा सौभाग्य हुआ कि हम इन लोगों के बीच में गए। मेरे जैसा सीधा चलने, सीधे रास्ते चलने वाला इंसान एक बोले तो एक खुले पिंजरे में घुस गया था। और वहां पर लोगों को सिनेमा देखने का तरीका, उस पर डिस्कशंस, अपनी फिल्में बनाना है आपको, आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मेरा एक साल का जर्नी था FTII में, आई डिड टेलीविजन डायरेक्शन फ्रॉम देयर। एक साल बाद जो नाम सबसे नीचे था वो वहां से टॉपर बन के निकलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: और हमारे

0: जो टॉपर होता था उसको विधु विनोद चोपड़ा स्कॉलरशिप मिलती है. सो आई रिसीव्ड दैट स्कॉलरशिप इन FTII. तो मेरे लिए आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो जर्नी होगा.
1: पूरा ट्रांसफॉर्मेशन,
0: पूरा पूरा मतलब दीपाली कई फेजेस में बनी और टूटी है. FTII उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत. दीपाली को अडल्ट बनाया FTII ने इन टर्म्स ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस. वहां पे हम पहली बार रोना सीखे पब्लिकली.
1: अच्छा,
0: दूसरों के सामने भी रोया जा सकता है. यह अभी तक नहीं हुआ था मेरे साथ, और FTII के अंदर पहली बार हुआ जब हम किसी के साथ बैठकर कुछ बात करते हुए और हम रो पाए. और वो एक इतना कैथार्टिक फीलिंग था, वो इतना अच्छा है महसूस हुआ जब ये
1: हल्का
0: हुआ,
1: हो जाना.
0: इतना हल्का महसूस हुआ तो समझ आया कि जीवन कुछ और ही है. मतलब आप कुछ और ही समझ रहे थे अब तक.
1: तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था. और वहाँ पूना में सिनेमा की दुनिया में रहकर एक तरह से खुद से मुलाकात हुई.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने.
1: यहाँ एक गाना सुन लें,
0: बिल्कुल,
1: उसके बाद मुंबई की तरफ आते हैं.
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: लिए

0: एकदम सत्य है ये।
1: दीपाली के साथ बिल्कुल यही हो रहा था,
0: बिल्कुल यही हो रहा था।
1: ये जावेद साहब की भूल है।
0: हाँ,
1: मशाल फिल्म का गाना है और हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक है
0: जी,
1: है ना, सुनते हैं ये गाना।

0: यहाँ से फिर बंबई आ जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यहाँ चूंकि अब कैमरे के पीछे रहने की ट्रेनिंग हो गई है,
1: करेक्ट,
0: तो अब क्या करना है?
1: अब टारगेट तो यही था कि बड़े किसी डायरेक्टर को पकड़ लिया जाए और उनके असिस्टेंट बन जाते हैं, जीवन धन्य है यहाँ से। अब यही तो अब करना क्या है, FTI से निकल के सिनेमा बनाना है, करेक्ट। तो एक साल वही छोटे मोटे एड्स, म्यूजिक वीडियोस असिस्ट करने का काम शुरू हो गया,
0: कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह,
1: कॉर्पोरेट फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स, म्यूजिक वीडियोस, या यू नो किसी बड़े डायरेक्टर के यहाँ प्री प्रोडक्शन का 15 दिन में लोगों की जरूरत है, क्योंकि अभी नाम नहीं है मेरा। वो इंडियन आइडल वाली दीपाली यहाँ नहीं चलने वाली है,
0: बिल्कुल,
1: वो जो फेमस वाली है जो सिंगर बनी थी या जिसने होस्ट किया था। और एक अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ, जो कि उस वक्त अच्छी नहीं लगती थी, कि कोई हमको पहचानता ही नहीं था, क्योंकि मेरा जो चेहरा है वो इतना एवरेज इंडियन फेस है कि आप यू नो जैसे एक एक एक पर्सनालिटी होती है ना, एक अलग किस्म की खूबसूरती, जैसे ऐश्वर्या राय है, वो एवरेज इंडियन ब्यूटी नहीं है, वो स्टैंड आउट इंडियन ब्यूटी है। वो कहीं भी खड़ी होंगी हजारों लाखों की भीड़ में भी तो आपकी नजर उनके चेहरे पर चली जाएगी, पर एक एवरेज इंडियन बिल्ट फेस मेरा वो है। तो रियलिटी शो से निकले भी थे तो भी लोग हमको जल्दी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि मेरा वैसा कुछ है नहीं, वो पहचानने वाला कोई फीचर नहीं है स्ट्राइकिंग, तो वो मेरे फेवर में काम करता था, क्योंकि फिर हमको ताने कम सुनने पड़ते थे कि अरे तुम तो रियलिटी शो जीत के या जो भी करके आई हो तो तुम ये काम क्यों कर रही हो, तो ऐसा भी सुनने मिलता था।
0: एक एनोनिमिटी मिली,
1: एक अनोनिमिटी मिली, और वो एक अज्ञातवास जो मेरे जीवन का बहुत सुंदर अज्ञातवास था, क्योंकि अब हम उस लेवल पे थे कि हम कुछ भी कर सकते थे, कोई नहीं पहचानता है हमको। वो इतना एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब आप जब जस्ट रियलिटी शो से निकले तो आपको सब जान रहे हैं, अगले एक दो साल तो डेफिनेटली आपको लोग जान रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप 5 स्टार्स में जा रहे हैं आ रहे हैं, आप रोज फ्लाइट ले रहे हैं, आपका जीवन अलग चल रहा है, और अचानक से करियर जो है वो धीरे धीरे अपना मोड़ लेने लगता है, और आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जब आप FTI से निकलते हैं तो आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आप यू आर रेडी टू बी अ स्पॉट बॉय टू अ डायरेक्टर, आप उस बीच में कुछ भी हो सकते हैं, आप
0: बहुत सही
1: खुल चुके हैं, आप बिल्कुल निर्लज्ज हो चुके हैं, आप हर काम करने को तैयार है, क्योंकि टारगेट ध्येय है कि आपकी फिल्म बननी चाहिए,
0: हाँ।
1: या जिसकी फिल्म बन रही है उसका पूरा सहयोग होना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: वो पैशनेट लोग ही कर सकते
0: हैं, टीम की तरह अब काम
1: अब,
0: करना
1: अब जो इंडिविजुअल दीपाली, इंडिविजुअलिस्टिक दीपाली थी, अब वो समाज के साथ जिसके कोई दोस्त नहीं होते थे अब उसके दोस्त बनने शुरू हुए, अब दीपाली एक अलग आयाम में घुस रही थी अपने और यहाँ पे दोस्ती आई मेरी लाइफ में। इसके पहले तक हम बहुत अकेले थे, बहुत अकेले थे। तो जब हम मुंबई वापस आए तो क्योंकि बैचमेट्स और FTI का तो हम मशहूर हैं, बैचमेट्स और
0: अलुमनाई
1: हमारा काफी तगड़ा है,
0: वहाँ एक तरह का कनेक्शन जो है जोरदार होता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत जोरदार होता है। और वो क्या है, वो बिल्कुल इतना इतना गहरा है कि समय की सीमा उसमें मायने ही नहीं रखती, कम से कम समय में आप इतनी गहराई से, क्योंकि काम ही ऐसा है, आप एक काम ही ऐसा कर रहे हैं कि आप जुड़ेंगे ही उस लेवल पे। तो वहां से मेरी लाइफ में दोस्ती शुरू हुई, दोस्तों के साथ काम शुरू हुआ, कुछ ऐसे दोस्त बने जो मतलब मेरे जीवन से भी प्यारे हैं, मेरे जान से भी प्यारे हैं मेरे दोस्त। वो लोगों के साथ मुंबई में मेरा असिस्टेंट बनने का सपना और स्ट्रगल और जो भी रास्ता है वो शुरू हो गया था, और एक साल तक ये बड़ा अच्छा चला। इस बीच एक दिन कैफी आजमी साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं हर साल, शबाना आजमी जी और बाबा आजमी जी, दे वर लुकिंग फॉर सिंगर्स जो गाना गा सके उनके बर्थ एनिवर्सरी पे, और एक अच्छा मंच कई नए टैलेंट को भी जगह देने का, क्योंकि वो आंगन ऐसा है कि यू नो हर कोई वहां बैठना चाहता है, वो आप गए होंगे आई एम श्योर जानकी कुटीर में,
0: पृथ्वी हाउस में होता है,
1: पृथ्वी हाउस में, पर पृथ्वी हाउस के ये इधर जो जानकी कुटीर है उसका नाम, हाँ उस वो उन्हीं का आंगन है जहाँ कैफी साहब रहते थे, तो वहीं पे एक छोटा सा स्टेज लगा के, और
0: वहां करते हैं।
1: उनकी मंशा भी यही है कि नए टैलेंट को, क्योंकि वो इतना प्योरिटी से और इतनी शिद्दत से और इतने बड़े लेवल का कार्यक्रम है कि इतने बड़े बड़े समझदार गुणी लोग वहां बैठते हैं कि वहां कोई भी गाने को तैयार हो जाएगा, बट ये देखिए ये उनका बड़प्पन है कि उनको नए टैलेंट चाहिए, वो चाहते हैं कि वो भी अपना टैलेंट नए लोग भी दिखा सके। और मेरे एक दोस्त को, क्योंकि हम गाते थे तो उसको पता चला कि बाबा आजमी को असिस्ट करता था, तो उसने बोला चल तू भी चल, गाना चाहिए उनको, सिंगर्स चाहिए। तो हम बोले मेरा क्या काम है वहां पे, हम तो शोज वोज करते हैं, अब उनको अच्छे सिंगर चाहिए होंगे, नहीं नहीं तू चल। और हम पहुंचे और बाबा आजमी आए बाहर, एक तो वो दिखते भी कैफी साहब जैसे ही है तो काफी ऐसा फील हो रहा था, ओ माय गॉड, यू नो, बाबा आजमी. एंड उन्होंने बोला आप सुनाइए, आप क्या सुना सकती हैं. तो हमने गाना गाया कैफी साहब का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम. बाबा आजमी डिस्टर्ब हो गए. उन्होंने बोला आप करती क्या है, क्योंकि आप जिसके साथ आई है वो तो मेरा असिस्टेंट है, तो ये आपका दोस्त है, तो मतलब आप सिंगर तो नहीं है, तो आप करती क्या है. तो आई सेड कि सर हम अभी डायरेक्शन पास आउट हैं FTII से और काम ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना जीवन इसी में व्यर्थ कर देंगी, मतलब आप गाना क्यों नहीं गाती हैं. तो आई सेड सर वो एक डॉक्टर ने बोला था कि हम गाना नहीं गा सकते हैं जीवन भर. तो बोले वो पागल है, वो डॉक्टर पागल है जिसने ये बात आपको बोली है. अब हुआ ये कि वो इतने साल में ये दीपाली की आवाज हील कर चुकी थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है जो दीपाली के पास नहीं था क्योंकि आवाज तो पैदा हुई है जिसके साथ आप वो आवाज तो वैसी ही रहेगी ना. गला खराब हो सकता है, आवाज नहीं जा सकती छोड़ के, आप पैदा हुए हैं उसके साथ, उस मशीन के साथ. तो जब बाबा आजमी ने ये बात बोली ना, तो उनके एक अनजान इंसान, आप उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन वो अगर आपके लिए इतनी शिद्दत से कुछ महसूस कर रहा है तो वो उनकी आंखों में दिखता है. तो बाबा आजमी की आंखों में दिखा कि उनको इस बात की छटपटाहट हो गई कि ये बच्ची अपना जीवन बाकी कामों में व्यर्थ कर क्यों रही है जब ये ऐसा गाती है. और ये बात मेरे साथ रह गई. और उन्होंने उस साल हमको वहाँ मौका भी दिया कैफी साहब के महफिल में ये गाना, उनका सबसे फेवरेट गाना है बाबा आजमी सर का, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
0: अनुपमा फिल्म का.
1: और वो उनको मेरी आवाज इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि इस गाने के लिए भैया मार्केट में बहुत बवाल होता है कि हम गाएंगे तो हम गाएंगे, सिंगर्स लूटने के लिए दौड़ते हैं, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस सॉन्ग टू यू.
0: वाह वाह वाह,
1: ये कॉन्फिडेंस जब बाबा आजमी सर ने मेरे अंदर दिखाया तो हमको लगा कि यार ये हम सच में कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं.
0: फिर से एक दो रहा गया,
1: फिर एक दो रहा गया.
0: आगे बढ़ने से पहले वो ही गाना सुनना चाहिए.

कितनी सुंदर पंक्तियों को चुना आपने गाने के लिए, बहुत शानदार गाना है। और ये इस गाने के सबसे अच्छे अंतरों में से एक है, पलकों की ठंडी सेज पर। क्या बात है, क्या बात है।

0: ये गाना कहता है ऐसी भी बातें होती हैं और दीपाली की जिंदगी में ऐसी ही बातें हो रही थी। गाना वापस लौट गया था
1: बिल्कुल।
2: दोस्तों आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। समय हो चला है आज की पहली सभा को समेटने का। आप सभी सुनने वाले श्रोताओं से फिर होगी मुलाकात शाम की दूसरी सभा यानी 6 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस समय शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सहेली चुमकी। हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और आरंभ करते हैं आज की हमारी दूसरी सभा।

सबसे पहले 6:05 पर आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम, सुनेंगे मार भक्ति गीत ललनेंग पुदेते और उनके साथियों की आवाज में। जैमी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे जैमी लोकगीत क्योरिंग जैमे और उनके साथियों की आवाज में। समय रहेगा 6:25। शाम के 6:45 पर आप सुनेंगे संध्यार आंचलिक बातोरी आकाशवाणी की गुवाहाटी केंद्र से। डिमासा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे डिमासा लोकगीत गोपाल बाठारी के आवाज़ में। समय रहेगा 7:00।

7:20 पर आप सुनेंगे कार्बी कार्यक्रम के तहत कार्बी भक्ति गीत सोनिका मिल्कपी और उनके साथियों के आवाज में। कुकी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुकी भक्ति गीत जोलहोई चौंगलोई और उनके साथियों के आवाज में। समय रहेगा 7:40। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। 8:30 पर आप सुनेंगे टीचर्स प्रोग्राम।

समाचार संध्या आप सुन पाएंगे 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9 बजे आप सुन पाएंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग। 9:30 पर आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत।

ये थी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।

आइए आप शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मार भक्ति गीत ललनेंग पुदाइते और उनके साथियों के आवाज में।

आप सुन रहे थे मार भक्ति गीत ललनेंग पुदाइते और उनके साथियों के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आगे सुनते हैं जैमी लोकगीत केवरिंग जैमी और उनके साथियों के आवाज में।

आप आनंद ले रहे थे जैमी लोकगीत का क्योरिंग जैमी और उनके साथियों के आवाज़ में FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब से कुछ ही देर में आपको सुनवाते हैं सौंधियार अंचोलिक बातोरी जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं डिमासा लोकगीत गोपाल बाठारी की आवाज में।
1: Sivara Hari Da Anubani, Sivara Hari Da Anubani.

나를 사랑자 부동산 이봐 생각이다 하이 갈라이사

Hare Nen

哎，宝呀嘛，咱们宝呀嘛，宝嘛哈在咱们都，哎，西巴拉，西里巴，东哈的，格玛尼，火里巴，东哈的，哎，巴塔勒格。

一身上不走来，家门还开的面，还面脏，啊脏，还到的你不走来，吃口饭，还就把。

가려면 한여정 어정으로 마그로사다 무지 지가보 해바과자이 탈가자이 자부도 사담허런 지허런 자랑도 하이 세바라

的那臭头家当外当当郎，还在当妈村长。

闇がさらわれ山で晴れ面

나 살아보야 보고 나 마대네 하상장 야바상 아이 하광마

সে বাড়াই ছাইবা দুঃখদে সে বাড়াই ছড়িবা দুঃখদে তরে ছড়াও যা।

당 당연해 당 당연해도 당하는

馬でね、そうなみなさん、ハラモラモ。

आप सुन रहे थे कार्बी भक्ति गीत सोनिका मिल्क पी और उनके साथियों के आवाज में FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं कुकी भक्ति गीत जोलहोई चंगलोई और उनके साथियों के आवाज में।

आप आनंद ले रहे थे कुकी भक्ति गीत का जलहोय चंगलोय और उनके साथियों के आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं टीचर्स डे प्रोग्राम।

0: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 100.2 FM मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग। मैं हूँ आपकी दोस्त जुदित और टीचर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हर वर्ष 5 सितंबर को हम महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर टीचर्स डे मनाते हैं। इसी विशेष अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद है हमारे जाने माने शिक्षक सर दिनेश तिवारी जी, जो है एक एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हाफलॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज के। तो आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, आपका हम हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाते क्यों है?
1: देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही टावरिंग पर्सनालिटी है और 5 सितंबर जो कि उनका जन्मदिन है उसको हम टीचर्स डे के रूप में इसीलिए मनाते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक महान फिलोसोफर, बुद्धिजीवी, एक बहुत ही एनलाइटेंड स्कॉलर, स्टेट्समैन और हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस चांसलर ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज रह चुके हैं। तो उनके जो एडमायरर्स जो थे, उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनका जन्मदिन बहुत ही प्यार से मनाते थे। तो उनको विचार आया कि क्यों नहीं उनका जन्मदिन, क्योंकि वो टीचिंग कम्युनिटी को इतना प्यार करते थे एंड ही आल्सो बीइंग एन इंटेलेक्चुअल, तो वो अपना जन्मदिन ही डेडिकेट कर दिए टीचर्स के नाम पे कि आज से 5 सितंबर अब से ये टीचर्स डे के नाम से मनाया जाएगा।
0: जी।
1: कारण यही है, उनका रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचिंग कम्युनिटी, यूं कहा जाए तो।
0: जी जी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं एजुकेशन को।
1: एग्जैक्टली।
0: तो क्या डॉक्टर राधाकृष्णन का एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन एजुकेशन का क्या क्या है?
1: डॉक्टर राधाकृष्णन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही, अगर मैं उसको समरी भी करने जाएं, कम से कम 2 दिन लग जाएगा। उनके जो फिलोसफीज, उनके जो कंसेप्ट, उनके जो सोच, उनका ये मानना था कि एजुकेशन सिर्फ इंटेलेक्ट को बढ़ाने के लिए न रहे बल्कि एक आदमी का कैरेक्टर, एक मॉरल दायित्व, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सब जो है कॉम्बाइंड होके टूवर्ड्स एक नेशन बिल्डिंग काम होना चाहिए।
0: जी।
1: ये है उनका सबसे बड़ा योगदान, दैट एजुकेशन शुड बी टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग।
0: जो आप हम अभी फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो आजकल के जो टीचर्स हैं, डॉक्टर जो राधाकृष्णन जी है, उसका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है, हम क्या सीख सकते हैं इससे? हमें क्या सीख, अच्छी सीख मिलेगी?
1: देखिए, शिक्षक यही सीख सकते हैं कि शिक्षा केवल एक कुछ तथ्यों को लेके या कुछ इंफॉर्मेशन को लेके सिर्फ उसको मेमोराइजिंग तक ही न रहे बल्कि अपने अंदर अच्छा कैरेक्टर, एक वैल्यू बेस्ड, एक रीजनिंग, क्रिएटिविटी और हर आदमी के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब सीख सकते हैं उनके जो भी सोच है, जो भी उनके जो फिलॉसफी है।
0: जी, जैसे कि आपने बोला, ये सब पढ़ाई तक सीमित नहीं,
1: नहीं पढ़ाई तक बिल्कुल सीमित नहीं है।
0: जी जी। तो क्लासरूम्स के बियॉन्ड टीचर्स को सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ाए?
1: देखिए, अगर हम टीचर हैं या कोई भी जो आज दिमा आसाओ में इतने सारे प्रोफेसर हैं, हाई स्कूल टीचर्स हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, क्लासरूम तक सीमित टीचिंग तो कभी भी रहना नहीं चाहिए। ये मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये एक टीचिंग बियॉन्ड द क्लासरूम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य में एक टीचर कहा जाता है कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर, ऐसा कहा जाता है। तो अगर हमारे विद्यार्थी आउटसाइड द कैंपस भी रहते हैं, अगर उनसे हमारा टच रहता है या लाइक हम जहाँ भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो टीचर का जो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसको एनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए कि देखिए, अभी मैं कभी कभी ऐसे ऑटो से भी चले जाते हैं इधर उधर, तो पूछते हैं वो ऑटो वालों कि भाई तुम क्या कहाँ तक पढ़े हो? तो सर, हम हायर सेकेंडरी तक पढ़े हैं। तो कितना परसेंटेज आया था? तो सर 50 जैसा आया था, लेकिन कुछ कारणवश हम कंप्लीट नहीं कर। तुरंत हमारे अंदर एक टीचर वाला वो भावना आ जाता है कि अरे हमारे कॉलेज में तो दो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं डिस्टेंस एजुकेशन, क्यों नहीं वहां तुम अपने आप को एनरोल करते हो, वहां पे एज इज नॉट अ बैरियर और सपोर्ट सिस्टम है लर्निंग का, हम खुद कोऑर्डिनेटर हैं के हैंडी यू नो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का, कभी मन करे तो आना तुम और अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करना। तो कहने का मतलब ये होता है एक टीचर का दायित्व, लाइक ऑलवेज ही शुड बी और ही शुड बी इन एन एनकरेजिंग मोड और प्रोत्साहित करना चाहिए, कहीं भी कुछ गलत देखे तो उसको फिर बताना चाहिए। सो दिस इज व्हाट अ टीचर शुड बी।
0: आजकल एआई का जमाना है, तो टीचर्स को रिमूव कर सकता है?
1: नहीं, टीचर्स को तो देखिए एआई कभी भी रिमूव नहीं कर पाएगा। एआई देखिए सक्षम है डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन, जो चाहिए वो दे देगा आपको, है ना, इंफॉर्मेशन बोलिए, बढ़िया से बढ़िया लिटरेरी नॉलेज दे देगा वो, लेकिन शिक्षा का स्थान एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक एक ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, तो जो शिक्षक आज से 20 साल 30 साल पहले जो रोल प्ले करता था, सर्टेनली आज वो रोल एक इवॉल्विंग नेचर में होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से एक टीचर कभी भी परे नहीं रह सकते, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, तो उनका रोल भी इवॉल्विंग रूप में ही होगा। क्योंकि एक टीचर जो है एक लड़का के अंदर आत्मविश्वास, एथिक्स, मोरालिटी, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, ये एआई कभी दे नहीं पाएगा।
0: जी, ये तो बिल्कुल सही।
1: टीचर का जो रोल है वो एआई तो अभी जस्ट शुरुआत में है, वो और भी मैनिफोल्ड अगर एआई का आ जाए, टीचर टीचर ही रहेगा, लेकिन हाँ उसके रोल्स इवॉल्विंग नेचर में रहेगा। ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम अगेन।
0: जी हाँ, तो हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स लोग जो है एआई पर पूरा ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है?
1: देखिए यहाँ पे उनको गाइडेंस चाहिए।
0: जी,
1: जैसे कि आज मेरा एक डिग्री डीएससी कोर का, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, अब तो बीए नहीं कहा जाता
0: जी,
1: है, तो इसका मेरा आज मैं फिफ्थ सेमेस्टर का क्लास था, तो हम कहे कि देखो तुमको क्या लगता है बीइंग अ टीचर हम क्या एआई यूज नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उस पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है। मतलब है कि कल को अगर मुझे एक पोल्ट्री फार्म खोलना है और हम एआई को बोलते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे हैं, हिल्स एरिया में रहते हैं, हाँ हमारा इतना का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे क्लाइमेट ऐसे ऐसे है, उसके प्रॉम्प्ट्स अच्छे होने चाहिए, हम ये फार्मिंग खोलना चाहते हैं तो इसको कैसे करें, इसमें मेरा लागत कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एआई जो है बहुत सिस्टमेटिकली बहुत सुंदर से दे दे। अब वो इन्फॉर्मेशन हम लेने के लिए मैं कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं जा रहा हूँ,

0: अच्छा 40 के जगह उसको मिलना चाहिए था एक्चुअली 25, और एक अच्छे स्टूडेंट को 40 मिल रहा है, उसको शायद 55 मिल गया, वो तो खुश। लेकिन ये ऐसे बच्चे हम देखे हैं जब इंटरव्यू पैनल में आते हैं, हमने क्या देखा है, डिग्री तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए, लेकिन कुछ भी पूछो तो सुंदर से वो डेप्थ में बता नहीं पाता है। सुपरफिशियल नॉलेज लेके जब आओगे आज ना कल कहीं तो वो फंसोगे। एक स्ट्रांग बिल्डिंग आप बनाओगे ऊपर से, लेकिन फाउंडेशन खूब कमजोर बनाओगे और उस पे तीन तल्ला बनाओगे, वो एक दिन तो टूटेगा ही। तो एआई आपको शुरुआत में जो बच्चा उसको यूज करना चाहता है वो भरपूर यूज करे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन रियल डेप्थ और रियल नॉलेज तो उसका नहीं आएगा। तो मैं यही कहूंगा कि फुल्ली डिपेंडेंट ना हो, पहले पढ़ें किताबें को, नॉलेज को डीपली ग्रहण करें, और उससे रिलेटेड अगर आपका कोई सर्च इंजिन है जो उससे और भी ज्यादा कुछ बताएगा और उसमें ऐड करेंगे तो यस व्हाई नॉट, आप तब इस्तेमाल कीजिए उसका। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी एनकरेज करते हैं एआई को यूज करने के लिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो ब्लाइंड बोल रहे हैं कि इसी पे टोटली डिपेंडेंट हो जाओ। इट शुड बी यूज्ड एज अ टूल,
1: टूल्स।
0: हाँ, टूल।
1: और आपको क्या लगता है कि आजकल के जो टीचर्स हैं सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस करते हैं?
0: आज के जो टीचर्स जो हैं, मैंने क्या देखा है, उस दिन तो मैंने एमएलए से भी बात कर रहे थे यहाँ पे, अभी तो हमारे कॉलेज में जो एचएस क्लासेस हैं बहुत जल्दी वो डिलिंक होगा, और उसका एक कारण है कि क्लासेस इतने बड़े बड़े हैं कि सबको अटेंशन देना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप ही सोचिए, हायर सेकेंडरी में जो मैं क्लास लेता हूँ 135 बच्चे हैं, मेरा तो थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी अच्छा है तो somehow I reach the last bench, लेकिन जिनका उस लेवल का नहीं है वो तो कुछ ही बच्चे वो करेंगे। और मान लीजिए किसी का वॉइस क्लैरिटी भी अगर लाउड है लेकिन अटेंशन तो सबको दे नहीं पाएगा, बात ये आता है। जब आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो एक बच्चा जो है अपने को आउट ऑफ फोकस समझता है। अब स्कूल में देखिए, बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं यहाँ के सो कॉल, वहां पे आप देखिए 40 बच्चे हैं एक क्लास में, 60 बच्चे हैं मैक्सिमम, जब उससे ज्यादा होता है तो सेक्शंस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो तो प्रोफेसर्स हैं, डिग्री तक उनको ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब हायर सेकेंडरी पहले से है और उसके लिए पहले यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं था। तो सिर्फ कॉलेज की ही बात नहीं बोल रहे हैं, किसी किसी स्कूल लेवल पे भी जब बहुत बड़ा क्लासरूम होता है ना तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो दिस इज वन चैलेंज। दूसरा है कि डाइवर्स मेंटेलिटी के साथ स्टूडेंट्स हैं, वो समझना है मुझे एज अ टीचर। और आज एक टीचर सिर्फ टीचिंग ही नहीं करता है, बहुत सारा कॉरपोरेट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको दिया जाता है, वो भी उसको निभाना है, लिमिटेड टाइम मिलता है ना। देखिए आजकल आप खुद देखिएगा इधर उधर, टीचिंग जो है ना अब पहले जैसा नहीं रहा। सब लोग बोलते हैं कॉलेज का तो है ही है, इवन जो स्कूल्स के जो टीचर हैं दे हैव बिकम वेरी बिजी। अब उनको लिमिटेड टाइम में ना सिलेबस
1: खत्म करना है।
0: तो जैसे आपके अंदर एक हड़बड़ी आएगा कि मैं सिलेबस खत्म करना है तो टीचिंग का स्तर गिर जाएगा। सिलेबस इतना ज्यादा है और उसको हमको सिर्फ 4 या 5 क्लासेस में खत्म करना है। अब मान लीजिए कि शेक्सपियर का अगर मुझे एक ड्रामा पढ़ाना है, हमको सिर्फ 2 लेक्चर में या मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस में
1: खत्म करना है।
0: तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं एक अच्छा टीचर अगर है तो उसके अंदर एक मन में आएगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस, वो एक थोड़ा सा अंदर में वो लाइक फुर्ती नहीं, वो एंजॉय नहीं करेगा। ही इज टीचिंग फॉर द सेक ऑफ टीचिंग। ये है।
1: तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं?
0: चेंज तो ये है कि हम लिमिटेड करिकुलम बनाए और उतना ही डिजाइन करें जितना की जरूरी है, है ना। मुझे 10 पोएम पढ़ाने के बजाय मैं 2 पोएम पढ़ाऊं, 3 ड्रामा के बजाय मैं 1 ड्रामा पढ़ाऊं। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे ओपनली कि हम कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, नहीं हम नहीं करेंगे, ये भी नहीं बोल सकते। आई एम अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, उनसे मेरा कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। तो वो सब दिमाग में रखते हुए भी आई थिंक सिलेबस को हम डिजाइन कर सकते हैं।
1: स्टूडेंट्स को हम कैसे एनकरेज करेंगे कि वो खुद इंडिपेंडेंटली या फिर क्रिएटिविटी अपने आप में कैसे लाए?
0: देखिए मेंटरिंग बहुत जरूरी है। अभी मैं रिसेंटली कॉलेज में

0: एसोसिएशन फॉर्म हुआ, स्टूडेंट्स एसोसिएशन. तो बीइंग द कन्वेनर वो सब कुछ हमसे पूछ रहे हैं, और हमने नोटिस किया कि कुछ स्टूडेंट्स जो कल तक ऐसे चुपचाप बैठते थे, आज अचानक मेरे जैसे टीचर के साथ उनका थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ गया, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए आ रहे हैं मेरे पास, मेरे घर पे भी आ रहे हैं. तो हमने क्या देखा कि उनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे चीजें हैं जो आज तक हमने नहीं देखे. थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, क्यों नहीं देखे? क्योंकि मैं बिजी हूँ, वो बहुत मतलब ज्यादा संख्या में है, नाम तक पता नहीं होता है. ऑनर्स, तुम लोग के समय ऑनर्स था, अब तो ऑनर्स खत्म हो गया.
1: हाँ.
0: तो ऑनर्स जब होता था तो हम लोग को एक चांस मिलता था, प्लेटफॉर्म मिलता था एक स्टूडेंट का नाम उम थोड़ा सा जानने के लिए. अब डीएससी क्लासेस जो है एक तरह का देखा जाए तो पास क्लासेस है पहले वाला जमाने का. अब पास क्लासेस में सबको नाम वाइज या सब.
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है. उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया. नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी. महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना. उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार. और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है. श्री मोदी ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि एसआरसीसी ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है.
3: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है. अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है. जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वो गढ़े हुए निकले.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे. इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है. उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं. शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है. राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं. शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था, अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
1: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सीलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल।
2: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्री बाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
1: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
1: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
2: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a movement where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है।

0: 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई, जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
2: India today is self-assured.
1: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
2: Telling these stories with real pleasure.
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्यूंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुठाई ची भाई कुलुम खुबले कार्डम। आकाशवाणी हफलों की ओर से मैं सिद्धार्थ पांडे लेकर हाजिर हूँ आप सभी का पसंदीदा और प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो हफलों। एक हफ्ते के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए चलिए इस हफ्ते के सफर को शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हफलोंग,
1: आप भी आ जाओगे जांगरों में कराचा पूर्ण जाओ। मैं संजोग से सुनवा देंगे
0: जी।
1: गीत के वो है यशोदा का नंदलाला
0: जी। और कैसा है वहाँ का मौसम अभी?
1: अभी हल्का हल्का बारिश हो रहा है
0: जी। और रेडियो के प्रोग्राम सही सही सुनाई दे रहा है आकाशवाणी हाफलोंग के सभी आप प्रोग्राम?
1: जी बढ़िया जी, जी बढ़िया चलता
0: जी। मोबाइल ऐप के माध्यम से अच्छे से सुन पा रहे हैं, है ना? ये आज के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हफलोंग,
1: जी नमस्ते। मैं
0: नमस्ते।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। मौसम
0: आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बताइए क्या खबर है आपके, वहाँ का मौसम कैसा है, आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मौसम भी काफी अच्छा है, ठंडी हवाएं चल रही है। हाँ, और पिछले हफ्ते काफी अच्छी बारिश हुई थी
0: जी
1: जी, और अभी मतलब सोयाबीन की फसल लगाई है जो हमारी 2 महीने की हो गई है।
0: बहुत बढ़िया। और कितने महीने में
1: जी
0: ये आप निकाल पाएंगे फसल को?
1: 3 महीने में हमें पक के तैयार हो जाती है, और मतलब 3 से 3.5 महीने में इसकी कटाई होने के बाद में हम फसल को अपने घर ले आते हैं।
0: जी, अब आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है राज, और गाने के बोले इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे।

0: हेलो हफलोंग,
1: हेलो अफलोंग जी, नमस्ते। मैं
0: किन से बात हो रही है?
1: रमेश पात्र गुलागत असम से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं रमेश जी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसे हैं?
0: मस्त हैं। और गोलाघाट का अभी मौसम सब कुछ ठीक है?
1: मौसम ठीक है, सितंबर महीना आ गया ना, मौसम धीरे धीरे बदलता जा रहा है।
0: जी, हाफलोंग के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको, बताइए कुछ।
1: ये बहुत अच्छा लगता है, मैं जो सुनता हूँ हेलो पॉइंट और मंगलवार को देता है ना,
0: जी।
1: वो भी सुनता हूँ।
0: आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: आज मैं सुनूंगा सनम मूवी का, 1997 का मूवी है सनम, इश्क में मेरे अब्बा,
0: जी
1: और इस गाने को डेडिकेट करना चाहूंगा पहले आपको। मेरा श्रीमती है रुनू पात्रो लाखी, और रेडियो दोस्त है भाईकोन मुंडा, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगपी, देवाशीष हजारिका,

0: हेलो हफलोंग।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार।
1: मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से बोल रहा हूँ सर, सुरेश कुमार सारथी।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, और अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में बरसात हो रही है और बरसात की छोटी छोटी बूंदों की फुहारों का आनंद ले रहे हैं सर, और चारों तरफ अभी हरियाली ही हरियाली है तो मन और आनंदित हो उठता है सर।
0: मतलब आप बहुत खुश हैं, है ना?
1: जी सर, जी सर, जी सर, बहुत ही आनंदमय है सर।
0: चलिए इसी
1: और
0: आनंदमय अंदाज में आप आज की फरमाइश कौन सी है बता दीजिए।
1: आज और कल फिल्म का है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में
0: जी।
1: सेवा दिया।

0: हेलो हफलोंग।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं मुजफ्फरपुर बिहार से अर्चना बात कर रही हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत मजे में हैं। बहुत दिनों के बाद, यानी कि बहुत महीनों के बाद आपने कॉल लगाया है।
1: जी सर, थोड़ा व्यस्त थी और लगाई भी तो नहीं लगा, तो इसीलिए नेटवर्क मतलब बता रहा था प्रॉब्लम।
0: जी, आज आपका बहुत लकी डे है क्योंकि कॉल भी लग गया है हेलो हफलोंग में, है
1: जी
0: ना।
1: सर, आप अच्छे हैं ना सर?
0: मस्त हैं, खुशी के साथ आप अपनी फरमाइश बता दीजिए।
1: जी, तो अभी जन्माष्टमी है तो इसी मौके पर मैं कान्हा जी का ही मतलब भजन सुनना चाहूंगी,
0: जी
1: बांसुरी बाजेगी इसी तरह है ना कुछ,
0: जी जी
1: तो यही गाना सुना दे सर।
0: जरूर सुनाएंगे। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, रेडियो का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत
1: जी सर।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हाफ लॉन्ग,
1: सर मैं धीरज जबारी बात कर रहा हूँ गुजरात।
0: कैसे हैं धीरज जी? आप
1: मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो सर?
0: मस्त हैं? और क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: मैं ड्यूटी पर हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आकाशवाणी आप लोगों का नियमित सुनता हूँ
0: जी
1: और आपके यहाँ से जो कार्यक्रम आता है फोन शनिवार रविवार तो हम सुनते हैं और हमें जो आप और जो श्रोताओं से बातचीत होती है वो बेहद हमें पसंद पड़ती है और इस शानदार प्रस्तुति के लिए आप और अनाउंसर कहने को भी धन्यवाद देते हैं सर।
0: तो सब श्रोता देश के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए सभी श्रोताओं का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अब आपसे जानना चाहूँगा आपकी फरमाइश।
1: सर मुझे गाना सुने दिल में चीजें बिछा सर, जिनका नाम है फकीरा और गाया है लता मंगेशकर।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिल

दोस्तों, इन्हीं कॉल्स और गानों के साथ ही हेलो हाफलोंग का आज का सफर अब हो चुका है पूरा। इस हफ्ते के बाकी के कॉल्स और गानों के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे और जारी रहेगा सफर मनोरंजन का हेलो हाफलोंग के साथ। श्रोताओं, जाने से पहले आपको बता दें, हेलो हाफलोंग की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। और प्रोग्राम आपके लिए पेश होता है हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे। अब आप नोट कीजिए, हमारा नंबर हमें कॉल करने के लिए नंबर है 9435700596। जिन श्रोताओं के कॉल आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं, उन सभी श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगले 3 हफ्ते के बाद ही आप इस कार्यक्रम में कॉल लगाएं, ताकि हमारे बाकी जो कॉलर्स हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिले। कल फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। अब अपने दोस्त सिद्धार्थ को दीजिए इजाजत। आप सभी को मेरी ओर से जुठाई चिबाई कुलुम खुबले कार्डम और मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे सिद्धार्थ पांडे।
1: हेलो हाफ लॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब पेश है आपका पसंदीता कार्यक्रम चित्रगीत। आइए सुनते हैं पहला गीत अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

और श्रोताओ, इसी जबरदस्त गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 6 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी चुमकी को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।